0: जेकर सूतक मनिए सबते सूतक होए, गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन के जिया बाज ना कोए, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए, सूत क्यों कर रखिए सूत पवैर सोए, नानक सूत के न उतरे ज्ञान उतारे तो ए महला पहला।
1: मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक, अखी सूतक वेखना पर त्रै पर तंदूप, कन्नी सूत कन पहला इतवारी खाहे, नानक हंसाय आदमी बद्ध है जम पुर जाए महला पहला।
0: सब सूत परम है दूजा लगे जाए, जमन मरना हुक्म है पौने आवे जाए।
1: खाना पीना पवित्र है दी तौंद जित संभाहे, नानक जिनी गुरमुख बुझया तिना सूतक नाए पौड़।

0: नानक फिके बोले तन मन फिका हो फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए फिका दरगे सटिए मोचुका फिके पाहे फिका मूर्खा किए पाणाल है सजाए महला पहला।
1: अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अड़सठ तीर जे नावे उतरे नाही मैं जिन पट अंदर बाहर गुदरते पड़े संसार तिन्ने हो लगा रब से ती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप्पी कर जा परवाह नहीं किसे केरी बात सच्ची नहीं दरबार ऊपर खर्च मंगा जबे देता खाए दीवाने।

0: एक नहीं आस की दूजे लगे जाए, नानक आस कांडिये सद ही रह समाए। चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए, आस के हुना किए जैसे महला दूजा।
1: सलाम जवाब दोवे करे मुडुकता जाए, नानक दोवे कुड़िया थाए ना काई पाए पौड़ी जिस।

0: हसम न पाए साध आप गुआ सेवा करे ताकिश पाए मान नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा
1: जो जी हो सुगवे मौका कयावा बीजे बिख मंगे अमृत वेखो एहुने।

0: एक नहीं दा तप से जो पाइए नानक साकर मात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा।
1: एक नहीं चाकरी जित को खसम ना जाए नानक से।

नेबरहुड सर्विस दी पंजाबी सेवा च तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत। पेश कर रहे हैं सुफियाना कलाम। ऐ खुदा शीशा साफ कीता ता मैं नजर आया, ते जद मैं नू साफ कीता ता तू नजर आया। चल बंदिया मैं नू साफ करके उस अल्लाह सोने दे लड़ लगीए। आओ प्रोग्राम दा आगाज कर दिया सायदा बेगम दे गाए इस सुफियाना कलाम दे नाल, कदी आमिल बिरहू सताई नू।

मैं ता रखिया गुनाहा नू लुका के लोकां पाणे कुंड कड्या। आपा सुन रहे सी ज्योति नूरा ते सुल्ताना नूरा नू। मंग के पाईए कज नहीं हुंदा, लुट के खाईए रज नहीं हुंदा, बाज इश्क दे काबे जाइए पैंडा हुंदा हज नहीं हुंदा। ते आहुन सुन दिया शफकत अली खान दी ए सूफी रचना, मैंडा इश्क भी तू दीन भी तू

दीन भी तू ईमान भी तू। हुने तुसी शफाकत अली खान दी आवाज च ए सूफियाना कलाम सुनिया। ते आ हुण प्रोग्राम दे आखिर विच सुनदे आ आबिदा प्रवीण नू। मैं भी झोक रांझण दी जाना नाल मेरे कोई चले।

ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते बि ॿुधी सघंदा आहियो। असांजो प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे। तफ़सील कुझु हिन रीत आहिनि। सभ खां अवल तव्हां भगत कंवर राम जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधंदा, तंहिं खां पोइ तबसिरो पेश कयो वेंदो। 6:40 ते तव्हां फिल्मी संगीत ॿुधंदा। प्रोग्राम जे आख़िर में ख़ासि ख़ासि ख़बरूं नशर कयूं वेंदियूं। इहा त हुई असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील। अचो त ॿुधूं भगत कंवर राम जे मिठड़े आवाज़ में कलाम।

ऐं आंगनवाड़ी इमारतूं आसान बणाईंदो। रोज़गार पैदा कंदड़ सरगर्मियुनि जे दायरे में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs ऐं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज़ेशन FPOs जी औरतुनि लाइ कम कंदड़ शेड्स पिण तामीर करे सघजनि थियूं। वधीक फितरी आफ़तुनि जे असर खे घटाइण लाइ दरिया जे किनारे वारे ॻोठनि या पाणीअ में वझील इलाइक़नि में रुकावट वारो भितियुनि जी तामीर जा कम पिण हिन स्कीम जो हिसो तौर करे सघजनि था। हुन चयो त हीअ यकीनी बणाइण लाइ त हुन स्कीम तहत कम कंदड़ मज़दूरनि खे मुनासिब ऐं वक़्त ते मज़दूरी जी अदायगी मिलनि। इंतज़ामी ख़र्च जे मख़्तसी 6% खां वधाए 9% कई वई आहे। यूनियन वज़ीर मिस्टर चौहान एतमाद जो इज़हार कयो त ही मज़दूरनि जे ज़िंदगियुनि में हिकु नए दौर जो आगाज़ आहे ऐं ही स्कीम विकसित भारत या तरक़ी याफ़्ता भारत ठाहिण जी अज़म खे मुकमिल करण में हिकु मैल जो पथर साबित थींदी। तव्हां तबसिरो ॿुधी रहिया हुआ।

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डी डी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।

हींअर पेश आहिनि फिल्मी संगीत। अचो त ॿुधूं अर्जुन हासिद जो तुंहिंजी महफ़िल वीरभान हीरानंदनी जी आवाज़ में।

तव्हां वीरभान हीरानंदानी खे ॿुधी रहिया हुआ। हींअर अचो ॿुधूं कांगा वेंदे विद्या गुरबवानी ऐं पार्टी जी आवाज़ में।

तव्हां फिल्मी गीत ॿुधी रहिया हुआ। हींअर पेश आहिनि ख़ासि ख़ासि ख़बरूं। भारत सुभाणे खां 2 ॾींहनि वारो ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स जी मीटिंग जी मेज़बानी कंदो। भारत तेल जी क़ीमतुनि में वाधारे जे नुक़सान विच उपभोक्ताउनि ते घटि बोझ सां गॾु ओला एशिया एनर्जी जे खलल खे संभाले वरितो, सरकार चयो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अॼु चीन जो दौरो कंदो। वापार, ताइवान, मिडल ईस्ट जा तनाव एजेंडे में मथे आहिनि। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ऐं चिराग शेट्टी बैंकॉक में थियण वारे थाईलैंड ओपन जे ॿिए दौर में पहुची विया आहिनि।

तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी तव्हां सां गॾिजाणी थींदी सुभाणे सुबुह जो भारतीय वक़्त मुताबिक़ 6:30 लॻे। तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त। सदाई गॾु।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़कम टीवीके सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी एके पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवीके सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच कराने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने

0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान दौरे पर रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अल्पकालीन अनुमानों और चौथी तिमाही के अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि 7 जून को अवकाश होने पर अनंतिम अनुमान पिछले कार्य वर्ष पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Central Bureau of Investigation, CBI, has taken into its custody Shubham Khairnar in connection with the alleged NEET paper leak. Shubham was detained from Nashik in Maharashtra yesterday by the Crime Branch Unit of Nashik Police on request of Rajasthan Police. The NEET UG 2026 exam for admission to undergraduate courses in medical colleges held on 3rd of this month was cancelled yesterday amid allegations of paper leak. The government asked the CBI to carry out a comprehensive inquiry into the irregularities. In a related development, a parent of a NEET UG 2026 candidate has filed a complaint with the Latur SP office alleging that a private coaching institute conducted a mock test before the exam in which 42 questions reportedly matched those asked in the actual NEET paper. SP Amol Tambe directed the subdivisional police officer to conduct an immediate inquiry and initiate legal action against those found guilty. Earlier, Rajasthan Police Special Operations Group detained 15 people during investigations into the suspected network and money trail. The Special Operations Group yesterday detained an alleged mastermind, Manish, from Jaipur. In Tamil Nadu, the TVK government is scheduled to prove its majority in the

संगीतिका कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गार्गी भट्टाचार्य जी के स्वर में भजन। सरोद पर साथ निभा रहे थे दानिश असलम, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना, तबले पर थे पशुपतिनाथ मिश्र और हारमोनियम पर थे नफीज खान। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

सुबह की ये हंसी वादियां कुछ खास है, हवाओं में आज मीठी सी बात है। दिल से दुआ है आपकी हर सुबह खुशनुमा हो, इस प्यारे से दिन की यही तो शुरुआत है। इसी के साथ आज मैं हूं आप सभी के साथ, आपकी होस्ट और दोस्त रिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: सुबह की खिलती गुलाब एक जादू जगाती है, सुबह का सूरज सुहाना लगता है, जब आप मुस्कुराते हैं दिल से तो हर दिन सुनहरा और प्यारा लगता है।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: हर सुबह हमें एक नया मौका देती है कल की गलतियों को सुधारने का, तो मुस्कुराइए और दिन की शुरुआत कीजिए बुलंद हौसलों के साथ।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट

0: चलाओ
1: है
0: नहीं, हाँ सीधे यूपीआई से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: श्रोताओं, अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो लक्ष्य को नहीं अपने प्रयासों को बदलिए। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो दिल से लड़ा नहीं।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8 बजने ही वाले हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
2: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव पी शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सोनाना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VP रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पर तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरूद्व भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट UG परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट UG के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर SP कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्यभर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसेवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने सातवें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसेवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसेवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसेवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
7: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
8: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करें।

0: जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, नया भारत और बदलती सियासी समझ। संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 प्वाइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, अब QR कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला। मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता, राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय NR कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटन्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamaraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPIM and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
2: Meanwhile, Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay has reshuffled IAS officers in the state government, including former Chief Secretary N. Muruganandam and Finance Secretary T. Uday Chandran. The appointment of astrologer Ricky Radhan Pandit as officer on special duty and political wing secretary in the Chief Minister's office has triggered criticism from alliance partners. Congress MPs Sasikant Senthil and Jyoti Mani questioned the appointment, while CPIM State Secretary P. Shanmugam said the move went against the government's responsibility to promote scientific thinking. VCK General Secretary D. Ravi Kumar described the appointment as unacceptable in a secular government and urged reconsideration. All India NR Congress leader N. Rangasamy

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली नौमुंतखबा टीवी के सरकार आज असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुदुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई किफायत शहरी की अपील के बाद ईंधन की खपत से मुतालिक इकदाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मरकज ने सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदाती ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। आईएमडी ने इस साल मॉनसून जल्द शुरू हो जाने की पेशगोई की है। और आईपीएल में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु में आज टीवी के हुकूमत असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। वजीर आला सी जोसेफ विजय इस आजमाइश से पहले हिमायत हासिल करने की गरज से अपनी हामी पार्टियों के रहनुमाओं के साथ मीटिंग्स करते रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: तमिलनाडु में हुकूमत तश्कील देने के लिए कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम और आईयूएमएल जैसी इत्यादि पार्टियों के साथ टीवीके के पास 120 अरकान की अक्सरियत है। सरकार की हलफबरदारी के बाद अब टीवीके को एआईएडीएमके के 29 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है, जो इस पार्टी से अलग हुए हैं। टीवीके को अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के एक एमएलए एस कामराज की भी हिमायत हासिल है। अब असेंबली में टीवीके के पास कुल 151 अरकान हैं। जनरल सेक्रेटरी ई पलानीस्वामी की क्यादत वाली एआईएडीएमके ये कह चुकी है कि जो लोग व्हिप के जाब्तों पर अमल नहीं करेंगे उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इस पार्टी की बुनियाद एमजीआर ने रखी थी और इसे फिलहाल एक बड़े सियासी बुहरान का सामना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुडुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। एक सादा सी तकरीब में जो लोक निवास में मुनाकिद की जाएगी, पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथ जनाब रंगासामी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: पुडुचेरी में हलफ बरदारी की तकरीब मुनाकिद की जाएगी। एन रंगासामी वजीर आला के ओहदे की एक बार फिर जिम्मेदारी संभालने को तैयार है। 76 साल सियासी कदावर शख्सियत की वजीर आला के तौर पर यह पांचवीं मुद्दत होगी। इस तकरीब में वजीर आला के साथ

0: तौर पर 42 सवाल उन सवाल से यकसानियत रखते थे जो असल नीट पेपर में पूछे गए थे। एसपी अमोल तांबे ने सब डिवीजनल पुलिस अफसर को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर इंक्वायरी शुरू करें और कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कदम उठाएं। इससे पहले राजस्थान पुलिस के खसूसी ऑपरेशंस ग्रुप ने मुश्तबा नेटवर्क और पैसे के लेन देन की तफ्तीश के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया था। इस ग्रुप ने कल एक मुबैना सरगना मनीष को जयपुर से गिरफ्तार किया है। हुकूमत ने सालाना मजमूई घरेलू पैदावार जीडीपी के आरजी तखमीने और चौथी सहमाही के लिए जीडीपी के सहमाही तखमीने के इजरा की तारीख दोबारा मुकर्रर की है। पहले यह तारीख मई का कामकाज का आखिरी दिन होता था, लेकिन अब इसे हर साल जून की 7 तारीख कर दिया गया है। इजरा की तारीख में यह तब्दीली कौमी अकाउंट्स के आदादोशुमार से मुतालिक मुशावरती कमेटी के साथ सलाह मशवरे के बाद की गई है। वजारत ने कहा है कि इस तब्दीली का मकसद आदादोशुमार की क्वालिटी को मजीद मुस्तहकम बनाना है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की क्यादत में एक आला सतही भारतीय पार्लियामानी वफद आज से भूटान का दौरा करेगा। इसका मकसद भारत भूटान रिश्तों को मजीद मुस्तहकम करना है। इस 51 रुकनी वफद में राज्यसभा और लोकसभा के अरकान पार्लियामान और वजारत खारजा के अहलकार शामिल हैं। महाराष्ट्र के जिला सांगली की जाट तहसील में कल एक मजहबी तकरीब के दौरान दीवार गिरने से 6 अकीदतमंद हलाक और तकरीबन 15 जख्मी हो गए। तकरीब में 300 से ज्यादा अकीदतमंद जमा थे, जब इलाके में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई। तकरीबन 30 अकीदतमंद एक दीवार के पास खड़े हो गए और इसी वक्त दीवार गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए जाट और सांगली सिविल अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दीवार गिरने के हादसे में होने वाली अमवात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की तमन्ना की। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान की ताजातरीन अमन तजवीज को मुस्तरद किए जाने के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में और भी कमजोरी पैदा हो गई है। जनाब ट्रंप ने ईरान की तरफ से की गई जवाबी पेशकश को कचरा बताया है। इस इल्जाम तराशी के सबब मगरबी एशिया में तनाजे को फैलने से रोकने की कोशिशों में गैर यकीनी पैदा हो गई है। जम्मू कश्मीर में फौज ने कल पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दरअंदाजी की कोशिश नाकाम कर दी। कृष्णा घाटी सेक्टर में एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया। भारत में इस हफ्ते जुनूब मगरबी मानसून दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात IMD के मुताबिक इस हफ्ते के इख्तिताम तक जुनूब मगरबी मानसून के जुनूबी खलीज बंगाल, अंडमान समुन्दर और अंडमान और निकोबार जजायर के हिस्सों में आगे बढ़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का हल्का कल उसी इलाके में बरकरार है। इसके साथ ही हवा का गिरदाबी निजाम सतह समुन्दर से 4.5 किलोमीटर की बुलंदी तक फैला हुआ है। भारत के महकमे मौसमियात ने राजस्थान में शदीद गर्मी और लू के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। रियासत के सरहदी अजला में इस वक्त सख्त गर्मी है। कई मुकामात पर दर्जे हरारत 45 से 47 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है। IPL क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात ने आज अलग अलग खबरों को अपनी शहसुर्खी बनाया है। अखबार इंकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को अपनी शहसुर्खी बनाया है कि मगरबी बंगाल के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमत की अवलीन तरजीह, रियासत के अवाम को आयुष्मान भारत सेहत बीमा स्कीम के फवायद हासिल होंगे। अखबार प्रताप ने भी इस खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, सदर जमहूरिया ने 15 नर्सिंग स्टाफ को नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगेल अवार्ड से नवाजा। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने हेमंत बिस्व शर्मा के मुसलसल दूसरी बार आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। अखबार इंकलाब ने वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल की इस बयान को अहमियत दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की मदद की। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से असलाह, धमाका खेज मवाद और 1 करोड़ नकद बरामद। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, भारत नेपाल सरहद पर

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 8:45 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा के अंतर्गत आइए सुनते हैं सईद अहमद खान का सितार वादन राग अलहैया बिलावल में। तबले पर संगत कर रहे हैं जी भारती।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात का आगाज होता है। लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम्स का खुलासा। अब से कुछ ही देर में यानी 9:35 पर सुबह प्रोग्राम के तहत सुनिएगा शब्द। 9:45 पर आज सवेरे प्रोग्राम नशर किया जाएगा। 9:50 पर खबरें सुनिएगा। सुबह के 10 बजे अखबार सर्री का प्रोग्राम शब में फरोदा नशर किया जाएगा।

0: समय अभी आप सुन रहे थे सुबगाही, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डी डी फ्री डिश पर। और लीजिए आप सुनिए प्रोग्राम आज सवेरे।
1: अब बात करते हैं आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। और 1918 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण किए। वर्ष 1999 में जापानी छात्र के नागुई विश्व की 7 सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र यानी कि 25 वर्ष में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी, पर्वतारोही बने थे। इसके बाद 2000 में मिस इंडिया लारा दत्ता ने साइप्रस में संपन्न प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स 2000 का खिताब भी अपने नाम किया। इसके 10 बरस बाद यानी कि साल 2010 में भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता ईला भट्ट को 2010 के निवानो शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बिल्कुल। और अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। इस कड़ी में सबसे पहले बात बादल सरकार की, आज उनकी पुण्यतिथि है। वे एक अभिनेता, नाटककार और निर्देशक थे। उन्होंने तीसरा रंगमंच का सैद्धांतिक प्रतिपादन किया और उसे मंच पर भी उतारा। कम से कम खर्च में नाटक का मंचन करना और आम जन तक उसकी पहुंच को सुलभ बनाना ही उनका मकसद था। सन 1956 में बादल सरकार ने अपना पहला नाटक सोल्यूशन एक्स लिखा। उनकी मुख्य रचनाएं हैं इंद्रजीत, पगला घोड़ा, राम श्याम जोदू, कवि कहानी, बाकी इतिहास, तीसरी शताब्दी और कई। मैं अपने श्रोताओं से अपील करूंगा कि वे इस बैकग्राउंड में बज रही धुन को पहचाने।
2: Well, yes, I can.
1: और मुझे लगता है कि अब तक सभी श्रोता इसको पहचान ही गए होंगे।
2: Exactly.
1: ये धुन है प्रसिद्ध धारावाहिक मालगुड़ी डेज की। और आज इसको बनाने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायणन स्वामी की पुण्यतिथि है। उन्हें आर के नारायण के नाम से जाना जाता है। वे अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखकों में 3 सबसे महान उपन्यासकारों में से एक गिने जाते हैं। मुलक राज आनंद तथा राजा राव के साथ उनका नाम भारतीय अंग्रेजी लेखन के आरंभिक समय में बृहत त्रयी के रूप में प्रसिद्ध है। उपन्यास तथा कहानी की विधा को अपनाते हुए आर के नारायण ने विभिन्न स्तरों तथा रूपों में नाटक का मंचन किया।
2: Well, yes, we are remembering the literary genius, the master of simplicity and storytelling, R. K. Narayan. Well, through his stories, he brought Malgudi to life and gave Indian literature a classic voice. So the soul of Malgudi, Mukesh, still whispers through the pages of his books, reminding us that storytelling is not just a craft, but it is a way of life. He taught us to find beauty in the ordinary. So R. K. Narayan's Malgudi Adventures, it is more than just a collection of stories. It is a timeless portrayal of human nature, of small joys and the rhythm of everyday life.
1: धारावाहिक के जो मतलब एक तरीके से हम बात करें तो एक किरदारों में जो जीवंतता दिखाई देती है इन्हीं के धारावाहिक मालगुड़ी डेज में, जो मिठाई वाला करके एक पूरी सीरीज है, उसमें क्या माली और उसके पिता के बीच में जो संवाद हुआ और एक तरीके से अगर हम बात करें तो
2: वेरी सिंपल येट प्रोफाउंड स्टोरीटेलिंग,
1: बिल्कुल जीवंत, बिल्कुल बुनियादी चीजें उसमें दिखाई गई हैं। एक मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान पर उस समय जो ब्रिटिश हुकूमत होगी उस समय के मिठाइयों के रेट लिखे हैं 25 रुपए और
2: मतलब
1: कितना वो सस्ता समय होगा और उसमें
2: इट मेक्स अस वंडर।
1: बिल्कुल, आज भी अगर उसे हम देखें तो ऐसा लगता है कि पुराने समय में हम चले गए हैं। आर के नारायण का पहला उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में प्रकाशित हुआ था। उनकी प्रमुख कृतियां हैं द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर द महात्मा, द गाइड, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, अ टाइगर फॉर मालगुड़ी, इसके अलावा भी ना जाने कितना ही कुछ। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा कई सम्मानित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। और श्रोताओं, आज असित सेन, हिंदी के सिनेमा किंग कहे जाने वाले, कॉमेडी किंग कहे जाने वाले असित सेन की आज जयंती है। उन्होंने 4 दशक तक बॉलीवुड पर चरित्र अभिनेता और हास्य कलाकार के रूप में अपनी खास पहचान बनाई।

0: उन्होंने 200 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में हास्य और चरित्र अभिनेता का यादगार किरदार प्ले किया। असित सेन ने अभिनय की शुरुआत दुर्गाबाड़ी में चलने वाले कई बांग्ला नाटकों से की। असित ने बांग्ला फिल्म अमानुष और आनंद आश्रम सहित अनुसंधान में भी काम किया। उनकी प्रमुख फिल्में हैं 20 साल बाद, चांद और सूरज, भूत बंगला, नौनिहाल, ब्रह्मचारी, यकीन और आराधना, प्यार का मौसम, पूरब और पश्चिम।
1: समय नबी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 9:50 हुए हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली नौ मुंतखबा टीवी के सरकार आज असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुडुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई किफायत शियारी की अपील के बाद ईंधन की खपत से मुतालिक इकदामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मरकज ने सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदाती ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। आईएमडी ने इस साल मानसून जल्द शुरू हो जाने की पेशगोई की है और आईपीएल में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु में आज टीवी के हुकूमत असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। वजीर आला सी जोसेफ विजय इस आजमाइश से पहले हिमायत हासिल करने की गरज से अपनी हामी पार्टियों के रहनुमाओं के साथ मीटिंग्स करते रहे हैं। तमिलनाडु में हुकूमत तश्कील देने के लिए कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम और आईयूएमएल जैसी इत्यादि पार्टियों के साथ है। टीवी के पास से 120 अरकान की अक्सरियत है। सरकार की हलफबरदारी के बाद अब टीवीके को एआईएडीएमके के 29 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है जो इस पार्टी से अलग हुए हैं। टीवीके को अम्मा मकल मोन्त्रा कड़गम के एक एमएलए एस कॉमराज की भी हिमायत हासिल है। अब असेंबली में टीवीके के पास कुल 151 अरकान हैं। जनरल सेक्रेटरी ई पलानी सामी की क्यादत वाली एआईएडीएमके ये कह चुकी है कि जो लोग विप के जाब्तों पर अमल नहीं करेंगे उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इस पार्टी की बुनियाद एमजीआर ने रखी थी और इसे फिलहाल एक बड़े सियासी बुहरान का सामना है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुडुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। एक सादा सी तकरीब में जो लोक निवास में मुनकिद की जाएगी। पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाशनाथ जनाब रंगासामी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। पुडुचेरी में हलफबरदारी की तकरीब मुनकिद की जाएगी। एन रंगासामी वजीर आला के ओहदे की एक बार फिर जिम्मेदारी संभालने को तैयार हैं। 76 साल सियासी कदावर शख्सियत की वजीर आला के तौर पर यह पांचवी मुद्दत होगी। इस तकरीब में वजीर आला के साथ साथ कुछ वजीरों को भी हलफ दिलाया जाएगा। मरकजी वजीर और बीजेपी के चुनाव इंचार्ज मनसुख मांडविया, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन, बीजेपी पुडुचेरी के इंचार्ज निर्मल कुमार सुराना और रियासती बीजेपी के सदर वीपी रामालिंगम उन मुमताज रहनुमाओं में शामिल हैं जिनकी इस तकरीब में शिरकत की उम्मीद की जाती है। जनाब नवीन कल शाम पुडुचेरी पहुंचे थे। उन्होंने पार्टी अहदेदारों और पार्टी हेडक्वार्टर में कानून साज अरकान से बातचीत की। मगरबी बंगाल में हुकूमत की तब्दीली के बाद रियासती पुलिस ने नज्म जब्त और सियासी तशद्दुद के माजी के मामलात के बारे में फौरी तौर पर एक मौकफ इख्तियार किया है। इस सिलसिले में नज्म जब्त के एडीजी ने कल सभी पुलिस कमिश्नरों, पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स और रेलवे हुकाम को एक तफसीली हिदायत जारी की है जिसमें बहुत से फौरी इकदामात के बारे में कहा गया है। इस हिदायतनामे में 2021 के असेंबली इंतखाबात के बाद तशद्दुद से मुतालिक सभी केसों का नए सिरे से जायजा लेने का हुक्म दिया गया है जिनमें वो केस भी शामिल हैं जिनमें कतई रिपोर्ट्स भी दाखिल कर दी गई है। इस हिदायतनामे में सरहद के बारे में मीटिंग्स और खुफिया मालूमात एक दूसरे को फराहम करके सरहद पार से की जाने वाली स्मगलिंग और जराइम के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया गया है। मगरबी एशिया के बुहरान के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की किफायत की अपील के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश

और दिल्ली के वज़ीरे आला ने वजीरों, अरकान असेंबली और अवामी नुमाइंदों की सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के इकदाम का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर आला, वजीरों और दीगर अफसरान के गाड़ियों के काफिले में 50% कटौती करने का हुक्म जारी किया है और हिदायत दी है कि सरकारी काफिलों से गैर जरूरी गाड़ियों को हटाया जाए। रियासती सरकार ने पीएनजी, मेट्रो खिदमात और सरकारी ट्रांसपोर्ट के ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया है और मीटिंगें वर्चुअल वसीले से मुनक़िद करने, नीज हफ्ते में एक बार कोई गाड़ी नहीं चलेगी का उसूल अपनाने की हौसला अफजाई की है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कहा है कि वो कम ईंधन इस्तेमाल करें और सोने की गैर जरूरी खरीदारी से गुरेज करें। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मुख्तलिफ महकमों के तमाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरियों और प्रिंसिपल सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग के दौरान योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी कि वजीर आला, उजरा और दीगर के काफिलों में फौरी तौर पर 50% की कमी की जाए। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने मजीद अहकाम जारी होने तक अपने काफिले में गाड़ियों की तादाद कम कर दी है। पीर को एक काबीना मीटिंग में जनाब यादव ने वजीरों की काउंसिल के अरकान से अपील की है कि वो कौमी मफाद के तहत पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी लाएं। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने भी वजीरों, अरकान असेंबली, अफसरान और सरकारी महकमों से कहा है कि वो सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल महदूद कर दें, कार पूलिंग यानी गाड़ियों को मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करें और मेट्रो और बस खिदमात को तरजीह दें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा किया है जो आज से नाफिजुल अमल होगी। एक बयान में वजारत खजाना ने कहा कि सोने और चांदी के जेवरात के हिस्सों पर 5% ड्यूटी और प्लेटिनम के हिस्सों पर 5.4% ड्यूटी लगेगी। मजीद बरां कीमती धातुओं के इस्तेमाल शुदा कैटलिस्ट की शरह 4.35% मुकर्रर की गई है जो कि तामील के मेयारात को पूरा करने से मशरूत है। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया में जारी बहरान के मद्देनजर लोगों से सोना न खरीदने की अपील की थी। तहकीकात के मरकजी ब्यूरो सीबीआई ने मुबैना नीट पेपर लीक के मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। शुभम को राजस्थान पुलिस की दरख्वास्त पर नासिक पुलिस के क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के शहर नासिक से गिरफ्तार किया था। मेडिकल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट यूजी 2026 इम्तिहान इस महीने की 3 तारीख को कराया गया था जिसे कल पेपर लीक के इल्जाम के तहत मंसूख कर दिया गया। हुकूमत ने सीबीआई से कहा है कि वह बदउनवानी के खिलाफ मुकम्मल इंक्वायरी करे। हुकूमत ने सालाना मजमूई घरेलू पैदावार जीडीपी के आरजी तखमीने और चौथी सहमाही के लिए जीडीपी के सहमाही तखमीने के इजरा की तारीख दोबारा मुकर्रर की है। पहले यह तारीख मई का कामकाज का आखिरी दिन होता था लेकिन अब इसे हर साल जून की 7 तारीख कर दिया गया है। महाराष्ट्र के जिला सांगली की जाट तहसील में कल एक मजहबी तकरीब के दौरान दीवार गिरने से 6 अकीदतमंद हलाक और तकरीबन 15 जख्मी हो गए। तकरीब में 300 से ज्यादा अकीदतमंद जमा थे। भारत में इस हफ्ते जुनूब मगरबी मानसून दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात आईएमडी के मुताबिक इस हफ्ते के इख्तिताम तक जुनूब मगरबी मानसून के जुनूबी खलीज बंगाल, अंडमान समुंदर और अंडमान और निकोबार जजायर के हिस्सों में आगे बढ़ने का इम्कान है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। खास खबरें एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की कयादत वाली नव मुंतखबा टीवी के सरकार आज असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुडुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकारों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई

समय नबी आपने बेकल उत्साही का कलाम सुना। आवाज थी पुष्पा हंस की। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हुस्ने गजल। हुस्ने गजल प्रोग्राम की अगली पेशकश है आरजू लखनवी की गजल। आवाज है रविंद्र ग्रोवर की।

0: समय अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम उसने गजल, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ पर। और ये अब सुनिए हसरत मोहानी की बर्थ एनिवर्सरी पर डॉक्टर सैयद आलम का तहरीर करदाई फीचर, नक्शे पा छोड़ गए हम जिधर से गुजरे।
1: है मश्क सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी एक तुर्फ तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। ये शेर खालिक शेर का मुख्तसर तरीन तारुफ भी है और मोतबर तरीन तारुफ भी। मौलाना फजलुल हसन हसरत मोहानी, अजीम शायर, अजीम तर मुजाहिद आजादी, पेशे से सहाफी, मिजाज से सूफी, सन 1880 या 1881 में मोहान में पैदा हुए। बचपन में ही शरारत, शतरंज और शेर व शायरी से शगफ हो गया। मैं तो समझा था कयामत हो गई, खैर फिर साहब सलामत हो गई। जब मैं जानू दिल में भी आऊं न यार, गर्च जाहिर में अदावत हो गई। उनको कब मालूम थी तर्ज़े जफा, गैर की सोहबत कयामत हो गई। इश्क ने उनके सिखा दी शायरी, अब तो अच्छी फिक्र हसरत हो गई। ऐसा बलीग कलाम मौलाना ने सिने बलूगत को पहुंचने से पहले ही कह डाला, सिर्फ 12-13 बरस की उम्र में, यानी तब जब वो फजलू कहलाते थे। 8वीं का इम्तिहान उर्दू मीडियम से भी दिया, हिंदी मीडियम से भी, और तमाम सूबे आगरा अवध में अव्वल आए। ये कारनामा 10वीं में भी दोहराया। अलीगढ़ कॉलेज पहुंचे, वहां अपनी काबिलियत और जहानत की बिना पर सिर्फ 20 साल की उम्र में मौलाना कहलाए जाने लगे। जी हां, ख्याल रहे आप सनद याफ्ता मौलाना न थे, किसी मदरसे से फारिग न थे, अलीगढ़ वाले

0: हुस्न से मोहब्बत करता है, ठीक है।
1: इस सारे आलम का चमन उसी के जमाल से दहका हुआ है और तुम उसके जमाल की एक नन्ही सी किरण हो।
2: एक कौन है भाई, जरा सब्र भी कर लिया करो।
3: ये वारंट है तुम्हारी गिरफ्तारी का। आप जरा ठहरिए, मैं अभी आता हूं।

0: फिरंगी की गुलामी सबसे बड़ा जुर्म है।
1: हुजूर, मुल्ज़िम भाग तो नहीं जाएगा?
0: आदमी को पहचानना सीखो राम सिंह।
2: डाकखाने से टिकट मंगवा लेना और वो रिसाला खरीदारों को पोस्ट कर देना।
3: जी।
2: और हमारी नन्नी सी नईमा का ख्याल रखना भाई, हमारी प्यारी सी बच्ची का। हाँ? अरे इसको तो बुखार है। हाँ? हकीम साहब से दवा मंगवा लेना।
3: तुम्हें अल्लाह की अमान में दिया,
2: इनका ख्याल रखना होगा।

0: मौलाना ये खत तुम्हारे घर से आया है। साहब तो पढ़कर चकरा गया, कहने लगा बहुत बहादुर औरत है।
1: तुम पर जो मुसीबत पड़ी है उसको बहादुरी से बर्दाश्त करना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, खबरदार किसी किस्म की कमजोरी का इजहार ना हो।
2: चुपके चुपके रात दिन नासू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है।

0: इतवार के इतवार उनके वहाँ कोई बैठक हो गई है। अल्लाह जाने क्या क्या नाम था, कोई कलाब या शायद किलाब है, बस सब वही जमा हुए हैं, हंसे बोले हैं। या अल्लाह, एक हमारी बेगम है, तमकती हुई रंग, जवान जहान पिंडा, ना हंसे ना बोले। लाडो, ये जवानी और रंगत चार दिन की चांदनी है बस, आज है कल नहीं है। 8-10 साल यूं ही बीत जावेंगे तब तुम्हारे कलेजे में टीस उठेगी कि काश कोई जवान पठा नजर भर कर देखे, काश तुम भी किसी को उंगलियों के इशारे पर नचा सको, पर तब पछतावे होगा का जब चिड़िया चुग गई खेत।
1: देखो बुआ, सरा होश में रहो, खबरदार आइंदा कभी ऐसी बात जबान पर भी न लाना। जानती तो तुम्हारे छोटे सरकार के आ गए, हमारे लिए जिंदगी बेमानी हो गई, हमें अब जिंदों में न जानो। हमने तो कसम खाई है कि न कभी रणजाला चूड़ा उतारेंगे, न पलट कर जिंदगी की रंगरलियों पर नजर डालेंगे, समझी। हमारी मोहब्बत का ये रंग देखकर उनकी रूह को कैसा सुकून नसीब होगा, तुम तो जानती ही हो, मरहूम हमें अक्सर सख्त सुस्त कहते थे, जुल्म ज्यादती करते थे हमारे साथ, हाय बेवफाई भी की, रुलाया भी, लेकिन हम मरते दम तक वफा करेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि हमने उन्हें किस तरह टूट कर चाहा है।
0: आए दी, ऐसे दिल तोड़ने वाली बातें ना करो, मेरी मानो मुखड़ा धोवो, पल दो पल बगिया में सैर कराओ। आए, न हो तो बग्गी में टैगर या टोबी को जुतवा दूं, तनिक मोहल्ले पड़ोस में हुआ।
1: या मेरे खुदा,
0: आए भी, अब क्या हुआ बीवी बेगम, अल्लाह के वास्ते यूं जी हलका ना करो।
1: या मौला रहम, वो टोबी को कितना चाहते थे, जब भी पड़ोस की किसी जागीर पर जाते टोबी साथ होता, उनके हाथ में लगाम आते ही घोड़ा जैसे हवा से बांधे करने लगता था, और क्या शान होती थी मरहूम की, याद है ना बुआ, याद है ना तुम्हें?
0: हाँ, सब याद है।
1: सुनो, हाँ सुनो, तो कोचवान से कहना टोबी को करछी पर जौ ज्यादा दे। अच्छा,
0: जो हुक्म बेगम। हाय हाय, अब चलूं।
1: कौन हो सकता है, कह दो हम किसी से नहीं मिलेंगे।
0: बेहतर है बेगम, जरी दुपट्टा तोड़ लूं।
1: मेरे लिए तो बस ये तस्वीर है और कुछ नहीं, मेरे सरताज, मेरे अलीम, कैसे बताएं हमें तुमसे कितनी मोहब्बत थी और है। जब तक ये गम सदा दिल धड़कना बंद नहीं करेगा, उस वक्त तक हमारी मोहब्बत यूं ही कायम रहेगी। हाय, शर्म नहीं आती अली, मेरे सरताज, मुझ जैसी वफादार नेक और नाजुक कोमल जीवन साथी कहाँ मिलेगी आपको, जो जीते जी आपके लिए जिंदा तरखोर हो गई। और एक आप है, शर्म कीजिए, शर्म कीजिए मेरे शेरे बब्बर, मुझे

0: साहब हैं, कहवे हैं हमें तो बस बेगम साहिबा से मिलना है।
1: तुमने बताया नहीं कि जब से हमारे सरताज से धारे हैं हमने मिलना जुलना बंद कर दिया है?
0: आए बीवी, वो सुने कब है, कहे है कोई बहुत जरूरी काम है।
1: हम किसी से नहीं मिलेंगे।
0: अरे चंदा, मैं क्या बोली नहीं, मगर आदमी क्या है, फटे मारा भूत है भूत। अरे आओ देखा ना ताव, मुझे धक्का दे सीधा बैठक में घुस गया, अब वही धरना दिए बैठा है बड़ुआ।
1: ठीक है, इधर भेज दो, न जाने कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। क्या मुसीबत है, हमसे भला क्या काम आन पड़ा, अल्लाह ये दुनिया चैन से मरने भी नहीं देती। यही आलम रहा तो हम किसी दरगाह पर जा बैठेंगे।
2: अरे जाहिल,
3: अरे क्या कर रहे हो,
2: अरे बेगम बेगम।
4: बंदे को मोहम्मद उमर कहते हैं मोहतरमा, पेंशन याफ्ता लेफ्टिनेंट मोहम्मद उमर। माफ फरमाइएगा, बंदा एक निहायत आम मसले की वजह से आपको सहमत देने की गुस्ताखी कर रहा है।
1: कहिए क्या काम है।
4: आपके शोहर मरहूम मुझे अच्छी तरह जानते थे, मरहूम मेरे 1200 रुपए के मखरूज थे। कागजात और रसीदे बंदे के पास महफूज है। देखिए, मुझे कल तक लगान की रकम अदा करनी है, इसलिए मेहरबानी से मेरी रकम की अदायगी आज ही कर दीजिए।
1: 1200 रुपए
4: जी,
1: लेकिन इतना कर्जा कैसे हो गया?
4: मोहतरमा, मरहूम जौ की खरीद सिर्फ बंदे से ही करते थे।
1: बुआ देखो तो टोवी की नान में मुट्ठी भर जौ ज्यादा डलवा देना, ताकीद कर देना तो कोचवान को।
5: जी अच्छा।
1: अगर हमारे शोहर मरहूम की तरफ आपकी कुछ रकम निकलती है तो हम जरूर अदा करेंगे, लेकिन आज तो माफ कीजिए, इतनी रकम तो इस वक्त हमारे हाथ में नहीं है। हमारे मुख्तार परसों तक गांव से लौट रहे हैं, आपका जितना हिसाब होगा मुख्तार साहब देखकर रकम फौरन आपको भिजवा देंगे, लेकिन
4: देंगे
1: इस वक्त मुश्किल है। यूं भी हमारे शोहर के इंतकाल हुए सिर्फ 7 माह हुए हैं, हमारे दिल में इतनी ताब नहीं कि रुपए पैसे का हिसाब करें।
4: भाई वाह वाह वाह वाह वाह वाह। लेकिन अगर मैंने कल तक लगान अदा ना किया तो तबाह हो जाऊंगा मोहतरमा, जमीन जागीर गिरवी हो जाएगी, थानेदार कमबख्त मेरी गर्दन पर सवार है।
1: परसों रकम भिजवा दी जाएगी।
4: मगर मुझे तो अभी हाल दर हाल चाहिए।
1: माफ कीजिएगा, आज तो हम अदायगी नहीं करेंगे।
4: आप भी माफ फरमाए मोहतरमा, लेकिन परसों तक बंदा नहीं रुक सकता।
1: हम क्या करें, अभी रकम हाथ में नहीं है।
4: तो अदायगी नहीं होगी?
1: जी नहीं, आज नहीं होगी।
4: तो ये आखिरी फैसला है आपका?
1: कतई।
4: मैं कहता हूँ फिर सोच लीजिए।
1: सोच लिया।
4: ठीक है, बंदा शुक्रगुजार है आपका। ठीक है ठीक है, अजी ताजा ताजा बेवा है आप, मगर याद रखिए लोग बाग मुझ पर उंगली उठाते हैं। मोहम्मद उमर मियाँ, तुम हर वक्त इस कदर गर्म क्यों रहते हो? अजी मियाँ, तुम्हारा गुस्सा हमेशा नाक पर धरा रहता है। अल्लाह रहम करे, लो भला गुस्सा नहीं आएगा। अजी यहाँ रुपए की फौरी जरूरत है, कल सुबह मुंह धेरे घर से रवाना हुआ था, एक एक कर्जदार का दरवाजा खटखटा चुका हूँ, मगर मजाल है जो किसी के कानों पर जूं भी रहेंगी हो, थक कर चूर हो गया। खुदा खुदा करके सुबह हुई और घर से 40 कोस दूर यहाँ पहुंचा हूँ। बोलो क्यों? इस उम्मीद पर कि कुछ रकम तो वसूल हो ही जाएगी। और लो साहब यहाँ का रंग देख कर तो खून ही खौल गया, अब भला आदमी ऑल फॉल न बके तो क्या करे।
1: देखिए, हमने आपसे कह तो दिया कि परसों मुख्तार के आते ही अदायगी कर दी जाएगी।
4: जी मुख्तार के पास नहीं आया मैं, आपके पास आया हूँ, आपके पास। मुख्तार जाए जानू मैं, गुस्ताखी माँ मोहतरमा, मुझे क्या मतलब आपके उस मस्करे खबीस मुख्तार से।
1: माफ कीजिए, हम इस गाली गलौज और हंगामे के आदि नहीं हैं।
4: जी?
1: बस अब एक लफ्ज और नहीं सुनेंगे।
4: अजी मोहतरमा कहाँ जा रही है? अब मैं हूँ ये तनहा कमरा, कैसा अकेलापन है, वाह क्या बात है, दिल में ताल नहीं है। शौहर को मरे अभी सिर्फ 7 महीने हुए हैं। अरे मैं पूछता हूँ, मुझे लगान देना है कि नहीं, बोलो जवाब दो है? चलो मान लिया तुम्हारे शौहर गुजर गए, तुम्हारे दिल में ताब नहीं वगैरह वगैरह, और मुख्तार बदबख्त गांव गया हुआ है, लानत का मारा। लेकिन आखिर मैं क्या करूं, अजी जादुई कालीन पर बैठकर थानेदार की नजरों से ओझल हो जाऊं या दीवार से सर फोड़ मरूं। एक कर्जदार के पास पहुंचा तो वो घर पर ही नहीं था, अजी दूसरे के पास गया तो वो कहीं जा छुपा, तीसरे से हाथापाई की नौबत आ गई, चौथे का पेट खराब था, और अब इन मोहतरमा के दिल में ताब नहीं है। अजी एक भी मुट्ठी खोलने को तैयार।

0: मैं यूं आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। मजाल है जो यहाँ से टल जाओ। अजी जब तक रकम अदा नहीं होती बंदा यहाँ टिका रहेगा। अरे कोई है?
1: को क्या चाहिए अब? तुमने कुछ कहा मियाँ?
0: अरे बुढ़िया जा जल्दी से पानी ले आ, ठंडा पानी लाइयो जल्दी कर।
1: ठंडा पानी? ठंडा पानी? अरे पानी नहीं तो क्या अंग्रेजी पिलाऊंगी बुड्ढे को?
0: क्या क्या बोल रही है बुढ़िया? अरे हे जरा ख्याल तो कीजिए, इधर बंदे को रुपए की शदीद जरूरत है, रकम ना मिली तो गले में फंदा डालकर लटक जाएगा गरीब, और उधर बेगम साहबा है कि किसी कीमत पर अदायगी नहीं करेंगी। क्यों जरा? अजी बेवा है, दुखियारी को रुपए से भला क्या सरोकार? ये औरत जात और इसकी फितरत। अजी मेरा बस चले तो किसी औरत को मुंह ना लगाओ। अमां औरत से बात करने से तो अच्छा है आदमी तूप के दाने पर जाकर खड़ा हो जाए। इन दादाओं ने तो मेरी मट्टी पलीत कर दी।
1: पानी पिलाना कोई खेल मजाक थोड़ी है, पल्लू संभालना भी तो मुश्किल हो जावे है। लो मियां पानी। और सुनो जी, मेरी बेगम का जी अच्छा नहीं है, अब वो किसी से मिलने मिलाने बाहर नहीं आवेंगी।
0: दफान हो जा बुढ़िया, मैं कहता हूँ भाग जा यहाँ से, भाग जा।
1: अरे मजीद जमाने भर का पल्लू पर ही नजर गाड़े है कमर।
0: जी अच्छा नहीं है, जी अच्छा नहीं है, किसी से नहीं मिलेंगी। अजी मैं कौन सा बेकरार हूँ, मेरा तो बस चले तो बस, मैं तो अपनी रकम वसूल करके जाऊं। अजी मैं तो इतना जानता हूँ कि जब तक मेरी रकम नहीं मिलती ना तो बंदा यहाँ से खिसकने वाला नहीं है। अजी तुम हफ्ते भर जी बुरा रखो, मैं हफ्ते भर यहाँ डटा रहूंगा, साल भर बिस्तर पर पड़ी रहोगी तो मैं साल भर यहाँ से खिसकने वाला नहीं हूँ। तुमने अभी देखा ही नहीं है बेगम, इस सफेद रंडसाले जोड़े और मासूम सूरत से मेरा दिल नहीं लुभा सकती तुम। हाँ
2: अबे ओला फेल।
3: जी सरकार।
2: अरे देख मियाँ घोड़े खोल दे, वापसी में वक्त लगेगा।
3: बहुत अच्छा मियाँ।
2: और देख बेगम के कोचवाल से कहियो हमारे घोड़े के लिए जो भिजवा दे।
3: बहुत अच्छा।
0: किस भला की उमसर गर्मी है, ऊपर से कर्जदारों मक्कारों को जैसे सांप सूंघ गया है, है? रात अलग बर्बाद हुई और अब ये कमबख्त बेगम सोग मना रही है, फरमाती है दिल में ताब नहीं है, सर दर्द से फटा जा रही है, दो घूंट पी लेता तो काम बन जाता। अबे कोई है?
1: है साहब जी है, मैं जो हूँ।
4: अब क्या हुआ झिंगर को?
1: क्या चाहिए सरकार?
0: अरे बुढ़िया जरा कुछ शरबत सोडा लेकर आओ, और देखो कुछ नमकीन का बंदोबस्त भी कर दीजो।
1: जाने कहाँ का लंगूर है, नमकीन भी चाहिए नवाब साहब को।
0: अरे मियाँ मोहम्मद उमर जरा अपना हुलिया तो देखो, सर झाड़ मुंह पहाड़, साला गर्द में अटा हुआ हूँ। अरे इस हुलिये में नवाबों जागीरदारों के यहाँ पहुँचना कहाँ की शराफत है मियाँ, है मेरी बला से। अजी मैं कोई मेहमानियां खाने तो नहीं आया, अपना कर्ज वसूल ले आया हूँ, कर्ज खा को इन नजाकतों से क्या लेना देना है।
1: ये चांदी की तस्तरी और ये खूबसूरत सुराही, ये शरबत और ये नमकीन, अरे और क्या चाहिए इस फटकार मारे को। अरे मर्दुआ तो बढ़ता ही चला जा रही है, लो और सुनो। लो मिया लो ये शरबत और ये रहा गिलास, लो लो पकड़ो ना।
0: अरे क्या बक बक कर रही है रे बुढ़िया?
1: अरे मारी जाऊं कुछ नहीं मिया, मैं तो बस यूं कहूं थी के
0: जानती नहीं कि किससे बात कर रही है। आज जा चली जा, यहाँ से चल ना तो क्या रहो।
1: या अल्लाह खैर किस मुसीबत में फंस गए, शैतान का सगा है भड़ुआ। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू,
0: गई। अरे कांगे बोतल दाएं जेब में तो थी, ये रही। उफ़ा, ये लानती शरबत भी पीना पड़ेगा, चल भाई घूट भर में हलकते पार हो जा। खून खोल दिया मेरा, बस चले तो सारी दुनिया को नोच फेंकू, इस किनारे से नोच लू या उस किनारे से नोच लू, सर फटा जा रही है। ओ बुढ़िया, ओ बुढ़िया
1: जी सरकार।
5: देखिए जनाब, हम दुनिया त्याग कर खामोशी से तन्हाई में दिन बिता रहे हैं, यही है हमारी तहजीब, ये चीखें ये शोर बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेहरबानी।

0: से हमें परेशान न
1: करें। देखिए मोहतरमा, मेरी रकम दिलवाओ, मैं अभी चला जाऊंगा।
0: हमने कह तो दिया, इस वक्त हमारा हाथ खाली है, खातिर जमा रखो, परसों तक हिसाब कर दिया जाए।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, अजी बेगम साहिबा, मैंने भी आपके गोश गुजार कर दिया है कि मुझे रकम परसों नहीं, आज और अभी चाहिए। मेरी रकम आज ना मिली तो कल तक गर्दन में फंदा डालकर लटक जाऊंगा।
0: मगर हम क्या करें, इस वक्त हमारे पास कुछ नहीं है, इतनी रकम नहीं है घर में। अजीब आदमी है आप, इतनी सी बात आपकी समझ में नहीं आती।
1: तो तुम रकम नहीं दोगी?
0: मजबूरी है।
1: तो ठीक है ठीक है, जब तक अदायगी नहीं होगी बंदा यहाँ से खिसकने वाला नहीं। ले भाई मोहम्मद मियाँ, जमकर बैठ जा।
0: ये बार बार उछल उछल कर पास क्यों आ रहे हैं? क्या बेहूदगी है! और खुदारा चिल्लाइए नहीं, ये शरीफों का घर है, मछली बाजार नहीं।
1: हाँ, मैं मछली बाजार की बात नहीं कर रही, अपनी रकम का सवाल कर रही हूँ। कल लगान मैं अदा करूंगा ये तुम्हारे होते सोते।
0: आपको ख्वातीन से बात करने की तमीज है कि नहीं
1: है?
0: ये मैं क्या देख रही हूँ, मेरे घर में और बोतल लाहौल वाला।
1: खूब जानता हूँ ख्वातीन से बात कैसे करनी चाहिए।
0: बिल्कुल नहीं, आप निहायत दर्जा बदतमीज और बदजबान इंसान है। शरीफ लोग औरतों से इस तरह बात नहीं करते।
1: क्या बात है, तो फिर जनाब से कैसे बात की जाए, अंग्रेजी में या फारसी में? आई एम मोस्ट थैंकफुल टू यू माई स्पैरो। निहायत खुशी हुई मुझे ये सुनकर मोहतरमा कि आप मेरी रकम अदा करने से कासिर हैं, तकलीफ के लिए माफ फरमाए। अरे हूर परी, देखिए ना मौसम किस कदर शानदार है, और ये सफेद लिबास कितना खिलता है आप पर, बंदा को रिश मजा लाता है बहुत।
0: निहायत बदतमीज और बेहूदा आदमी आप।
1: बदतमीज और बेहूदा, खवातीन से बात करने की तमीज नहीं है मुझे? अरे जिंदगी में तुम जैसी जितनी औरतों से निपटा हूँ मैं, उतनी तो गोरैया भी नहीं देखी होंगी तुमने। एक छोड़ तीन तीन औरतों की खातिर तो खून खराबा कर चुका हूँ, 12 को धोखा दिया और 9 के हाथों खुद धोखा खाया। हाँ, क्या समझी? अजी मोहतरमा, एक जमाना था जब दिन रात और आजाद के पीछे दौड़ता था मैं, उनकी पूजा करता था, नाज नखरे उठाता था, मगर उन तोता चश्म खवातीन ने मुझे कहीं का नहीं रखा। अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और आजाद, बस बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। आंखों से छलकती हुई वो मोहब्बत, देखते हुए लाल लाल होठ, भाला भाला मासूम हुस्न, चांद और चांदनी का सहर, नरम नरम सरगोशिया सरदा है। अब तो मैं इन सब अदाओं के लिए फूटी कौड़ी बना दूं। मोहब्बत है, आपकी बात नहीं कर रहा, वरना औरत जात तो सारी की सारी ही मगरूर और बेरहम होती है। अजी रूह के अंदर झांक कर देखो, नागिन है नागिन। ये कुर्सी है क्या भूसा? इसकी पुश को जरा जोर से क्या पकड़ा कि अपने मालकिन की तरह चटक गई। हाँ, क्या कह रहा था मैं? मैं कह रहा था कि इस नागिन का ख्याल है कि वो पैदा ही हुई है इश्क मोहब्बत के लिए। बकवास, औरत जात को भला मोहब्बत से क्या वास्ता? मोहब्बत हुई नहीं कि रोना कराना शुरू किया नहीं, ये मांग वो मांग। मर्द कम वक्त है कि कुर्बानी का बकरा बना जा रही है। कोई औरत वफाशार और साबित कदम नहीं होती। अजी खलूस का पुतला नहीं, हरगिज नहीं देखी होगी। वफादार औरत मिलना तो बहुत मुश्किल है।
0: तो फिर आपके ख्याल में वफादार कौन है? मर्द?
1: जाहिर है मर्द वफादार है।
0: मैं दुनिया में जितने भी मर्दों से मिली हूँ, मेरे शौहर उन सबसे हजार दर्जे बेहतर थे।
1: जी
0: हमने उन्हें दीवानावार चाहा है, अपनी रूह की तमाम तर गहराइयों से मोहब्बत की है उनसे। लेकिन उस बेहतरीन मर्द ने भी हमें धोखे दिए। उनकी मौत के बाद उनकी अलमारी से दराज पर आशिकाना खत बरामद हुए हैं, तो जाने किस किस ने लिखे थे। और जिंदगी में भी, उफ मेरे मौला, जिंदगी में भी हफ्तों महीनों मुझे तन्हा छोड़ छोड़ कर न जाने कहाँ कहाँ इश्क करते फिरे। हमारी नजरों के सामने मोहब्बत की पींगे बढ़ाई, हमारी दौलत लुटा रहे हैं, हमारे जज्बात को पैरों तले रौंद रहे हैं। इसके बावजूद हमारी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आई। मैं हमेशा वफाशार रही और आज उनकी मौत के बाद भी उनके नाम पर बैठी हूँ, उनकी मोहब्बत का दम भर रही हूँ। हम तो इस चार दीवारी में दफन हो गए हैं और मरते दम तक उनका सोग मनाएंगे।
1: सोग? अजी क्या समझती हैं मोहतरमा आप मुझे, गोया मैं जानता नहीं चार दीवारी में यूं जिंदा दरगोर होना, फूल सा सफेद रंडसाला जोड़ा पहनना, ये सब क्यों है? अमा इसमें जो जादू है, जो असरार है, जो शायराना हुस्न है, उससे बंदा खूब वाकिफ है, बंदा खूब जानता है औरतों की इन चालबाजियों को।
0: आपकी मजाल, हमसे ऐसी बातें कहने की जुर्रत कैसे की आपने?
1: जिंदा दरगोर साहिबा आप जरूर हुई है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह आंखों में काजल की लकीर लगाने का ध्यान है आपका।
0: आपकी ये मजाल,
1: भांगे भांगे चिल्लाइए नहीं, बंदा आपका मुख्तार नहीं है। हाँ मैं तो 16 आने सच्ची बात कह रही हूँ, औरत तो हूँ नहीं कि दिल में कुछ और जुबान पर कुछ। हाँ तो मैं कह रही हूँ कि शोर न मचाओ।
0: चिल्ला आप रहे हैं, मेहरबानी से फौरन तशरीफ ले जाया।
1: अजी 1200 रुपए की रकम दिलवाइए, हम अभी चले जाएंगे।
0: सरे 10 कुछ नहीं मिल सकता
1: है, तुम्हारे तो बड़े भी देंगे।
0: तुम जैसे को फूटी कौड़ी भी हमारे घर से नहीं मिलेगी, अब जाइए यहाँ से, पीछे छोड़िए हमारा।
1: बेगम साहिबा बंदा ना आपका शोहर है ना खासगार, सो मेरे सामने तो ये नाज रख रहे, कीजिए मत, मैं तो बैठ गया जमकर। करो क्या करती हो? अजी मुझे भी ये सब ड्रामे ये सीन पसंद नहीं है।
0: हमारे सामने बैठने की हिम्मत कैसे की तुमने?
1: जरूर बैठेंगे।
0: खुदारा आप जाइए,
1: खुदारा मेरी रकम दिलवाइए, गुस्से से बुरा हाल हुआ जा रहा है।
0: बदमाश और बदतमीज लोगों से बात भी करना पसंद नहीं करेंगे, मेहरबानी से फौरन यहाँ से निकल जाइए। नहीं जाएंगे,
1: खतरा ही नहीं।
0: आप निकलते हैं यहाँ से कि नहीं?
1: अजी तमीज से बात कीजिए खातून।
0: गवार कल्लट जंगली भालू लंगूर बदमाश दरिंदा कहीं का।
1: क्या क्या कहा तुमने? लंगूर?
0: तुम जंगली लंगूर हो, दरिंदे हो।
1: अरे मेरी बेइज्जती करने का क्या हक है तुम्हें बेगम अलीम? बोलो बोलो।
0: जरूर कहेंगे, हम डरते नहीं है तुम जैसे से।
1: क्या समझ रखा है औरत? तुम समझती हो शरीफों के साथ बदतमीजी करके बच निकलोगी? महज इसलिए कि तुम सिर्फ नाजुक में से हो। अजी औरत हो, अब इसका फैसला लड़ाई के मैदान में ही होगा। कहा है
0: या वाला पानी? अरे कोई पानी, हमें पानी।
1: अरे बुढ़िया तलवारें निकालो।
0: क्या समझ रखा है तूने? तेरे फटे बाज जैसी तेरी आवाज सुनकर डर जाएंगे शोजा कहीं का।
1: क्या तलवारें हाजिर करो? अरे बंदा उन लोगों में से नहीं है जो अपनी बेइज्जती को खामोशी से पी जाते हैं। मैं कहता हूँ औरत होगी तो अपने घर की, मगर मैं तो तलवार के जोर पर बदला लेकर ही रहूंगा।
0: जंगली लंगूर तेरे मंजार, लंगूर के लज्जा।
1: वो जमाने लद गए बेगम, जब बदतमीजी का अजाला सिर्फ मर्दों को करना पड़ता था, अब तो औरत मर्द की मसावात का दौर है और बंदा बदला लेकर ही रहेगा।
0: ठीक है, फैसला तलवार ही करेगी।
1: करेगी ठीक है, तो लाओ अभी फैसला करते हैं, लाओ फौरन।
0: फैसला होगा और अभी होगा। तलवार क्या, मेरे शौहर के पास तो बंदूकें भी थी। अच्छा? मैं अभी लाती
1: हूँ। ला ला ला ला,
0: तुम्हारी खोपड़ी में गोली उतारते हमारे दिल में ठंडक पड़ेगी। ला मेरी लंगूर।
1: सफेद मुर्गा भी, मैं भी तुझे गोली से उड़ाकर दम लूंगा। लेकिन भाई वाह वाह वाह वाह वाह, क्या करारी औरत है भाई। लड़ती लंगूर, तेरी खोपड़ी में गोली उतार कर दिल में ठंडक पड़ेगी। आई आई आई आई आई, क्या पटाखा औरत है, चेहरा गुस्से से लाल अनार हो रही है, आंखों से शरारे निकल रहे हैं। आई और क्या जियाले पंसे लड़ने पर आमादा हो गई है। आई आई आई आई, हमने तो जिंदगी भर ऐसी करारी औरत देखी
0: नहीं। अल्लाह के वास्ते साहब तुम चले जाओ, यही बुढ़िया तुम्हें जिंदगी भर दुआएं देगी, चले जाओ साहब।
1: क्या जियाली औरत है, बंदा खुदा लगती है, भरपूर औरत है। नहाए ना बबेला ना आंसू, शोला है शोला, मानो बाजुओं में चिंगारी लगा दियो। ऐसी जियाली औरत को खामा खा गोली का निशाना बनाना पड़ेगा।
0: आए मेरे सरकार, आए मालिक, अब तुम सिधारो यहाँ से।
1: औरत है जोरदार, देखकर दिल गुदगुदाने लग गया है। उफ, ये देखते काल, थोड़ी पर ये गड्ढा, रोसार पर उभरा हुआ ये दिल। आए, आए, आए। चाहे किसी को लबे बाम पर हवस, अरे बंदा तो खर्च की रकम भी माफ कर देगा, मेरा तो सारा गुस्सा ही हो गया। क्या लाजवाब चीज है।
0: कितनी भारी बंदूकें
1: जी। मैम
0: ये लो बंदूक
1: लाओ जी, लाइए। जी।
0: लेकिन हाँ। लेकिन एतराज ना हो हाँ। तू बंदूक तानने से पहले मेरी गोली चलाना हाँ, सिखा दे।
1: क्यों नहीं, क्यों नहीं?
0: हमने जिंदगी भर कभी बंदूक तलवार को हाथ भी नहीं लगाया।
1: कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे।
0: या मौला मुश्किल कुशा रहम। अरे भी सगीरन, बेटी वो क्या देख रही है? अरे जल्दी से जाओ, आए ना हो तो माली और कोचवान को ही पकड़ लाऊं। या अल्लाह, ये हमें किस गुनाह की सजा दे रही है तू?

0: മധുരമ ബന്ധു കണ്ണ നിഗാഹ് കെ തീർത്തോ ബളെ സാളെ ജലി മർദ് കാ കലേജാ ജലി കർത്തേ ഐസേ ഠീക് ഠീക് अब घोड़ा चढ़ाकर देखिए यू निशाना बांधिए यू हाँ ऐसे देखिए जरा सर को पीछे कीजिए बाजू में देखिए दूर और दूर ऐसे और फिर उंगली से लबलबी दबा दीजिए बस इतनी सारी बात है मगर ध्यान रहे निशाना बांधते वक्त घबराना नहीं बेगम साहबा और जल्दबाजी भी ना करना हाथ कांपने ना पाए बस
1: चलिए बाहर बाग में चल के गोली चला
0: जरूर चलिए लेकिन बेगम साहबा मैं कह देता हूँ बंदूक बंदा हवा में चलाएगा
1: या अल्लाह अब ये क्या हुआ क्यों
0: क्यों जाने मन अगर तुम मुझे जान लेवा हद तक दिलकश लगती हो तो मेरा क्या कसूर तुम समझते क्यों नहीं खुदारा मेरी दरखास्त कबूल कर लो बोलो बोलो बेगम करोगी शादी ठीक है ना नहीं चाहते तो ना सही अरे हम कौन होते हैं आपको मजबूर करने वाले अच्छा तो
1: कुछ नहीं
0: जी
1: चाहिए
0: चाहिए
1: ठीक है जाइए
0: जाइए जा रहे आए
1: नफरत है मुझे आपसे
0: मुझसे
1: नफरत है रुकिए
0: रुके
1: आप समझ सकते हैं हम कितने खफा हैं आपसे लाने थे इस बंदूक पर आई तो उंगलियां ही शैल हो गई खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं निकल जाइए
0: निकल जाइए खुदा हाफिज मेरी जिंदगी खुदा हाफिज ये क्या बेगम साहबा आप तो रूमाल को आंसुओं से भिगोए दे रही
1: है निकल जाइए कहाँ जा रहे हैं आप कहाँ जा रहे हैं अभी तो इनको धकेलने को कदम बढ़ाया था अभी इनके सीने पर सर रख दिया कितना सुकून मिल रहा है खुदा कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं कैसे संभालूं मैं तेरे को कैसी हलचल मची हुई है कैसी हलचल मची मेरे दिल में या अल्लाह कितना सुकून है इस बाजी के सहारे में कितनी जज्बात परवर है ये दिल की धड़कन
2: हाय अल्लाह अरे ये क्या देख रही हूँ मैं अरे कहा तो ये बंदूक चला हुई थे ये दूसरे को गोली मारने को कही थी कहा चिमटे जा रही है दूसरे से लो और सुनो मौला मुश्किल कुशा रहे या अल्लाह ये पलट चपत्ते दुनिया ही पलट गई ले सगीर बेगम की तो नैया पार समझ चलो जो भी हो कलाई में चूड़ियां तो खनकेंगी।

बिल सरमत का कामयाब तजर्बा किया है। योवेरी मुसेवेनी ने रिकॉर्ड 7वीं बार युगांडा के सदर की हैसियत से हलफ लिया है। और बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में अपने अहम मैच खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। भारत कल से ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए खारजा की एक दो रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। इसकी सदारत वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर करेंगे। ब्रिक्स के वज़राए खारजा और रुकने और शराकतदार मुल्कों के वफद के सरबराहान इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। मीटिंग के दौरान ब्रिक्स रुकन मुल्कों के वज़राए खारजा बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। मीटिंग से पहले डॉ जयशंकर नई दिल्ली में बहुत सी दो तरफा मीटिंग्स करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 1998 में भारत की जानिब से किए गए जौहरी तजर्बात को याद किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम शेयर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन तजर्बात ने मुल्क के मजबूत अज़्म को दुनिया के सामने पेश किया। जनाब मोदी ने कहा कि इन तजर्बात के बाद पूरी दुनिया ने भारत पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती। हुकूमत ने सालाना मजमूई घरेलू पैदावार GDP के आरजी तखमीने और चौथी सहमाही के लिए GDP के सहमाही तखमीने के इजरा की तारीख दोबारा मुकर्रर की है। पहले यह तारीख मई का कामकाज का आखिरी दिन होता था, लेकिन अब इसे हर साल जून की 7 तारीख कर दिया गया है। इजरा की तारीख में यह तब्दीली कौमी अकाउंट्स के आदादोशुमार से मुतालिक मुशावरती कमेटी के साथ सलाह मशवरे के बाद की गई है। वजारत ने कहा कि इस तब्दीली का मकसद आदादोशुमार की क्वालिटी को मजीद मुस्तहकम बनाना है। हुकूमत ने सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा किया है, जो आज से नाफिजुल अमल होगी। एक बयान में वजारत खजाना ने कहा कि सोने और चांदी के जेवरात के हिस्सों पर 5% ड्यूटी और प्लेटिनम के हिस्सों पर 5.4% ड्यूटी लगेगी। मजीद बरां कीमती धातुओं के इस्तेमाल शुदा कैटलिस्ट की शरह 4.35% मुकर्रर की गई है, जो कि तामील के मेयारात को पूरा करने से मशरूत है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया में जारी बहरान के मद्देनजर लोगों से सोना न खरीदने की अपील की थी। वजारत खारजा ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के ख्वाहिशमंद अकीदतमंदों से अपील की है कि वो इस माह की 19 तारीख से पहले दरख्वास्त जमा करा दें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का अमल जल्द बंद होने वाला है। मजीद तफसीलात और रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी वेबसाइट kmy.gov.in पर देखी जा सकती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के अपने 3 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो कल बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ सरबराह सतह की मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि वो चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दो तरफा रवाबित के अहम पहलुओं पर बातचीत करेंगे, और इम्कान है कि तिजारत को ही इस बातचीत में अहमियत हासिल रहेगी। ये शी जिनपिंग के साथ डोनाल्ड ट्रंप की 7वीं बिल मुशाफा मीटिंग होगी, और ये 2017 के बाद से किसी अमरीकी सदर का चीन का ये पहला दौरा होगा। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर बात की है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटजिक ताउन और बाहमी मफादात की हिमायत में UAE और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। रहनुमाओं ने मगरबी एशिया में ताजा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने इलाकाई वाकयात और इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सलामती और इस्तेहकाम पर पड़ने वाले संगीन असरात नीज उन्हें हल करने की कोशिशों का भी जायजा लिया। इस दौरान कल कतर ने ईरान के IRGC से मुंसलिक एक मुसल्ला ग्रुप की बूबियान जजीरे में दरअंदाजी की मजम्मत की है, जो इसके बकौल कुवैत के खिलाफ अदावत पर मबनी कार्रवाई अंजाम देने के लिए थी।
روس نے کل بین بر اعظمی بیلسٹک میزائل سرمت کا کامیاب تجربہ کیا ہے. اسٹریٹجک میزائل فورسز کے کمانڈر سرگئی کارکائف نے بیان دیا ہے کہ سرمت میزائل سسٹم کے تجربات کے نتائج

फतेह फिल्म का नगमा भी आपने सुना। आवाजें थी विशाल मिश्रा और आशीष कौर की। नगमा निगार और मौसीकार दोनों ही थे शब्बीर अहमद। अगला नगमा आप सुनेंगे धड़कन टू का। आवाजें श्रेय घोषाल और जुबिन नौटियाल की। नगमे के बोल लिखे हैं रश्मि विराग ने और मौसीकार हैं जावेद मोहसिन।

0: समझदार मिलेसर, मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। और लीजिए अब सुनिए तारीख साज प्रोग्राम के तहत हसरत मोहानी पर तकरीर। मुकर्रर है इकबाल वारसी, तहरीर है अब्दुल कलाम कासमी की।
1: रईसुल अहरार हसरत मोहानी हिंदुस्तान की कौमी तारीख के एक मायनाज फर्जंद और उर्दू शायरी के नुमाइंदा गजलगू की हैसियत से गैर मामूली अहमियत के मालिक हैं। हसरत मोहानी उस इब्तदाई दौर में हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी के अलमबरदार रहे जब मुकम्मल आज़ादी का तसव्वुर करना भी मसलहत अंदेशी के खिलाफ तसव्वुर किया जाता था। हसरत मोहानी ने एक अदीब और शायर के तौर पर अपनी मादरे दसगाह अलीगढ़ कॉलेज का नाम रोशन किया तो एक सियासतदान की हैसियत से जंग आज़ादी की तारीख में एक नए बाब का इजाफा किया। वो सिर्फ अदीब और सहाफी ही नहीं थे बल्कि एक दानिश्वर और फ़ाल सियासतकार भी थे। उन्होंने सारी जिंदगी अपनी खिदमात मुल्क और कौम के लिए वक्फ रखी, लेकिन उनकी सियासी सरगर्मियों ने न तो उनकी शायरी पर मनफी असरात डाले और न ही उनकी शायरी और इल्मी सरगर्मी सियासी तगोदौ की राह में हायल हुई। वो सियासत और अदब की अपनी अपनी हदों से बखूबी वाकिफ थे और उन्होंने दोनों की हदबंदियों को कभी गड़मड़ न होने दिया। हसरत मोहानी का असल नाम सैयद फजलुल हसन था। वो सन 1878 में अवध के एक मशहूर कस्बे मखान में पैदा हुए। उनके वालिद बुजुर्गवार का नाम सैयद अजहर हसन था। उनके अजदाद निशापुर से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे और मोहान में सुकूनत इख्तियार कर ली थी। हसरत मोहानी ने इब्तदाई तालीम मोहान और फतेहपुर में हासिल की। चूंकि तालिब इल्म बहुत अच्छे थे इस

0: शक्ति फिल्म का नगमा भी आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजे हैं, अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप फैसल हबीब से आलमी खबरें सुनिए। नई दिल्ली में कल से शुरू होने वाली ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग के लिए स्टेज तैयार। वज़ीर खारजा डॉ एस जयशंकर आज ब्रिक्स मुल्कों के अपने हम मनसबों के साथ आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के अपने 3 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। रूस ने बैन बरआजमी बैलिस्टिक मिजाइल सरमट का कामयाब तजर्बा किया। यूवेरी मुसवेनी ने रिकॉर्ड 7वीं बार युगांडा के सदर की हैसियत से हलफ लिया है। और बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में अपने अहम मैच खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। भारत कल से ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए खारजा की 2 रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। इसकी सदारत वज़ीर खारजा डॉ एस जयशंकर करेंगे। ब्रिक्स के वज़राए खारजा और रुकन और शराकतदार मुल्कों के वफद के सरबराहान इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। मीटिंग के दौरान ब्रिक्स रुकन मुल्कों के वज़राए खारजा बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। मीटिंग से पहले डॉ जयशंकर नई दिल्ली में बहुत सी दो तरफा मीटिंग्स करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 1998 में भारत की जानिब से किए गए जौहरी तजर्बात को याद किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत

कहा कि इन तजुर्बात के बाद पूरी दुनिया ने भारत पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के अपने 3 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो कल बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ सरबराह सतह की मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि वो चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दो तरफा रवाबित के अहम पहलुओं पर बातचीत करेंगे और इम्कान है कि तजारत को ही इस बातचीत में अहमियत हासिल रहेगी। ये शी जिनपिंग के साथ डोनाल्ड ट्रंप की 7वीं बिलमुशाफा मीटिंग होगी और ये 2017 के बाद से किसी अमरीकी सदर का चीन का ये पहला होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान की ताजा तरीन अमन तजवीज को मुस्तरद किए जाने के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में और भी कमजोरी पैदा हो गई है। जनाब ट्रंप ने ईरान की तरफ से की गई जवाबी पेशकश को कचरा बताया है। इस इल्जाम तराशी के सबब बैन मगरबी एशिया में तनाजे को फैलने से रोकने की कोशिशों में गैर यकीनी पैदा हो गई है। दूसरी तरफ ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने खबरदार किया है कि मुल्क की मुसल्ह फौजें किसी भी जारहाना कदम का सबक सिखाने वाला जवाब देने को तैयार हैं, क्योंकि ईरान ने अपनी तजवीज का दिफा करते हुए कहा है कि ये माकूल और खुले दिल से की गई तजवीज है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर बात की है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटजिक ताउन और बाहिमी मफादात के हिमायत में यूएई और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। रहनुमाओं ने मगरबी एशिया में ताजा सूरतहाल पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने इलाकाई वाकयात और इलाकाई और बैन अलाक्वामी सलामती और इस्तेहकाम पर पड़ने वाले संगीन असरात नीज उन्हें हल करने की कोशिशों का भी जायजा लिया। इस दौरान कल कतर ने ईरान के आईआरजीसी से मुंसलक एक मुसलह ग्रुप की बूबियान जजीरे में दरअंदाजी की मजम्मत की है, जो इसके बकौल कुवैत के खिलाफ अदावत पर मबनी कार्रवाई अंजाम देने के लिए थी। रूस ने कल बैन बर्रेआजमी बैलिस्टिक मिसाइल सरमट का कामयाब तजर्बा किया है। स्ट्रेटजिक मिसाइल फोर्सेस के कमांडर सरगई कारकाइफ ने बयान दिया है कि सरमट मिसाइल सिस्टम के तजर्बात के नतायज ने तयशुदा खसूसियात और उसमें शामिल किए गए फैसलों के दुरुस्त होने की तस्दीक की है। ये मिसाइल अहदाफ को तबाह करने की जमानत देने और स्ट्रेटजिक दफाई तदारुक के मसाइल को हल करने के लिए जमीन पर मबनी स्ट्रेटजिक एटमी फोर्सेस की जंगी सलाहियतों में नुमाया इजाफा करेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सरमट बैन बर्रेआजमी बैलिस्टिक मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर फौज को मुबारकबाद दी है। युगांडा के सदर यूवेरी मुसेवेनी ने लगातार 7वीं बार सदर के ओहदे का हलफ लिया है, जिसके बाद उनकी तकरीबन 40 साल की हुक्मरानी में तौसी हो गई है। जनवरी में होने वाले इंतखाबात में जबरदस्त अक्सरियत से जीत हासिल करने के बाद उन्होंने ये तारीखी कामयाबी हासिल की है। अफ्रीका के सबसे तवील अरसे तक इकदार में रहने वाले कायदीन में शामिल होने वाले मुसेवेनी ने कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड में मुनक़िदा तकरीब में हलफ लिया। कंपाला में होने वाली इस तकरीब में हजारों अफराद ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजारत खारजा ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले ख्वाहिशमंद अकीदतमंदों से अपील की है कि वो इस माह की 19 तारीख से पहले दरख्वास्त जमा करा दें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का अमल जल्द बंद होने वाला है। मजीद तफसीलात और रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी वेबसाइट kmy.gov.in पर देखी जा सकती है। जम्मू कश्मीर में फौज ने कल पूंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दरअंदाजी की एक कोशिश नाकाम कर दी। कृष्णा घाटी सेक्टर में एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया। हमारे नमानिगार ने बताया कि मुस्तैद फौजियों ने मखसूस इत्तलात मिलने के बाद शाम के वक्त 4 बजे कृष्णा घाटी सेक्टर में LOC के करीब तकरीबन 300 मीटर अंदर नकलो हरकत देखी। फौजियों ने फौरन दरअंदाज को घेर लिया और कार्रवाई करते हुए दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम कर दिया। फौज ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया है। हुकूमत ने सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा किया है, जो आज से नाफिजुल अमल होगी।

0: एक बयान में वजारत खारजा ने कहा कि सोने और चांदी के जेवरात के हिस्सों पर 5% ड्यूटी और प्लाटिनम के हिस्सों पर 5.4% ड्यूटी लगेगी। मजीद बरां कीमतों धातों के इस्तेमाल शुदा कैटलिस्ट की शरह 4.35% मुकर्रर की गई है, जो कि तामील के मेयारात को पूरा करने के से मशरूत है। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया में जारी बहरान के मद्देनजर लोगों से सोना न खरीदने की अपील की थी। 17 साल से कम उम्र के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में खेले जा रहे मुकाबले में भारत की तरफ से लक्ष्य फोगाट वाहिद मुक्केबाज हैं, जिन्होंने फाइनल में जगह बनाई है। उन्होंने 75 किलोग्राम जुमरे के सेमीफाइनल में कोरिया के ल्योंगमिन ली को 5-0 से शिकस्त दी, जबकि भारत के 4 दीगर मुक्केबाजों को कांसे के तमगे पर इत्तफा करना पड़ा। दूसरी जानिब भारतीय खवातीन ने शानदार खेल का मुजाहरा किया और 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई, जबकि 4 दीगर ने कांसे के तमगे हासिल किए। अब खवातीन की टीम ने फाइनल में अपने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने का तमगा हासिल करने की कोशिश करेगी। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी आज सिंगल्स जुमरे के राउंड ऑफ 32 में खेलेंगे। खवातीन के सिंगल्स मुकाबलों में उन्नति हुड्डा और देविका सिन्हा सिहज खेलेंगी, जबकि तारा शर्मा और ईशा रानी बरुआ भी अपने मैच खेलेंगी। मर्दों के सिंगल्स में कदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला लोह किन यी से होगा। भारत ने थाईलैंड ओपन में 27 रुकनी दस्ता भेजा है। यह मुकाबला थाईलैंड में बैंकॉक के नीमबित्रो स्टेडियम में खेला जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। नई दिल्ली में कल से शुरू होने वाली ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग के लिए स्टेज तैयार। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर आज ब्रिक्स मुल्कों के अपने हम मनसबों के साथ आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के अपने 3 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। रूस ने बैन बरआजमी बैलिस्टिक मिसाइल सरमट का कामयाब तजर्बा किया है। यूवेरी मुसवेनी ने रिकॉर्ड 7वीं बार युगांडा के सदर की हैसियत से हलफ लिया है। और बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में अपने अहम मैच खेलेंगे। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है इस वक्त की खबरों की अहम सुर्खियां। नई दिल्ली में कल से शुरू होने वाली ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग के लिए स्टेज तैयार। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर आज ब्रिक्स मुल्कों के अपने हम मनसबों के साथ आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। अमरीकी सरद डोनाल्ड ट्रंप चीन के अपने हम 3 रोजा दौरे पर रवाना हो गए। रूस ने बैन बर्रे आजमी बैलिस्टिक मिसाइल सरमट का कामयाब तजुर्बा किया। यूवेरी मसेवीनी ने रिकॉर्ड 7वीं बार युगांडा के सदर की हैसियत से हल्फ लिया। और बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में अपने अहम मैच खेलेंगे। इसी के साथ खबरों की सुर्खियां खत्म हुई। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दोपहर के 1:15 होने को हैं। उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म होता है। दोपहर 3 बजे आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।

0: ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
3: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना
6: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: जी दोस्तों आज की जो महफिल सजी है वो सजी है मुनीम जी के नाम। एक ऐसी फिल्म जिसने हमें सिखाया कि प्यार की राहों में अमर और रजनी का जो सफर है वो कितना खूबसूरत हो सकता है। अमर और रजनी यानी कि इस फिल्म की वो खूबसूरत जोड़ी, अमर और रजनी यानी कि देवानंद और नूतन की जो केमिस्ट्री है वो पहली बार इस तरह से बड़े स्तर पर सराही गई। जी हाँ दोस्तों मुनीम जी का अगर हम मुनीम जी फिल्म के बारे में अगर हम बात करें तो आपको याद आएगा वो टेढ़ा सा हैट, आंखों में खास चमक और गर्दन झुकाकर बात करने का वो निराला सा अंदाज। जी हाँ हम बात करें बॉलीवुड के एवरग्रीन स्टार देवानंद साहब की, लेकिन हम उनके सिर्फ एक्टिंग की नहीं बल्कि उनकी फिल्म की भी बात करेंगे। वो फिल्म जो कि आज हम लेकर आए हैं मुनीम जी, जिसमें सस्पेंस भी था रोमांस भी था और साथ ही साथ उसमें SD बर्मन साहब का संगीत जो आज भी हमारे कानों में घोलता है शहद।

जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म मुनीम जी के बारे में। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम में, एक ही फिल्म में। दोस्तों, ये जो फिल्म है, इस फिल्म के पीछे बहुत सी कहानियाँ, बहुत से किस्से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम जानते हैं, सन 1956 में जब फिल्म फेयर अवार्ड्स थे, तो इस फिल्म ने एक इतिहास रचा। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में नूतन ने अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जीता अपना पहला फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। यही नहीं, ये उनके करियर की सबसे बड़ी उड़ान थी। जी हाँ, सबसे बड़ी उड़ान, या कह सकते हैं कि सबसे बड़ी छलांग थी, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उन्हें इस फिल्म ने रातों रात बना दिया सुपरस्टार। और अगर हम बात करें इस फिल्म के गाने की, तो इस फिल्म के जो गीत हैं वो भी एक से बढ़कर एक हैं। लेकिन आपको मालूम है इस फिल्म को डायरेक्ट किसने किया था, इसके पीछे किसका दिमाग था? सुबोध मुखर्जी। जी हाँ, सुबोध मुखर्जी थे इस

फिल्म के डायरेक्टर जिन्होंने जिन्हें जाना जाता था अपनी फिल्मों में ग्लैमर और सस्पेंस के लिए। और मुनीम जी की कामयाबी के बाद उन्होंने बहुत सी फिल्में बनाई जिनमें जंगली और शागिर्द जैसी हिट फिल्में भी शामिल हैं।

जी दोस्तों, रेडियो के सफर को थोड़ा और आगे चलाते हैं। वैसे दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि जो जोड़ियां होती हैं वो ऊपर वाला बनाता है, लेकिन जो सिनेमा की जोड़ियां बनती हैं वो कभी कभी बहुत ही दिलचस्प इत्तफाकों से बनती है, और वही हुआ फिल्म मुनीम जी में देवानंद और नूतन का साथ में आना। जी हाँ, उन दोनों का किसी फिल्म में साथ आना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। तो चलिए बताते हैं आपको। दरअसल नूतन जी इस फिल्म को करने से ठीक पहले पढ़ाई करने के लिए स्विट्जरलैंड चली गई थी, और उस दौर में किसी भी टॉप एक्ट्रेस का अपने करियर को छोड़कर पढ़ने के लिए जाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और जब वो पढ़ाई पूरी करके वापस आई तो वो पहले से और भी ज्यादा दुबली हो गई थी। जी हाँ, क्योंकि नूतन पहले से ही काफी दुबली पतली एकदम पतली सी थी, लेकिन जब वो वहां से आई तो और भी ज्यादा पतली थी। तो फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे शशधर मुखर्जी और डायरेक्टर सुबोध मुखर्जी, उन दोनों ने भाई उनको

चाहिए तो अपने फिल्म में नूतन ही चाहिए थी, क्योंकि उनको एक ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी जो दिखने में मॉडर्न भी दिखे, लेकिन साथ ही साथ मॉडर्न होने के साथ साथ वो सादगी से भी भरी हुई हो। और नूतन जी का इस मामले में तो क्या ही कहना। जी हाँ, क्योंकि नूतन जहाँ अपने अंदर सादगी समेटे हुए हैं, वहीं वो पूरी तरह से मॉडर्न भी थी। लेकिन अब आड़े आ रही थी यही चीज कि भाई ये तो बहुत दुबली पतली हैं, और अगर इतने दुबली पतली हमें हीरोइन नहीं चाहिए, और उनकी जो थोड़े से वो झिझक रहे थे उनको लेने के लिए, तभी सुबोध मुखर्जी ने भरोसा जताया और उन्होंने नूतन से कहा कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, आपके लिए जो कपड़े बनाएंगे वो इस तरह के बनाएं जिसमें कि आप थोड़ी बल्की लगें, थोड़ी मोटी लगें। और जब फिल्म में उन्होंने काम किया, जब उन्होंने अपनी अदाकारी के जलवे दिखाए, जौहर दिखाया, तो किसी की भी नज़र उनकी कद काठी पर गई ही नहीं। उन्होंने अपनी एक्टिंग से हर किसी को इतना ज़्यादा इम्प्रेस किया कि कोई भी उस चीज़ को देख ही नहीं पाया कि भाई वो इतनी दुबली पतली भी। और अगर बात करते हैं देव साहब के बारे में, भी 1955 में जब ये फिल्म आई थी, उस टाइम तक देवानंद साहब एक बहुत बड़े स्टार थे, और जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सुबोध मुखर्जी जी और देवानंद साहब, उनके बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। अब देवानंद का उस वक्त में काफ़ी अच्छा चार्म था, और वो एक मामूली मुनीम के रूप में आएंगे ये और आकर के ऑडियंस को अपनी तरफ खींचे, ऐसा थोड़ा सा उनको गलत लग रहा था। तभी देवानंद को ये आइडिया जो था उनका कि भाई आपको मुनीम बनना होगा, वो बड़ा पसंद आया, और उन्हें फिल्म में अपनी पहचान छिपा कर एक जासूस की तरह काम करना है, आप इस चीज़ को इस तरह से लें, ना कि ये सोचें कि मैं एक मुनीम बनूंगा। उन्होंने ना केवल इस रोल को अपनाया बल्कि नूतन के साथ इतनी गजब की केमिस्ट्री दिखाई कि लोग इस जोड़ी के दीवाने हो गए। और वाकई में इस कामयाबी के बाद देवानंद साहब और सुबोध मुखर्जी की जोड़ी ने आगे चलकर पेइंग गेस्ट जैसी सुपरहिट फिल्म भी दी थी। जी हाँ दोस्तों, शायद यही वजह, अगर उस दिन सुबोध मुखर्जी ने इन दोनों सितारों को साथ में लाने का फैसला अगर नहीं किया होता, तो आज हम लोगों को इतनी खूबसूरत और इतनी गजब की ये फिल्म शायद नहीं मिलती।

अब गई ना। दिल की उमंग है जवान, गई ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म मुनीम जी के बारे में। दोस्तों, इतनी देर से हम बता रहे हैं कि ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है, तो हम इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। ये फिल्म की कहानी शुरू होती है एक अमीर परिवार से, जहां एक माँ यानी कि निरुपा रॉय के दो बेटे हैं, रतन और

बनता है अमर देवानंद, एक होनहार नौजवान। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अमर एक मुनीम बन करके, मुनीम का रूप धर के उसी घर में वापस आता है जहां पर रतन अपनी चाले चल रहा होता है। और इसी बीच एंट्री होती है खूबसूरत और चुलबुली रजनी की, रजनी यानी कि नूतन की। रजनी और मुनीम जी यानी कि अमर के बीच में नोकझोंक शुरू होती है और धीरे धीरे ये नोकझोंक प्यार में बदल जाती है। लेकिन अब अमर को अपना हक भी पाना है, रजनी का दिल भी जीतना है, वो भी अपनी पहचान को छिपाते हुए। और मुनीम जी का असली जो मिशन होता है वो सिर्फ प्यार नहीं था बल्कि बेनकाब करना था उस शातिर विलन को जो जायदाद हड़पने के चक्कर में था। फिल्म का अंत सस्पेंस इमोशन से भरा हुआ है जब माँ अपने दोनों बेटों को पहचानती है और अमर अपनी चतुराई से बुराई पर जीत हासिल करता है। तो दोस्तों ये थी कहानी उस फिल्म मुनीम जी की जिसने हिसाब सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि दिल का भी किया जाता है। इसी बात पर सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत इसी फिल्म से।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। और ये जो संदेश हम तक आया है इसको पहुंचाने वाले हैं स्वर्ण सिंह जी, और इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। इनके साथ हैं दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, नीतेश कुमार देवगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन।

कथाकार मनोज हिमांशु सुधार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलामती, विनीता वर्मा हमारे साथ जुड़े, रुद्र वर्मा के साथ रतरंगी भट्टापारा से, संदीप मकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योति मन्नत भारत के साथ कमल सहानी पिंगावाला चौक गुरैया जालंधर से, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नलेश्वर नगर नरवेल से पीएस नवानकर, निर्मला विशाल मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष महरेकर हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा जो अगला संदेश है उसको भेजा है हमारे हम तक बीरगांव गुजरात से अजित भावसार, प्रमीला भावसार, भावेश सन्नी भावसार ने, छत्तीसगढ़ पलारी से हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हुए हैं प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा जी के साथ अनिल मोहन, उषा मोहन, टिलू नायक जी जुड़े हैं पहाड़गंज, मुल्तानी ढांडा से कैथल, हरियाणा से मधु नायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही खूबसूरत सी इन्होंने जानकारी हम तक शेयर की है, और भी हम तक बहुत से संदेश आए हैं जिसमें से ये संदेश देवशंकर तामुलिया जी का हमारे साथ में, सुदर्शन मुखिया, अनिता मुखी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शांतिनगर सोनीपत से भूषण खेरा जी हम तक जुड़े हुए हैं, उषा मोहन, संजय ढींगिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नमन ढींगिया पाडिंगिया के साथ बागपत उत्तर प्रदेश से, विजेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजकुमार डूडी जी हमारे साथ जुड़े हैं, संजय साहू जी पोटियाकला दुर्ग से हम तक जुड़े हुए हैं, बबलिश पवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इंद्रभान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, लालगिरी जी हम तक जुड़े हैं, इशाक मोहम्मद, अजीत भावसर जी, जगराम साहू, मुकेश भट्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला जी पटियाला से। तो दोस्तों कार्यक्रम एक ही फिल्म में आज की फिल्म मुनीम जी, मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति अभी

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की कयादत वाली टीवीके हुकूमत ने रियासती असेंबली में आसानी से अक्सरियत साबित करते हुए एतमाद का वोट जीत लिया है। वहीं एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी मुद्दत के लिए पुडुचेरी के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। मगरबी एशिया के तनाजे की वजह से पैदा हुए तवानाई के आलमी बहरान के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील पर मरकज और रियासतों ने ईंधन की बचत के इकदाम तेज कर दिए हैं। सीबीएसई ने आज 12वीं जमात के नतीजों का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की जानिब से इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर करीब 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% का इजाफा हो गया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि इस साल जुनूब मगरबी मानसून की जल्द आमद का इम्कान है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु में वजीराला जोसेफ विजय की क्यादत वाली नई हुकूमत ने आज रियासती असेंबली में 144 अराकीन असेंबली की अक्सरियत साबित कर दी है और एतमाद का वोट जीत लिया है। वहीं एडापड्डी पेलानी सामी की क्यादत वाले 22 एआईएडीएम के अराकीन असेंबली ने इसके खिलाफ वोट दिया। बीजेपी और पीएमके से ताल्लुक रखने वाले 5 अराकीन असेंबली ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। असेंबली में अक्सरियत साबित करने की करारदाद वजीर आला ने पेश की थी। एसपी वेलुमनी की क्यादत वाले एआईएडीएमके ने हुकूमत की हिमायत की है। मगरबी बंगाल की 18वीं कानून साज असेंबली के 9 मुंतखब एमएलएज को कोलकाता में हलफ दिलाया जा रहा है। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से एमएलए के तौर पर हलफ लिया, जबकि नंदीग्राम सीट को खाली रखा गया है। इसके बाद 5 दीगर काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। आम जनता उन्नयन पार्टी के एमएलए हुमायूं कबीर ने नोएडा सीट के लिए हलफ लिया। जनाब कबीर रेजीनगर सीट से भी जीते हैं। उबूरी स्पीकर तपस रॉय ने उन्हें हलफ दिलाया। आजमूदाकार सियासी रहनुमा और ऑल इंडिया एनआर

0: कांग्रेस के बानी एन रंगासामी को आज पांचवी म्याद के लिए पुडुचेरी के वजीराला के तौर पर हलफ दिलाया गया, जो कि एक रिकॉर्ड है। उनके साथ बीजेपी के ए नमसिवम और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मलाडी कृष्णा राव को भी एनडीए सरकार में वजीर के तौर पर हलफ दिलाया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में मुनक़दा एक तकरीब में पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथन ने वजीर आला और दो वजीरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन, बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बी एल संतोष, पुडुचेरी के इंचार्ज निर्मल कुमार सुराना, बीजेपी के रियासती सदर वीपी रामा लिंगम, डीएमके के कन्वीनर आर सिवा, कानून साज असम्बली साबिक स्पीकर आर सिल्वम और नौ मुंतखब अराकान असम्बली और पार्टी के दीगर अहदेदारान मौजूद थे। हलफबरदारी की तकरीब के बाद जनाब रंगास्वामी वजीर आला के दफ्तर गए और जिम्मेदारी संभाली। नामा निगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंगापुर के तर्ज पर पुडुचेरी को तरक्की देने के लिए काम करेगी। पुडुचेरी से बिबिन एस नाथन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अंदरून मुल्क हालिया दौरों के दौरान अपने काफिले में मोटर गाड़ियों की तादाद में खातिरखा कमी की है। अलबत्ता स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के प्रोटोकॉल के तहत सभी सिक्योरिटी इंतजाम बरकरार रखे गए हैं। जराए के मुताबिक वजीर आजम के काफिले में मोटर गाड़ियों की तादाद में कमी गुजरात और आसाम के उनके हालिया दौरे के दौरान की गई। यह कदम मगरबी एशिया के बहरान के पेश नजर ईंधन की दरामदात पर इन्हिसार कम करते हुए इकतसादी इस्तेहकाम में ताउन के लिए शहरियों से उनकी अपील के बाद उठाया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील पर अपने काफिले की तादाद घटाते हुए उसे आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के वजराए आला ने भी वजीरों, अराकीन असेंबली और अवामी नुमाइंदों की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली सरकारी गाड़ियों की तादाद कम करने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर आला, वजीरों और दीगर अफसरान की सरकारी गाड़ियों के बेड़े में 50% कटौती करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि सरकारी काफिलों से गैर जरूरी गाड़ियों को निकाल लिया जाए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के 3 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो कल बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ सरबरा सतह की मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि वो चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दोतरफा रवाबित के अहम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। इम्कान है कि तिजारत को इस बातचीत में अहमियत हासिल रहेगी। ये शी जिनपिंग के साथ डोनाल्ड ट्रंप की 7वीं बिल मुशाफा मीटिंग होगी और ये साल 2017 के बाद से किसी अमरीकी सदर का चीन का पहला दौरा होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने आज 12वीं जमात के नतीजों का ऐलान कर दिया है। तलबा अपने नतीजे ऑफिशियल वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना रोल नंबर लिखकर देख सकते हैं। इस साल सीबीएसई की 12वीं क्लास के इम्तिहानात 17 फरवरी और 10 अप्रैल 2026 के दरमियान कराए गए थे। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने आज सुबह चिली के खारजी उमूर के वजीर फ्रांसिस्को पेरेज मैकेन्ना से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि फरीकैन ने तरजीही अशिया की बरामदात को फरोग देने और खिदमात पर मबनी मईशत को आसान बनाने की खातिर बाजारों और सोर्सिंग को वसत देने के मकसद से दोतरफा ताउन को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया। दोनों फरीक कसीर जहती फोरमों पर एक दूसरे के साथ तालमेल से काम करने पर रजामंद हो गए हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% की तेजी देखी गई। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के मुस्तकबिल के मार्केट में जून कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने की कीमत 6% के इजाफे के साथ 1,62,597 रुपये फी तोला रही। वहीं जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में चांदी की कीमत 6.4% के इजाफे के बाद 2,96,821 रुपये फी किलोग्राम रही। ताहम आज के कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक का इजाफा हुआ। हुकूमत ने सोने और चांदी पर सेस समेत इम्पोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% तक का इजाफा कर दिया है। प्लेटिनम पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी 6.4% से बढ़ाकर 15.4% कर दी गई है। सरकार ने आज से सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदी महसूल में इजाफा कर दिया है। वजारत खजाना ने एक बयान में कहा है कि सोने और चांदी के जेवराती अज्जा पर 5% महसूल जबकि प्लेटिनम के अज्जा पर 5.4% महसूल आयद होंगे। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों से अपील की थी कि वह मगरबी एशिया में जारी बहरान के मद्देनजर सोना न खरीदें। भारत में इस साल जुनूब मगरबी मानसून की जल्द आमद का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसमी हालात साजगार हैं। محکمہ موسمیات نے آج راجستھان کے لیے لو چلنے کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. گجرات، مہاراشٹر اور مغربی مدھیہ پردیش میں بھی گرم ہوائیں چلنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے ملک کے شمال مشرقی حصوں اور انڈمان و نکوبار جزائر کے لیے کل تک شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی بھی کی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق دلی میں اگلے 24 گھنٹے کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں تھوڑی کمی آنے کی امید ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون میں سابق صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمد کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا اور گلہ عقیدت نظر کیے. فخر الدین علی احمد نے ملک کے 5ویں صدر جمہوریہ کے طور پر 24 اگست 1974 سے 11 فروری 1977 تک اپنے انتقال تک فرائض انجام دیے. وہ پہلے ایسے صدر جمہوریہ ہیں جن کا عہدے پر فائز رہتے ہوئے انتقال ہوا. سی بی آئی کی ٹیم نیٹ امتحان کا پرچہ مبینہ طور پر لیک ہونے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے جے پور پہنچ گئی ہے. اس نے تقریباً 2 درجن افراد سے پوچھ تاچھ کی ہے جنہیں راجستھان پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ ایس او جی نے حراست میں لیا ہے. اس دوران ایس او جی نے سیکر اور اس کے اطراف کے علاقوں میں سینکڑوں افراد سے بھی پوچھ تاچھ کی ہے. پنجاب سرکار نے اگنی ویروں کے لیے ایک ریزرویشن پالیسی وضع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ دفاعی افواج میں ان کی میعاد مکمل کرنے کے بعد انہیں سرکاری نوکری دی جا سکے. آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام رائے پور میں رائل چیلنجرز بنگلور کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. تمل ناڈو میں سی جوزف وجے کی قیادت والی ٹی وی کے حکومت نے ریاستی اسمبلی میں آسانی سے اکثریت ثابت کرتے ہوئے اعتماد کا ووٹ جیت لیا ہے. وہیں این رنگا سامی نے ریکارڈ 5ویں مدت کے لیے پڈوچیری کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیا. مغربی ایشیا کے تنازع کی وجہ سے پیدا ہوئے توانائی کے عالمی بحران کے درمیان وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیل پر مرکز اور ریاستوں نے ایندھن کی بچت کے اقدامات تیز کر دیے ہیں. سی بی ایس ای نے آج 12ویں جماعت کے نتیجوں کا اعلان کر دیا ہے. حکومت کی جانب سے امپورٹ ڈیوٹی کو بڑھا کر قریب 15% کیے جانے کے بعد سونے اور چاندی کی قیمتوں میں 6% کا اضافہ ہو گیا ہے. اور بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اس سال جنوب مغربی مانسون کی جلد آمد کا امکان ہے. اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: گڈ آفٹر نون, دس از آکاش وانی اینڈ آئی ایم ابھیشیک مکھوپادھیائے ود دا مڈ ڈے نیوز. دا ہیڈ لائنز. In Tamil Nadu, C. Joseph Vijay-led TVK government wins floor test in state assembly with comfortable majority. N. Rangaswamy sworn-in as Chief Minister of Puducherry for a record 5th term. Center states intensify fuel-saving measures following Prime Minister Narendra Modi's appeal amid global energy crisis triggered by West Asia conflict. CBSE declares All India Senior Secondary Class 12th results. Gold silver prices jump over 6% after government hiked import duty to around 15%. IMD says monsoon likely to arrive early this year. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru to take on Kolkata Knight Riders in Raipur this evening. The newly sworn-in government led by Chief Minister Joseph Vijay has proven majority of 144 MLAs and has won the vote of confidence today. 22 AIA-DMK MLAs led by Edappadi Palaniswamy have opposed it. 5 MLAs, including the BJP MLA and PMK, remained neutral. DMK and other alliance partners did not participate in the motion and walked out of the assembly. The motion to prove majority was brought by Chief Minister in the assembly. The AIA-DMK led by SP Velumani supported the government. We have a report.
3: It was a day of expectation in Tamil Nadu politics. The TVK government had to face a floor test in which the ADMK party faced a split. The former chief minister and general secretary of the party, Edappadi Palaniswamy, criticized the ruling TVK government for encouraging a split in the party. He also criticized the speaker for allowing the breakaway group of AIADMK leader SP Velumani to speak on the motion of confidence. In his speech, Velumani said that they had to take a stand in support of the government to continue the ideals of MGR and Jayalalitha. In his speech, after winning the motion of confidence, Chief Minister Joseph Vijay assured that his government will definitely protect the welfare of the minorities and work for the welfare of the people. He said that the people will accept this government because the welfare schemes implemented by the earlier governments will be continued. Udayanidhi Stalin, the opposition leader, said that the Secular Progressive Alliance will continue to work for the wishes of the people. Joy, Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री मंत्रियों अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से राष्ट्रहित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
4: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ।

0: समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देशभर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे।

उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराओका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के संगीतमय सफर में।

श्रोताओं, बात उन दिनों की है जब हिंदी सिनेमा के संगीत का गोल्डन पीरियड चल रहा था। हर तरफ लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज का जादू छाया हुआ था। ऐसे समय में किसी नई सिंगर के लिए अपनी जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन इसी दौर में एक ऐसी आवाज उभरी जिसने अपनी अलग पहचान बनाई और वो आवाज थी शारदा राजन अयंगर की। 25 अक्टूबर 1933 को चेन्नई के एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। ये वो आवाज बनी जिसने 60 से 70 के दशक में अपनी एक अलग पहचान बनाई, एक ऐसी आवाज जो मासूम भी थी और चुलबुली भी। शारदा जी को बचपन से ही संगीत का शौक था, लेकिन इन्होंने कभी प्रोफेशनल सिंगर बनने का सपना नहीं देखा था। इनकी आवाज पारंपरिक प्लेबैक सिंगर से बिल्कुल अलग थी, थोड़ी तीखी, थोड़ा मासूम, यही इनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। इनका फिल्मों में आने का किस्सा भी बड़ा ही दिलचस्प है। दिग्गज राज कपूर साहब ने इन्हें ईरान की राजधानी तेहरान में एक पार्टी के दौरान गाते हुए सुना था। राज कपूर की पारखी नजर के मालिक थे, इन्होंने शारदा को मुंबई आने का न्योता दिया और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने बॉलीवुड संगीत के समीकरण बदल दिए। आगे इनके सिंगिंग सफर की बात

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो हैं शारदा जी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मशहूर प्लेबैक सिंगर शारदा जी की। दरअसल राज कपूर साहब के बुलावे पर शारदा मुंबई तो आ गई, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। राज कपूर ने इन्हें मशहूर संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन से मिलवाया। शंकर जी को शारदा की आवाज में एक फ्रेशनेस नजर आई। उस दौर में जहां हर कोई मंगेशकर बहनों की शैली को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, शारदा अपनी ओरिजिनल आवाज के साथ खड़ी थी। इनका पहला बड़ा ब्रेक 1966 में आई फिल्म सूरज से आया। कुछ देर पहले मैंने आपको ये गीत भी सुनाया, तितली उड़ी उड़ के चली, रातों रात पूरे देश की जुबान पर चढ़ गया था। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इस गाने का

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो हैं शारदा रंजन। श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं।

शारदा के सॉन्ग और मोहम्मद रफी के गाने के बीच इतनी कड़ी टक्कर थी कि फिल्म फेयर को एक स्पेशल अवार्ड की घोषणा करनी पड़ी। शारदा जी को रफी साहब के साथ गाने के लिए विशेष पुरस्कार भी मिला। इसके बाद तो जैसे इनके पास प्रोजेक्ट्स की लाइन लग गई। चार साल बाद 1970 में आई फिल्म जहां प्यार मिले के गाने के बाद बात जरा है आपकी सॉन्ग के लिए इन्हें अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और दोस्तों कुल मिलाकर इनको अपने सिंगिंग करियर में चार फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिल चुके थे, जो इस बात का सबूत था कि शारदा जी की वॉइस वाकई लाजवाब थी। इन्होंने एन इवनिंग इन पेरिस, गुमनाम, सपनों के सौदागर, दुनिया और कल, आज और कल जैसी बड़ी फिल्मों में अपनी आवाज दी। इनकी आवाज का इस्तेमाल अक्सर उन एक्ट्रेस के लिए किया जाता था जो पर्दे पे थोड़ी चुलबुली या वेस्टर्न अंदाज वाली होती थी। चलिए इसी बात पर सुनते हैं इनकी फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस का ये रोमांटिक सा सॉन्ग।

आकाशवाणी दिल्ली के इन द प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार और आज की हमारी कलाकार हैं शारदा रंजन और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं मशहूर सिंगर शारदा जी की। शारदा जी ने उस समय के लगभग हर बड़े सिंगर्स के साथ गाने गाए, चाहे वो मोहम्मद रफी हो, आशा भोसले हो, किशोर कुमार हो या मुकेश। इन्होंने हर किसी के साथ अपनी आवाज का जादू बिखेरा। इन्होंने उस दौर की बड़ी एक्ट्रेस के लिए गाने गाए, वैजयंती माला, साधना, सायरा बानो, हेमा मालिनी, मुमताज, शर्मिला टैगोर और रेखा जैसे स्टारर्स के फेस पर इनकी वॉइस एकदम फिट बैठती थी। और तो और, शारदा जी ने सिर्फ फिल्मों तक ही खुद को सीमित नहीं रखा बल्कि इन्होंने इतिहास भी रचा। ये भारत की पहली महिला सिंगर बनी जिन्होंने अपना खुद का पॉप एल्बम रिकॉर्ड किया।

गया। 1971 में इनका एल्बम सिजलर रिलीज हुआ, जिसे उस समय की मशहूर कंपनी हिज मास्टर वॉइस ने रिलीज किया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शारदा जी ने म्यूजिक डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया था? तो इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, पर अभी वक्त हो गया है इनकी फिल्म नैना का ये गीत सुनने का।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की हमारी जो कलाकार हैं वो हैं शारदा रंजन जी, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, आपके मेल आ गए हैं हमारे पास, मैं उसे पढ़ लेती हूं। ये हैं ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप, गुनरूर, गुरलाल और अविराज जी, और संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत और कमल सैनी, पिंगावाला चौक जालंधर से हैं ये, और साथ में है ये लिखते हैं, शानदार प्रस्तुति के साथ उम्दा जानकारी मिली और बेहतरीन गीत सुनने को मिला, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नाहवाकर, निर्मला विशाल, मलकापुर से नारायण, राजकुमार आशीष, और ये है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार। और एक ही कलाकार में आज आप शारदा के बारे में जानकारी दे रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुंडी, प्रमोद कुमार डुंडी, और ये हैं हमारे साथ ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन, सहनवाज, फरीन सुहाना, अरजान और अब्बास अब्बासी, और ये है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी फ्रॉम शांतिनगर सोनीपत से, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेल से मोहम्मद इस्तफाक, मोहम्मद असफाक, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर आफरीन और खमीजा। ये है ऊपरकोट मोहल्ला मोहम्मद सईद अब्बासी जी का, और ये है देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया का, और ये है दंतरेगी से हीरामणि वर्मा जी का। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको बताते हैं कि जब प्लेबैक सिंगिंग से थोड़ा समय मिला तो शारदा जी ने अपने प्रतिभा का एक और पहलू दुनिया को दिखाया। ये बॉलीवुड की उन शुरुआती महिलाओं में से थी जिन्होंने म्यूजिक डायरेक्शन में हाथ आजमाया। इन्होंने सत्तर के दशक के मिडिल में कई फिल्मों का म्यूजिक तैयार किया। इसमें से था माँ बहन और बीवी, तू ही मेरी जिंदगी, मंदिर मस्जिद, मैला आंचल और क्षितिज जैसी फिल्में शामिल थी जिसमें इन्होंने म्यूजिक दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, इन्होंने बच्चों के लिए भी ढेरों कविताएं और गाने रिकॉर्ड किए, क्योंकि इनकी आवाज की मासूमियत बच्चों को बहुत पसंद आती थी। म्यूजिक के प्रति इनका ये समर्पण दिखाता है कि ये केवल एक सिंगर नहीं बल्कि एक मुकम्मल कलाकार भी थी जो समय के साथ खुद को ढालना जानती थी। तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं इनकी फिल्म अराउंड द वर्ल्ड का ये गाना।

दोस्तों 14 जून 2023 को शारदा जी हमें छोड़कर चली गईं। इनको कैंसर की बीमारी हुआ था जिसकी वजह से इनका निधन हो गया। पूरे संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन इनकी आवाज आज भी जिंदा है। अपने अंतिम सालों में ये संगीत से जुड़ी रही। 2007 का एल्बम अंदाजे बयां इनका आखिरी बड़ा प्रोजेक्ट्स में से एक था। दोस्तों शारदा जी की कहानी हमें याद दिलाती है कि म्यूजिक समय से परे है। इनकी आवाज सुनकर आज भी मन प्रसन्न हो जाता है और इसी वजह से ये हमेशा फैंस के दिल में अमर रहेंगी।

तो दोस्तों फिलहाल अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए। धन्यवाद। लेकिन श्रोताओं आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा गीत और गुनगुनाते रहिएगा संगीत।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: रजी अहमद से खबरें सुनिए। तमिलनाडु में श्री जोसेफ विजय की क्यादत वाली TVK हुकूमत ने रियासती असेंबली में आसानी से अक्सरियत साबित करते हुए एतमाद का वोट जीत लिया है। वहीं एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवीं मुद्दत के लिए पुदुचेरी के वज़ीर-ए-आला के तौर पर हलफ लिया। मगरबी एशिया के तनाजे की वजह से पैदा तवानाई के आलमी बहरान के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर मरकज और रियासतों ने ईंधन की बचत के इकदाम तेज कर दिए हैं। CBSE ने आज 12वीं जमात के नतीजों का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की जानिब से दरामदी महसूल को बढ़ाकर करीब 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% का इजाफा हो गया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि इस साल जुनूब मगरबी मानसून की जल्द आमद का इम्कान है। और IPL क्रिकेट में आज शाम रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। खबरें तफसील से। तमिलनाडु में वज़ीर-ए-आला जोसेफ विजय की क्यादत वाली नई हुकूमत ने आज रियासती असेंबली में 144 अराकानी असेंबली की अक्सरियत साबित कर दी है और एतमाद का वोट जीत लिया है। वहीं ई पलानी सामी की क्यादत वाली AIADMK के 22 अराकानी असेंबली ने इसके खिलाफ वोट दिया। बीजेपी और PMK से ताल्लुक रखने वाले 5 अराकीन असेंबली ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। असेंबली में अक्सरियत साबित करने की करारदाद वज़ीर-ए-आला ने पेश की थी।

0: वो अलबेला उसका जमाना।
1: क्या बात मेरे शायर।
0: थैंक यू दुनिया।

लता मंगेशकर की आवाज में लोफर फिल्म से ये नगमा भी आप सुन रहे थे। हमारे आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश किशोर कुमार को सुनिए, फिल्म है अनुरोध।

इस नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब सुनिए डॉक्टर महनाज अनवर का तहरीर करदा फीचर, उन्वान है आम की बहारें।

ये हिंदुस्तान है जहां कई तरह की जबानें बोली जाती हैं। बहुत सारे मजाहिब के मानने वाले इस मुल्क में रहते हैं और मौसमों की रंगारंग बहारों के साथ यहां के बाशिंदे अपने शब रोज गुजारते हैं। इसी हिंदुस्तान में अगर सब्जियों और तरकारियों की बात की जाए, फलों और फूलों की बात की जाए, दरख्तों और पौधों की बात की जाए, तो दुनिया के दूसरे तमाम हिस्सों के मुकाबले में शायद ही कोई ऐसी सब्जी, फल, फूल या पेड़ होगा जो इस मुल्क की सरजमीन पर न उगता हो, क्योंकि यह मुल्क सख्त तरीन सर्दी का भी देश है और बाज इलाकों में शदीद गर्मी भी यहां होती है। अगर बारिश का जायजा लिया जाए तो भी यह मुल्क किसी मुल्क से कम नहीं है और इसी मोतदिल आबहवा की जमीन से उगने वाला एक दरख्त ऐसा भी है जो आम, जी हाँ, सिर्फ दो हर्फों पर मबनी लफ्ज आम जैसा लजीज फल पैदा करता है।

0: आम एक ऐसा जायकेदार फल है जो अपनी अव्वलीन उम्र में तो तुरशी और खट्टे मजे के साथ जाना जाता है, लेकिन जैसे जैसे ये फल अपनी नौउम्री और जवानी की तरफ बढ़ता जाता है उसका सख्त बदन मुलायम और मजा मीठा होता जाता है और ये अपनी उम्र की हर मंजिल पर अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है। बहुत छोटे और कच्चे आम को कैरी कहा जाता है, जिसकी लोग खटाई बनाते हैं, अचार डालते हैं और तो और सख्त गर्मी और लू के मौसम में कच्चे आम को आग में पकाकर उसका शरबत बनाते हैं, जो गर्मी और लू से बचने में दवा का काम करता है। और हिंदुस्तानी दस्तरखान पर अगर आम का अचार न हो तो खाने का मजा फीका रहता है। और अमरस, भला इस अमरस को कौन पसंद नहीं करता, लेकिन सही मानों में आम की अहमियत और फलों में उसकी इंफरादी पहचान तभी खुलकर सामने आती है जब ये फल अपनी नौखेजी की उम्र पार करके ऐन जवानी बल्कि पुख्ता उम्र की हुदूद में दाखिल होता है, तो ये फलों का बादशाह बनकर लोगों की जबान के मजे का मरकज और उनके खाने के शौक का निशाना बन जाता है। आम जैसे फल की मिठास कभी कभी कुछ अदीबों और शायरों को इतनी भा जाती है गोया उनकी जबान से निकले हुए अल्फाज आम की खुशबू और उसकी मिठास में रचे बसे हों। इसी आम के बारे में जब ख्वाजा हसन सानी निजामी से पूछा गया तो वो कुछ इस तरह गोया हुए।
1: सच पूछिए तो जैसे कि लोग कहते हैं पुरानी

0: जबान में अगर मैं कहूं तो कहूं कि राजा आम, आम जो है राजा फल है और उर्दू में शाह फल या शाही फल कहा जाएगा इसको। और ये वो फल है कि गरीबों की गिजा भी है और फल भी है। तो रोटी खा लेते थे ऐसे, आज भी खाते हैं उससे रोटी गरीब लोग, और फल है। और शुआरा ने उसकी तारीफ में कसीदे कहे हैं और नसर निगारों ने मजामीन लिखे हैं।
1: कहा जाता है कि जिस तरह फूलों में गुलाब को अव्वलियत और फौकियत हासिल है, इसी तरह आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। इसके लगभग 100 से भी ज्यादा किस्में मुल्क के तकरीबन हर हिस्से में पाई जाती हैं। दिल्ली के फल बाजार की एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी के महीने से लेकर अक्टूबर तक यहाँ की मंडी में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पैदा होने वाले आम वाफिर मकदार में खरीदे और बेचे जाते हैं। लेकिन सच पूछे तो आम का सही मौसम गर्मी का आखिरी जमाना

0: ढाल ढाल गोरी करस सिंगार मलनिया गढ़ वाले आई घर सो सकल बन फूल रही सरसों। सारे फूलों का जिक्र आ गया और मौसमों का जिक्र आ गया उस वक्त से लेकर। अच्छा कोयल जो हिंदुस्तान की बुलबुल कहना चाहिए जिसको, ईरान का परिंदा बुलबुल जो गुलाब के फूल पे शादा था, और हमारे यहाँ कोयल जो आम के मौसम के साथ फूल से लेकर और फल तक आम के साथ रहता है और उसकी आवाज उसकी कूक उसकी मौसीकी ऐसी है, तो मैं समझता हूँ कि अगर मौसीकी के माहिरों के सामने रखा जाएगा तो बुलबुल से हमारी कोयल बाजी मार लेगी।
1: दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में हॉर्टिकल्चर ब्रांच के डायरेक्टर जनाब रोम सिंह ने आमों की अकसाम, उसको उगाने के जदीद तरीकों और आम की काश्त पर जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में पास अहम मालूमात फराहम की।
2: आम के विषय में या अन्य बागों के विषय में जो सबसे खास बात यह है, फल तोड़ने के बाद बागों की तरफ झांकते भी नहीं है। अक्टूबर के महीने में जब फल लगने के लिए बर्फ बनती है तो जो बीमारी जून जुलाई अगस्त में लग गई उसका फर्क पड़ता है। दूसरी मुख्य बात यह है कि जो भाई मसलन 1 लाख रुपए का आपने ठेके में बाग बेचा है तो कम से कम 25% 25,000 रुपए से लेकर के 30,000 रुपए निश्चित रूप से आप बाग में लगाएं। ये हमारे किसान भाई नहीं करते हैं। और बात यह है कि कुछ किसान भाई जरूर से ज्यादा सिंचाई करते हैं, कुछ किसान भाई तो अपने बागों को ट्रैक्टर से जोत देते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आम की जड़ें जो पौधों को खाना देती हैं वो 9 इंच तक होती हैं, और जब 9 इंच या 10 इंच के गहरे फावड़े उसे जोतेंगे तो जो खाने वाली जड़ें वो तो नष्ट हो जाएंगी, मोटी मोटी जड़ें रह जाएगी जिसके ऊपर पेड़ खड़ा रहता है। तो कभी भी आम के बाग में या किसी और फसल में भी हल्की गुड़ाई करें, 3-3.5 इंच से ज्यादा बिल्कुल नहीं, तो जो आपकी वो जड़ें हैं वो सुरक्षित रहेंगी और आपके जो वृक्ष हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे और आपको अच्छे फल मिलेंगे। तीसरी बात यह है कि आम एक ऐसी फसल है कि जिन भाइयों ने अकेली किस्म लगा रखी है, क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि दूसरी किस्म भी होना जरूरी है, तो आप जो आम लगाएं उसमें कम से कम 3 तरह की किस्में लगाएं। एक तो जल्दी पकने वाली, एक बीच में पकने वाली, और कुछ किस्में ऐसी हैं जो बाद में पकती हैं। तो कम से कम आपको 1-1.5 महीने तक लगातार फल मिलते रहेंगे और उन फलों को मिलने से आपकी आमदनी अच्छी होगी। और ये जो अलग अलग मौसम किस्में हैं, यदि एक किस्म खराब होगी किसी वजह से तो बीच वाली बच जाएगी, पहली दो खराब होगी तो पिछली वाली बच जाएगी। तो ऐसा नहीं कि आपका जो है ना जो समूल जो विनाश है पूरी की पूरी फसल कभी नहीं मारी जाएगी।
1: हकीकत तो ये है कि शुमाली हिंदुस्तान में जून और जुलाई के महीने में जिस वाफिर मकदार में आम पैदा होता है उसकी मिसाल दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से में नहीं मिलती है। सख्त तरीन गर्मी के बाद लू के थपेड़ों को झेलकर बारिश की बौछारों में भीगने के बाद जो आम निखर कर तैयार होता है वो अपने मजे शक्ल और जायके में लाजवाब होता है और यही आम फलों का बादशाह कहलाता है। डाल पर लटकते हुए आम, डाली से टपकते हुए आम, आम के बागों में जन्नत का सा समा बांध देते हैं। एक जश्न का सा मंजर तारी हो जाता है। आमों के बागों में लटकते हुए झूले, टोकरियों और डलियों में रखे हुए कलमी आम और आमों के पस मंजर में शुमाली हिंद की जबान में गाए जाने वाले गीत आम को अदबी तहजीबी सकाफती मियार अता करते हैं।

0: की पहचान चूंकि बच्चे बच्चे को है, हमारे हर सांस में, नफस में, रंग रूप में, खून में, हमारे आबो हवा में, मट्टी में, तखमीर में, जमीर में इतना समाया हुआ है सदियों से कि वो हिंदुस्तान की अलामत बन गया।
1: आम एक ऐसा फल है जिसका ताल्लुक हिंदुस्तानी तहजीब, तारीख और मजहबी रस्म रिवाज से तहजीब के अव्वलीन दौर से वाबस्ता है। पहली और दूसरी सदी ईस्वी के मुजस्मों और मूर्तियों में आमों की डालियों और आम को अंबिका देवी के साथ देखा जा सकता है। अंबिका एक देवी है जो हिंदू और जैन मजाहिब में पूजी जाती है। आमों की काश्त कब और कहां से शुरू हुई इसका कतई हवाला कहीं नहीं मिलता। अलबत्ता इतना जरूर है कि तारीख के हवालों में तीसरी सदी कबल मसीह में जब अहले मौर्या में यूनान का बादशाह सिकंदर हिंदुस्तान आया था तो उसने आम का जिक्र किया था। आम को दुनिया के तमाम फलों के मुकाबले में इस वजह से भी अव्वलियत हासिल है कि कंधार के तरबूज, अरब के खजूर और अंगूर के मुकाबले में हिंदुस्तान में आमों को सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। आम की किस्मों का जिक्र करते हुए पूसा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रोम सिंह ने इंस्टीट्यूट की ताजा तरीन खिदमात का एक बार फिर जिक्र किया।
2: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में मैं अध्यक्ष हूँ और वैसे मूल रूप से मैं आम पर ही काम करता हूँ और ये जो संस्थान है अपने आम के काम के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। पूसा संस्थान में जो पहली संकर किस्म निकली थी मलिका 1971 में और दूसरी किस्म निकली थी आम्रपाली 79 के लिए, 89 के लिए निकली थी, तो ये दो किस्में बड़ी अच्छी किस्में हैं और आम्रपाली में तो हर साल फल आते हैं। इसका पौधा इतना छोटा है कि अब आम के पौधे से पौधे की दूरी अब 2.5 मीटर भी रखें, 2.5 से लेकर 3 मीटर तक भी रखें तो आप 1 हेक्टेयर से 20 से लेकर 22 टन आम ले सकते हैं, जबकि दशहरी में आपको 7-8 टन से ज्यादा नहीं मिलता। अभी दो किस्में हमने और जो विकसित की है 2002 में, पूसा अर्णिमा है और दूसरी किस्म का नाम पूसा सूर्या है। इन दोनों किस्में ये हर साल फल देती हैं और बाहर से जो छिलका है वो लाल रंग का है और बड़ी अच्छी किस्म है। और जो पूसा अर्णिमा है पकने के बाद में 8 से 10 दिन तक खराब नहीं होती और यदि आपने पेड़ से तोड़ करके रख दी पकाने के लिए तो 20 से लेकर 25 दिन तक खराब नहीं होती। भाइयों ने देखा होगा कि जो दशहरी है पकने के बाद जो 3 दिन ही वो अंदर से उसका गूदा खराब होने लगता है, तो ये इसकी जो कीपिंग क्वालिटी है या जो रखने का समय है बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि आप इसको विदेशों में भेज सकते हैं, बड़ी अच्छी किस्म है। इसी तरह से सूर्या है, सूर्या का जो वजन है एक फल का वजन औसत वजन करीब 270 ग्राम, जो 270 ग्राम से लेकर के 280 ग्राम तक होता है, बहुत बड़ा फल होता है वो भी जो ना काफी दिन तक रुकती है और हर साल फल देती है, क्योंकि अब वो पुराने दिन चले गए कि भाई आम में तो अब 2 साल में एक बार ही फल आएगा, तो किसान को आमदनी हर साल चाहिए और हर साल के लिए हमारे जो पूसा की 3 किस्में हैं मैंने अभी बताई, एक तो आम्रपाली जो हर साल फल देती है और एक पूसा अर्णिमा, ये एक संकर किस्म है, एक पूसा सूर्या, ये 3 किस्में हैं जो आपको हर साल फल देंगी।
1: आम का जिक्र उर्दू अदब और हिंदी शायरी में भी खूब मिलता है। कालिदास की शायरी में आम का जिक्र बार बार आया है। हजरत अमीर खुसरो ने आम की लज्जत और उसके मीठे मजे को कई जगह पर बयान किया है। मीर तकी मीर भी आम की तारीफ के बगैर नहीं रह सके हैं। मुगलिया दौर के आखिरी जमाने में बादशाहों और अमीरों के लिए गर्मी के मौसम में आम तोहफे तहाइफ के तौर पर एक दूसरे को भेजे जाते थे और सिर्फ आम की दावतों का एहतमाम किया जाता था। ये आम महज एक फल ही नहीं बल्कि दोस्ती और मोहब्बत का एक पैगाम देता है और आज भी इस रवायत और अहमियत की मिसालें जगह जगह पर देखने को मिलती हैं।
3: ख्वाजा हसन निजामी, उन्होंने आम के नाम खत लिखा है और खत को देखे किन प्यारे लफ्जों में शुरू किया है। आम को चूंकि चूस के खाया जाता है घुलाकर, तो अब वो लिखते हैं खत में कि सर्दियां गईं और गर्मी ने अपने आने की खबर सुनाई और उसके साथ साथ ये इत्तला भी मिली कि आमों में फूल आया, मोर आया। तो मैं

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर महनाज अनवर का तरतीब दिया हुआ फीचर, उन्वान था आम की बहारें। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्रिडिज पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। आइए अब सुनते हैं मिले जुले फिल्मी नगमे।

आपने सुना जुबीन नौटियाल और नीति मोहन को। ये नगमा हमने आपको सुनवाया सत्यमेव जयते 2 फिल्म से। फिल्मी नगमों के प्रोग्राम की अगली पेशकश आपकी नजर कर रहे हैं गदर 2 फिल्म का नगमा।

0: दो नगमे अभी आपने सुने। पहले आपने सुना श्रेया घोषाल के साथ तौजीह रैना को शोर इन द सिटी फिल्म में। उसके बाद आप सुन रहे थे सोनू निगम और साधना सरगम की आवाज़ें। फिल्म का नाम था हम तुम। फिल्मी नगमों के प्रोग्राम की अगली पेशकश हमराज फिल्म से है। आवाज़ें हैं उदित नारायण और साधना सरगम की।
1: तुमसा कोई दूसरा इस समी पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये नगमा. फिल्म थी कभी खुशी कभी गम. फिल्मी नगमों के प्रोग्राम की अगली पेशकश आप सबकी नज़र कर रहे हैं, लीजिए सुनिए. अभिजीत और साथियों को फिल्म का नाम है बादशाह.

अभिजीत और साथियों की आवाज़ों में ये नगमा भी आपने बादशाह फिल्म से सुना। इसके साथ ही फिल्मी नगमों का आज का ये प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। अब से चंद ही लम्हों के बाद खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है, अब आप फैसल हबीब से खबरें सुनिए। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय ने क्यादत वाली टीवी की हुकूमत ने रियासती असम्बली में आसानी से अक्सरियत साबित करते हुए एतमाद का वोट जीत लिया है। वहीं एन रंगासामी ने रिकार्ड पांचवीं मुद्दत के लिए पुडुचेरी के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। मगरबी एशिया के तनाज़े की वजह से पैदा हुए तवानाई के आलमी बहरान के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर मरकज़ और रियासतों ने ईंधन की बचत के इकदाम तेज़ कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने 3 रोज़ा चीन दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। यूवेरी मुसवेनी ने रिकार्ड 7वीं मुद्दत के लिए युगांडा के सदर के ओहदे का हलफ लिया। हुकूमत की जानिब से इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर करीब 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% का इजाफा हो गया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु में वजीर आला जोसेफ विजय की क्यादत वाली नई हुकूमत ने आज रियासती असम्बली में 144 अराकीन असम्बली की अक्सरियत साबित कर दी है और एतमाद का वोट जीत लिया है। वहीं एडप्पडी पलानी सामी की क्यादत वाले 22 AIADM के अराकीन असम्बली ने उसके खिलाफ वोट दिया। बीजेपी और PMK से ताल्लुक रखने वाले 5 अराकीन असम्बली ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। असेंबली में अक्सरियत साबित करने की करारदाद वजीर आला ने पेश की थी। SP वेलुमनी की क्यादत वाले AIADMK ने हुकूमत की हिमायत की है। आज मुद्दाकार सियासी रहनुमा और ऑल इंडिया NR कांग्रेस के बानी एन रंगासामी स्वामी को आज पांचवी मियाद के लिए पुडुचेरी के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया, जो एक रिकॉर्ड है। उनके साथ बीजेपी के ए नमी स्वामी और ऑल इंडिया NR कांग्रेस के मल्लाडी कृष्णा राव को भी NDA सरकार में वजीर के तौर पर हलफ दिलाया गया। लोक निवास में मुनक़दा एक तकरीब में पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथन ने वजीर आला और 2 वजीरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन, बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष, पुडुचेरी के इंचार्ज निर्मल कुमार सुराना, बीजेपी के रियासती सदर VP रामा लिंगम, DMK के कन्वीनर R शिवा, कानून साज असम्बली के साबिक स्पीकर R सिल्वम और 9 मुंतखब अराकीन असम्बली और पार्टी के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। हलफबरदारी की तकरीब के बाद जनाब रंगास्वामी वजीर आला के दफ्तर गए और जिम्मेदारी संभाली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अंदरून मुल्क हालिया दौरों के दौरान अपने काफिले में मोटर गाड़ियों की तादाद में खातिर ख्वाह कमी की है। अलबत्ता स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के प्रोटोकॉल के तहत सभी ज़रूरी सिक्योरिटी इंतजाम बरकरार रखे गए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के काफिले में मोटर गाड़ियों की तादाद में कमी गुजरात और आसाम के उनके हालिया दौरे के दौरान की गई। यह कदम मगरबी एशिया के बहरान के पेश नज़र ईंधन की दरामदाद पर इन्हिसार कम करके इक्तसादी इस्तेहकाम में ताउन के लिए शहरियों से उनकी अपील से मुताबिकत रखता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो कल बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ सरबराह सतह की मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि वो चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ

दो तरफा रवाबित के अहम पहलुओं पर बातचीत भी करेंगे। इम्कान है कि तिजारत को इस बात बातचीत की अहमियत हासिल रहेगी। ये शी जिनपिंग के साथ डोनाल्ड ट्रंप की सातवीं बिलमुशाफा मीटिंग होगी और ये 2017 के बाद से किसी अमरीकी सदर का चीन का पहला दौरा होगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील पर अपने काफिले की तादाद घटाते हुए उसे आधे भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के वज़राए आला ने भी वजीरों, अराकीन असम्बली और आवामी नुमाइंदों की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली सरकारी गाड़ियों की तादाद कम करने का ऐलान किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। युगांडा के सदर युवेरी मुसविनी ने रिकॉर्ड सातवीं मुद्दत के लिए युगांडा के सदर के ओहदे का हलफ लिया। जनवरी के महीने में हुए इंतखाबात में अपनी जबरदस्त जीत के बाद युवेरी मुसविनी की 40 साल मुद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। अफ्रीका में अपने ओहदे पर सबसे तवील अरसे तक फाइज रहने वाले रहनुमाओं में से एक युवेरी मुसविनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड में अपने ओहदे का हलफ लिया। इस दौरान हजारों शुरका मौजूद थे। मुसविनी ने 71% वोट हासिल किए हैं। अपोजिशन लीडर और फनकार बोबी वाइन, जिनका असल नाम रॉबर्ट कायागुलानी है, ने 25% वोट हासिल किए। जनवरी में हुए इंतखाबात के दौरान मुल्क भर में इंटरनेट बंद रहा और अपोजिशन को डराने, धमकाने और अगवा करने की रिपोर्ट्स आती रही हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% की तेजी देखी गई। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के मुस्तकबिल के मार्केट में जून कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने की कीमत 6% के इजाफे के साथ 1,62,597 रुपये फी तोला रही। वहीं जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में चांदी की कीमत में 6.4% के इजाफे के बाद 2,96,821 रुपये फी किलोग्राम रही। ताहम आज के कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक का इजाफा हुआ। हुकूमत ने सोने और चांदी पर सेसेज समेत इम्पोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% तक इजाफा कर दिया है। प्लैटिनम पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी 6.4% से बढ़ाकर 15.4% कर दी गई है। सानवी तालीम की मरकजी बोर्ड CBSE ने आज 12वीं बोर्ड के इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। तलबा अपने नतीजे ऑफिशियल वेबसाइट DigiLocker और उमंग ऐप पर अपना रोल नंबर लिख कर देख सकते हैं। इस साल CBSE की 12वीं क्लास के इम्तिहान 17 फरवरी और 10 अप्रैल 2026 के दरमियान कराए गए थे। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली की खारजी उमूर के वजीर फ्रांसिस्को फ्रेज मैगनेना से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि फरीकैन ने तरजीही अशिया की बरामदात को फरोग देने और खिदमात पर मबनी मईशत को आसान बनाने की खातिर बाजारों और सोर्सिंग को उसाद देने के मकसद से दो तरफा ताउन को मुस्तहकम करने पर तबादले ख्याल किया। दोनों फरीक कसीर जहती फॉर्मों पर एक दूसरे के साथ तालमेल से काम करने पर रजामंद हो गए हैं। IPL क्रिकेट में आज शाम रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले कल रात अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। जीत के लिए 169 रन के निशाने के लिए खेलते हुए सनराइजर्स हैदराबाद 14 ओवर और 5 गेंदों में महज 86 रन ही बना सकी। पंजाब सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक रिजर्वेशन पॉलिसी वजा करने का फैसला किया है ताकि दिफाई अफवाज में उनके मियाद मुकम्मल करने के बाद उन्हें सरकारी नौकरी दी जा सके। इस सिलसिले में मुकर्रर वक्त के अंदर तरीक़ेकार और फ्रेमवर्क को कतई शक्ल देने की गर्ज से सीनियर सिविल और पुलिस अफसरों पर मुश्तमिल एक आला इख्तियारियाती कमेटी तश्कील दी गई है। वजीर आला भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को रिजर्वेशन के फायदे फराहम करने के लिए उसूली तौर पर मंजूरी दे दी है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली TVK हुकूमत ने
ریاستی اسمبلی میں آسانی سے اکثریت ثابت کرتے ہوئے اعتماد کا ووٹ جیت لیا ہے. وہیں این رنگا

0: कुमारस्वामी ने रिकार्ड पांचवीं मुद्दत के लिए पुडुचेरी के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। मगरबी एशिया के तनाजे की वजह से पैदा हुई तवानाई के आलमी बहरान के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की अपील पर मरकज और रियासतों ने ईंधन की बचत के लिए इकदाम तेज कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने तीन रोजा चीन दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। यूवेरी मुसविनी ने रिकार्ड सातवीं मुद्दत के लिए युगांडा के सदर के ओहदे का हलफ लिया। हुकूमत की जानिब से इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर करीब 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% का इजाफा हो गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से अभी तक आप उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक शाम के 5 बजने को है। दूसरी मजलिस का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। रात 9:15 पर हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज से आकाशवाणी दा ए अमृतसर केंद्र ए। नमस्कार, आकाशवाणी वर्ड सर्विस हिंदी ए पंजाबी सेवाई। शाम दे 5 बजे ने हुन साड़ी दूजी सभा दे प्रोग्राम शुरू हुंदे ने। सामीन, सब तो पहला तुसी समात फरमाओगे सराई की प्रोग्राम झोक माही दी।

ए ऑल इंडिया रेडियो दे विदेश प्रसारण सेवा दा सिराई की प्रोग्राम है। मैं संजय पाहुजा आप सबको सलाम नमस्ते इस्तकबाल करेंगा। अज असा हाजिर हैं आप सब दे नाल सिराई की सूफी संगीत दे नाल। असाडे नाल हैं अज रुपेश चोपड़ा जी, ओ असा को कुछ सूफी संगीत अपनी मिठड़ी आवाज विच सुने सन। सब तो पहले वो पेश करेंदे पेन सुल्तान शाह हुसैन साहब जी दा एक गावण, माहे नी मैं केनू आखा दर्द विछोड़े दा हाल नहीं।

सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। हो लाले मेरी पत रखियो बला झूले लाल।

न चाही है यार डाडी, इश्क आतिश लाई है यार डाडी, इश्क आतिश लाई है। ओ सानू लग गई बे अख्तियारी, सानू लग गई बे अख्तियारी, सीने दे

यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है। ओ सानू लग गई बे अख्तियारी, सानू लग गई बे अख्तियारी, सीने दे विच ना समाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है। इश्क अवेड़ा बहन न देंदा।

0: वाह जी वाह वाह वाह वाह रूपेश चोपड़ा जी बहु वधिया यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई है बहु वधिया सूफी संगीत तुसा सा को सुनवाए असा को हुण इजाजत देओ हुण प्रोग्राम खत्म थी हुण दा वेला थी गए मैं ते रूपेश चोपड़ा जी आप सब सुनन वाले कनु इजाजत मंगदे हैं सलाम नमस्ते सत श्री अकाल वल मिलसू एजे ही कोई बे प्रोग्राम दे नाल।
1: दोस्तों तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम सराइकी प्रोग्राम जोक माही दी ते हुण वेला हो गया प्रोग्राम देश पंजाब दा आओ मिलके सुनदे हां।

दोस्तो आज दे देश पंजाब प्रोग्राम दे विच तुसी सुनोगे आज दी गल नॉवलिस्ट आर के नारायणन बारे। जी आए नू प्रोग्राम दे विच डॉक्टर सुरजीत पात्र होरां दे नाल कीती गलबात सुनाई जाएगी। इस दे नाल तुसी सुनोगे पंजाबी फिल्म म्यूजिक ते अपनी पसंद दा गाना प्रोग्राम तमन्ना दे विच। लो जी पेश है प्रोग्राम आज दी गल। नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ थोड़ी दोस्त मोनिका मेहता और आज दी गल दे विच आज असी शब्दां दी गल करांगे, आज असी पुराने वेलियां दी गल करांगे। ओ लोग जिहड़े दूरदर्शन नू ते आकाशवाणी नू शुरू तो देखदे आ रहे ने, सुणदे आ रहे ने ते पसंद करदे आ रहे ने, उहनां नू माल गुडी डेज जरूर याद होएगा। एक छोटे जे बच्चे दी कहानी, एक कल्पना वाला शहर पिंड कस्बा मालगुड़ी डेज। दोस्तों ये हर बच्चे नू पसंद आंदा सी और हर कोई तांग रखदा सी कि हुण केड़ी कहानी आएगी। आज असी ओसे कहानी दे रचयिता आर के नारायणन होरां नू याद कर रहे हां। 13 मई 2001 नू इस फानी दुनिया तो अलविदा लै चुके आर के नारायणन अज भी अपने शब्दां दे विच, अपनी कहानियां दे विच, अपनी लिखतां दे विच जिउंदे ने। दोस्तों अगर असी गल करिए आर के नारायणन होरां दी, जिन्हां ने लेखनी नू ही अपना सब कुछ समझिया, किस्मत ने बड़े उतार चढ़ाव विखाए पर फिर भी इन्हां दे हथ ने कलम नहीं छड्डी। आर के नारायणन एक प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी लेखक सन। उन्हां दा पूरा नां सी रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। उन्हां ने अपनी लिखतां च एक काल्पनिक दखनी भारत दे पिंड दा जिक्र कीता है, मालगुडी। मालगुडी जिथे कि हर कोई कल्पना दे विच ही रहिंदा है, सोने सोने घर, पुराने पुराने घर ते तरह तरह दे लोक, कोई अफसर है, कोई छोटा बच्चा है।

0: मेरे अंदर भी चलती है एक गुफ्तगू, जिथे लफ़्ज़ां च टलदा है मेरा लहू।
1: चाहते हैं कि और शायरी का दरिया इस तरह वगदा रहे। तुसी आकाशवाणी दे स्टूडियो च आए, तुहाडी बहुत बहुत मेहरबानी।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, ताडा भी आकाशवाणी का भी, सुनने वालों का भी।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: पूर्ण भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंत्रिमंडल की मंजूरी से देश के करोड़ों किसानों को अपने उत्पाद के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलोग्राम का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। फिलहाल बारिश के कारण टॉस में देरी हो रही है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले हमारे सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम। मेरे साथ है प्रीति
1: और मेरे साथ हैं लोकेंद्र वर्मा
0: और कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और इस कार्यक्रम में जानकारी भी होगी और मनोरंजन भी होगा। प्रीति बहन
1: जी,
0: देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें से ये एक योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
1: जी।
0: और इसका मेन उद्देश्य है कि भाई पानी को किस तरह से सुनिश्चित करना है और किस तरह से उसका उपयोग करना है उसके बारे में है ये योजना है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हर खेत तक पानी पहुंचाना, हर खेत को पानी
1: जी। बिल्कुल, जैसे कि बोलते हैं कि हर बूंद का इस्तेमाल आपकी खेती बाड़ी के लिए हो, और ऐसी कई सारी तकनीकें हैं जिससे कि हर खेत को पानी मुहैया हो सके। पानी की बचत करते हुए अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। और अगर हम बात करें सूक्ष्म सिंचाई तकनीक जैसे कि ड्रिप है और स्प्रिंकलर है, उसको भी बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। वर्षा जल का संरक्षण करना और जल संचयन को प्रोत्साहित करना भी इसी योजना का हिस्सा है। और कहते हैं ना कि जब आप पानी की बचत करते हैं तो हर खेत को पानी मुहैया हो पाता है, जिससे कि उत्पादन जो है उसमें बढ़ोतरी होती है। और जाहिर सी बात है कि अगर उत्पादन बढ़ेगा तो जो किसान है उसकी जो आय है उसको दुगुना करने का एक प्रयास भी सार्थक होगा।
0: बिल्कुल पृथ्वी ना, जैसे कि इसके लाभ भी हम अपने किसान भाइयों को बता देते हैं। इसका पानी की सबसे पहले पानी की बचत, फसल उत्पादन में वृद्धि, सिंचाई लागत में कमी, सूखे की स्थिति में राहत और आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करना। तो ये तो रही योजना। और अपने भाइयों को कराते हैं मनोरंजन, सुनवाते हैं भजन। कलाकार हैं हरेंद्र नागर से।

0: तो अभी आपने सुना हरेंद्र नागर से ये भजन, और आइए अब आपको सुनवाते हैं कृषि समाचार दर्शन के तहत ग्रीष्मकालीन फलों की खेती पर जो हमारे अनुभवी किसान हैं उन्होंने क्या कहा, और ये बातचीत है संध्या गुप्ता की। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
1: नमस्कार, कृषि समाचार दर्शन में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। कृषि समाचार दर्शन के आज के अंक में उन किसान भाइयों के अनुभव जानने की कोशिश करते हैं जो ग्रीष्मकालीन फलों की खेती कर रहे हैं।
2: नमस्कार जी, मेरा नाम ब्रजेश है और डिस्ट्रिक्ट हाथरस के एक छोटे से गांव शहजादपुर से हूं मैं। हमारा 4 एकड़ का प्लॉट है और इस 4 एकड़ के प्लॉट के ऊपर करीब 70 बेल के पेड़ लगाए हैं। बेल के पेड़ लगाने के 2 मुख्य कारण थे, एक तो आध्यात्मिक कारण है, दूसरा जो है कि खेतों की मेड़ बंदी इससे बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि इसका लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा है। इस वजह से इसको खेत की मेड़ के ऊपर चारों तरफ हमने लगाया कि इसका फल गर्मियों में ही आता है। वात और पित्त की जो जितनी भी बीमारी है उसमें सब में ये बहुत अच्छा काम करता है। लू लग जाती है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। इसकी अगर हम कमर्शियल की बात करते हैं और प्लांटेशन की बात करते हैं तो इसका डिस्टेंस एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में 12 से 15 मीटर का डिस्टेंस हम लेके चलते हैं। मेट के ऊपर होने की वजह से किसानों के लिए अतिरिक्त आय का भी स्रोत होता है। अब जैसे हमारे यहाँ पे 70 पौधे यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, साल में इसको जब बेचते हैं तो फल खरीदने वाले ठेकेदार हैं वो आते हैं खरीदने के लिए, तो प्रति पेड़ के हिसाब से हमें वो 1,500 रुपए देते हैं, तो हमारे 4 एकड़ की बाउंड्री से हमें 1,00,000 रुपए सालाना वो फ्री का हमको मिल जाता है। बाद बाकी जो उसमें क्रॉप लगाते हैं वो अलग बात होती है, क्योंकि हमारी गौशाला है तो यहाँ पे गायों को फल बच जाते हैं, उन फलों को हम गाय को प्रतिदिन 1 लीटर की करीब शरबत के रूप में जैसे है ना फल इकट्ठे करते हैं, तो एक जगह पे उनको छिलके के समेत उसको कूट पीस लेते हैं और उसके बाद में 1-1 लीटर जो है गाय को हम पिलाते हैं, तो इनसे गायों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। हार्डी क्रॉप माना जाता है इसको, और क्योंकि इसका लाइफ स्पेन बहुत लंबा होता है, इसकी लकड़ी बहुत सख्त होती है, तो नॉर्मली इसमें किसी तरीके की बीमारी आती नहीं है। फलों में कभी थोड़ा बहुत महसूस होता है तो उसके लिए कुछ फल झड़ने वाली बात होती है, तो उसमें बोरन वगैरह का स्प्रे कर देते हैं तो वो फल झड़ते नहीं है उससे। जहां तक पौधा फलत

0: जाने की बात होती है तो पहले जो पुरानी प्रजातियां थी उनमें 7 से 8 साल लग जाते थे फलत पे आने के लिए, लेकिन अब कुछ नई वैरायटी आई हैं जिनमें 4 से 5 साल के अंदर फलत शुरू हो जाती है। हालांकि जो पहली फलत शुरू होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, पूरी फलत पे आने के लिए 7-8 साल तो कम से कम पौधे को लग जाते हैं, और फिर जितना वृक्ष बड़ा होता चला जाता है उतना ही इसका प्रोडक्शन बढ़ता है। और मेरे यहाँ पे लगे हुए लगभग 21 साल हो गए, तो 21 साल में भी मैं ये देख रहा हूँ निरंतर इसका प्रोडक्शन बढ़ता ही चला जा रहा है। ये जो है थोड़ा सा पका हुआ और थोड़ा सा कच्चा फल तोड़ के ले जाते हैं जिससे कि ये खराब ना हो, और फिर उसके बाद इसको अखबार में लपेट के रख देते हैं तो इससे जो इसका क्लोरोफिल है वो न्यूट्रलाइज होके पीला फल पड़ जाता है और 2 से 4 दिन 5 दिन के अंदर फल पक जाता है, हरी फल होता है, कटीला वृक्ष होता है, पेड़ पे चढ़ के इसको तोड़ा जाता है। और जब पेड़ पे चढ़ते हैं तो फिर जैसे त्रिपाल या पल्ली जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं वो बना लेते हैं, तो 2 लोग उस पल्ली को पकड़ते हैं और ऊपर से उस फल को सीधे उस पल्ली के ऊपर या त्रिपाल के ऊपर डालते हैं जिससे फल को चोट ना लगे। तो ये एक एक पीस बड़ी सावधानी से तोड़ा जाता है और बहुत सावधानी से रखा भी जाता है। लगभग देश के हर एक स्टेट में ये फल आसानी से हो जाता है क्योंकि ना तो इसे सर्दी का कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही इस पे कोई एक्सेस गर्मी का प्रभाव पड़ता है। इसकी जड़ें बहुत दूर तक विस्तृत हो जाती हैं जिसकी वजह से इसको अतिरिक्त कोई भोजन पानी देने की आवश्यकता होती नहीं है। आपकी जो फसलें होती हैं उन्हीं से इसका पोषण भी होता रहता है। जैसे मुरब्बा या कैंडी वगैरह जो बनती है तो वो कच्चे फल की बनती है, तो वो फल जो है नवंबर दिसंबर लास्ट तक वो तोड़ लेते हैं उसको बिल्कुल कच्चा, और जिन लोगों को पका के तोड़ना होता है तो वो 1 अप्रैल के आसपास पे आके इसकी तुड़ाई शुरू करते हैं। इस वृक्ष की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसको ना कोई पशु डैमेज नहीं करता है। जो आजादपुर मंडी है वो बहुत बड़ी मंडी है, वहां पे बहुत अच्छी खपत होती है। इस समय पे बेल जो है प्रचुर मात्रा में मिलते भी हैं और पकते भी हैं यहाँ पे। इसका रेट रिटेल में अगर हम बात करते हैं तो 30 रुपए 40 रुपए से लेके 60-70 रुपए तक का इसका भाव रहता है, और किसान जो इसको बेचता है वो लगभग उसको 15 रुपए के आसपास 18 रुपए के आसपास का उसको भाव मिलता है।
1: मेरा नाम गगन सैनी, कस्बा कांधला, डिस्ट्रिक्ट शामली, उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। बागवानी करता हूँ और मेरी अपनी नर्सरी भी है। मैं ग्रीष्मकालीन सभी फलों की खेती करता हूँ जिसमें लोकाट, आड़ू, पीच और ये शहतूत हो गया, नाशपाती हो गई, ये मेरे मुख्य है। लोकाट हमारे पास काफी है और इसको तो बिल्कुल साधारण मौसम की जरूरत है। इसकी फ्लावरिंग तो सर्दी में आती है, स्टार्टिंग होती है, फल फ्रूट की शुरुआत होती है मार्च लास्ट में और ये मई के फर्स्ट वीक तक चलता है। इसकी सिंचाई जो है हमें फरवरी मार्च अप्रैल में ही जरूरत ज्यादा पड़ती है, बाकी ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती इसको, और ज्यादा निराई गुड़ाई की भी जरूरत नहीं होती, कोई रोग बीमारी भी नहीं आती। एक तरह से ये ऑर्गेनिक होता है। नई नई वेरायटी पे मैं काम करता हूँ, 50-60 साल तक ये चल जाता है, फैलाव भी काफी होता है इसका। 32 फिट पे रखते हैं, 32x32 पे। लोकाट में 3 बार फ्लावरिंग आती है, किसी भी फ्रूट के पेड़ में 3 बार फ्लावरिंग नहीं आती। पेड़ पे चढ़ के ही तोड़ना पड़ता है, छोटी छोटी टोकरियां होती है हमारी, उनमें अखबार लगा के ही तोड़ते हैं। बड़ा नाजुक फल है वैसे तो, ये हमारा 7 kg का बॉक्स होता है, उसमें पैकिंग करके हम इसको सुपर मंडी, आजादपुर मंडी दिल्ली भेजते हैं। आड़ू को हम मल्टी क्रॉप में लेते हैं, जैसे हम नाशपाती का बाग भी करते हैं, आड़ू का बाग भी करते हैं, तो इसके बीच में आड़ू की 10 या 12 साल की आयु होती है। जैसे ही लोकाट या नाशपाती लगाते हैं 32 फिट पे, तो उनके बीच में पेड़ डालते हैं इसके। आड़ू एक ऐसा फ्रूट है ये प्लांटेशन के दूसरे साल ही फ्रूट देना शुरू कर देता है, और ये 3-4 साल बाद 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल तक पहुंच जाता है इसका फ्रूट भी, और मार्केट में भी रेट काफी अच्छे मिलते हैं। लोकाट की मेरे पास विशेष किस्म है, इसकी मार्केट दिल्ली में ही ज्यादा है। ये खट्टा मीठा भी फ्रूट होता है, एक हमारे पास मीठा मीठा, दो वेरायटी हमारे पास है। जो खट्टा मीठे वाली वेरायटी है उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है, पेड़ से टूटने के 10 दिन बाद भी खराब नहीं होगी। आड़ू मैंने एक ऐसी वेरायटी तैयार की है जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में पक जाएगी, हर 10 दिन बाद आड़ू पकता रहेगा, इतनी तरह की वेरायटियां हैं, और 10 जून में जाके लास्ट होगा। हाँ, शहतूत भी एक सोचने का विषय है। शहतूत के मेरे पास 5-6 प्लांट है, पिछले 4-5 साल से तो हम ऐसे ही तोड़ के दिल्ली मंडी ले गए थे, तो इसकी इतनी डिमांड बढ़ी कि हम मजबूर हो गए, हमें बहुत प्लांटेशन करनी पड़ रही है, हर साल बढ़ा रहे हैं हम इसके प्लांट। 1000 रुपये kg तक हमें इसका रेट मिल जाता है, हर जगह हो जाएगा सेहतूत। सभी को सेहतूत की तरफ भी विशेष ध्यान देना चाहिए, ये एक पैसे कमाने का बहुत बढ़िया साधन है। ये सर्दी में ही लगाया जाता है, दिसंबर के मंथ में इसकी प्लांटेशन की जाती है, और लगाने के दूसरे साल ये फ्लोटिंग शुरू कर देता है। मेड़ पर भी इसको लगा सकते हैं, बीच में भी खेती कर सकते हैं। कोई किसान बाग लगाने की कोशिश कर रहा है तो बाग के चारों तरफ भी लगा सकते हैं। एक पेड़ जड़ से लेके कम से कम 12-13 फीट तक फैलता है, 25-26 फीट का फैला हो जाता है। इसका भी 10-12 साल का है, वो 1 से 2 क्विंटल तक आराम से देता है। जैसे शहतूत को हुआ, बिल्कुल एक एक करके तोड़ना पड़ेगा। आधा केजी की पैकिंग करते हैं प्लास्टिक की टोकरियों में, वो जालीदार टोकरियां जिससे वो खराब भी नहीं होता मार्केट तक जाने में। रोग बीमारी तो कुछ नहीं आती इसमें। शहतूत में भी कोई स्प्रे नहीं करते हैं, आड़ू में कोई स्प्रे नहीं करते, लोकाट के पे कोई स्प्रे नहीं करते, नाशपाती है इसमें भी कोई स्प्रे नहीं करते हम। नाशपाती में भी हमारे पास 4-5 वेराइटियां हैं। मुनाफा तो ये काफी अच्छा है। जैसे मेरे पास 4 एकड़ में ही है ये, तो इसमें 10-12 लाख रुपए की अर्निंग मेरी हो जाती है। बहुत लोगों को रोजगार मिलता है।
2: मेरा नाम पुनीत प्रताप सिंह है, गांव की कीटौत फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। लेकिन आलू के बाद मैं तरबूज भी लगाता हूँ, खरबूज भी लगाता हूँ। गर्मी वाली फसल है, गर्म जलवायु की, और इसमें बलुई मिट्टी ज्यादा कारगर रहती है, प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा निकलता है। दो तरीके से लगाते हैं, एक तो पूरे खेत का पलेवा करते हैं, वो उठाने के बाद उसमें हम हाथ से सीड जगह जगह जगह जगह गड़वा देते हैं। एक निश्चित दूरी 2 से 3 फुट की दूरी होती है, उसमें गड़वा देते हैं। और उसी तरीके से जो खरबूज का सीड है वो भी हम गड़वा देते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये है, अगर जहाँ पर पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो हम 5 से 6 फुट पर एक खेत में नाली बनाते हैं, और वो नाली के किनारे किनारे उन सीड को लगवा देते हैं, और उसके बाद हम उसमें पानी देते हैं, जिससे क्या है कि हमारी पानी की बचत भी हो जाती है। लेकिन इस बार जो मेरा क्षेत्रफल है वो तरबूज का भी लगभग 1.5 हेक्टेयर है और खरबूज का भी लगभग 1.5 हेक्टेयर है। जो काले कलर का जो तरबूज, हल्का सा अंडाकार जो आता है, ट्रांसपोर्ट के हिसाब से बहुत मजबूत रहता है वो, तो उसी सीड को हमने चुना। फल का वजन लगभग 3 किलो से लेकर के 5 किलो तक का होता है। वो भी हम पहले जो लगाते थे मिठास उसमें कम रहती थी, लेकिन अब जो हम सीड लगाते हैं वो उनकी मिठास भी बहुत अच्छी रहती है और मजबूत भी रहते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट में भी बड़ा आसानी रहती है और मार्केट में रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। तरबूज को तो हम उसकी हार्वेस्टिंग एक साथ कर देते हैं, उसमें आसानी ज्यादा रहती है। खरबूज के लिए तो हमें डेली या एक दिन छोड़ के उसकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। तरबूज की जो बेल होती है 3 से 4 फल बड़े साइज के होते हैं, बकाया 2 से 3 फल छोटे साइज के होते हैं, और उनका वजन मान के चलिए आप 2 किलो से लेकर के 5 किलो तक रहता है। लेकिन मार्केट में हमारा 3 किलो से लेकर के 5 किलो तक के जो पैसे होते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और खरबूज पर लगभग एक बिल पर 7 से 8 फल इतने आ जाते हैं। तरबूज की हार्वेस्टिंग तो हमको पूरे खेत में एक ही बार करते हैं, और पकने का जो समय है लगभग सेम रहता है। लेकिन खरबूज के जो पकने का जो समय है वो अलग अलग रहता है सबका। एक बार खेत में जब हमारा फल तैयार हो जाएगा तो लगभग 15 दिन तक हम हार्वेस्टिंग उसकी करेंगे। बादल हो जाते हैं, बारिश हो जाती है, पूरब वाली हवाएं चलती हैं, जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, उस समय इसमें कीड़ा और ब्लाइट आने की संभावना रहती है। उसकी रोकथाम के लिए हम उसमें दवा का छिड़काव करते हैं। जब मौसम ठंडा होता है उस समय हमारा फल भी ठंडा रहता है, तो उस समय हम उसको गाड़ी में लोड कर देते हैं। उसके बाद मार्केट तक जब पहुंचता है तो वो ठंडा रहता है। और खरबूज के लिए तो हमारी हार्वेस्टिंग ज़्यादातर शाम को होती है, वो भी 3 बजे से लेकर के और 5-6 बजे तक होती है। लेकिन हमारा जो खर्चा केवल सीड का रहता है, और जो भी हम उसमें दवा लगाते हैं उसका रहता है, और निराई गुड़ाई होती है उसका रहता है। तरबूज का जो प्रति बीघा का जो खर्चा है 2,000 रुपये प्रति बीघा का आ जाता है, और खरबूज में सीड भी सस्ता आता है, उसका तो मान के चलिए आप केवल 1,000 रुपये प्रति बीघा का केवल खर्चा आता है ये फसल तैयार करने का। तरबूज के लिए जिस जमीन की और जिस पानी की जो जरूरत है, उसका पीएच जो है ना वो कम होना चाहिए, जमीन भी कम पीएच वाली होनी चाहिए। खरबूज के लिए अगर थोड़ा सा पीएच बढ़ा हुआ भी है, पानी का भी पीएच बढ़ा हुआ है, फिर भी फसल उसमें हो जाती है।
3: नमस्कार जी, मेरा नाम अरुण कुमार सैनी, गांव बघरा, जिला मुजफ्फरनगर। हमारे यहाँ लीची और आम और अमरूद की खेती है जी। जो हमारा बाग है 40-50 साल का हो गया, 20 बीघे लीची की खेती है, आम के जो खेत है वो भी 20 बीघे के करीब है। वैसे हर प्रकार की मिट्टी में हो जाए लीची तो, पर दो मिट्टी जो है इसके लिए विशेषकर जो है लाभकारी हो। जो हमारे यहाँ तो नर्सरी से पेड़ है, जो सरकारी नर्सरी थी अब वहां से पेड़ लाए थे हम, और वहां से नर्सरी से लाए थे हमने जो है 40 बाई 40 से पेड़ लगा रखे इसके। और तो खैर गवर्नमेंट की स्कीम है बागवानी जो है उसके लिए जो है गवर्नमेंट अनुदान दे रही है फ्री। कुछ पेड़ हमारे 10 बीघे के जो है वो 40 साल के करीब है। कुछ पेड़ जो हमने नए लगाए वे करीब 10 साल

0: फल के पेड़ हो गई। मान लिया खेत में जब पेड़ लगाने हैं तो उसके लिए तैयारी करनी पड़े, 2 फीट का गड्ढा खोद ले गोबर का खाद और उसे जो खुला छोड़ दें। और तब करीब हमने लगाए बरसात के महीने में पेड़ लगाए हमने, पेड़ इसका मरता नहीं, सिंचाई की ऐसी आवश्यकता जो पड़ती है वो जैसे ही फल चने के बराबर हो जाए तो तब इसकी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, और करीब करीब 8 दिन में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। 16 किस्म होती है इसकी, पर हमारे यहाँ जो है 3 4 किस्म है। देहरादून जो लीची होती है वो देसी बोलते हैं जिसे, एक कलकत्ती के नाम से है, फिर एक चाइनीज है मुजफ्फरपुर के नाम से, एक शाही भी है हमारे यहाँ, एक भैंसवाल है, 3 4 किस्म हमारे यहाँ है। आकार सबका अलग अलग है, स्वाद अलग है, सब इनकम भी सबके अलग अलग है। और वैसे तो इनकम में जो है आपकी देहरादून में जो है लीची वो भी बेस्ट है, बीदाना के नाम से लीची है, जो उसके अंदर बीदाना का मतलब है बीज जो है लौंग की तरह का ही होगा, और वो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगा, मीठी लगा। ये उन्होंने भैंसवाल के नाम से, मोटा या आकार बहुत मोटी होगी लीची और उसमें गुद्दा ज्यादा होगा और बीज बहुत ही लौंग जैसा होगा, तो उसका भी स्वाद अलग है। वो मार्केट में जो है उसे भी पसंद बहुत करते हैं लोग। और इसकी जो है लगभग 20 दिन का ये फल है, 20 दिन में करीब करीब समाप्त हो रहा है। तो हमारे यहाँ से 10 12 किलोमीटर मुजफ्फरनगर है, एक दिन पहले तोड़ाई करा है, अगले दिन सेल कर रहे हैं उसे, तो कोई खराबी की कोई बात नहीं आती लीची की, और सेल बहुत बढ़िया मुजफ्फरनगर में। 1 क्विंटल तक लीची लग जा एक पेड़ पर, हमारे यहाँ 100 150 पेड़ है लीची के, फ्रूट नहीं, क्योंकि डंठल बहुत इसका मजबूत हो। लीची में दवाई का जो है वो कम है, इसके अंदर जो है सिर्फ 1 2 स्प्रे हो गए हैं फंगिसाइड की, सुंडी की जो है 2 3 स्प्रे हो जाए तो वो भी सब कॉस्टली नहीं होती, तो इसलिए खर्च बहुत कम है। मतलब एक साधारण सी एक पल्ली सी ली और उसमें यह पैकिंग करा और भेज दिया, तो कोई खर्च की नहीं है, आवश्यकता नहीं है इसमें। जैसे आम आता है तो पेस्ट्री में भेजो उसको, उसको पकाओ, तो वो खर्च नहीं है उसके अंदर। सबसे पुराना जो हमारे क्षेत्र में बाग था वो हमारे यहीं था, लीची के टाइम पे 20 25 आदमी हमारे यहाँ था। पत्ते से ही तो उस लीची को तोड़नी पड़ती है, डंठल को थोड़ा पत्ता लेना पड़ता है उसके साथ में। संतुष्ट है, आम की अपेक्षा लीची बहुत इनकम का स्रोत है।
1: आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि समाचार दर्शन का यह अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शिवनंदन लाल के साथ मैं संध्या आपसे विदा लेती हूँ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: तो अभी आपने सुना कृषि समाचार दर्शन के तहत ग्रीष्मकालीन फलों की खेती पर ये जो हमारे अनुभवी किसान थे उनसे बातचीत, और ये बातचीत कर रही थी संध्या गुप्ता। और अगर हम आप बताना चाहते हैं कि हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आपको, तो आप इसका फीडबैक दे सकते हैं। ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम आज का कृषि जगत यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी साथियों को
3: राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं, अब वक्त हो चला है हमारे गजल और कव्वाली से भरा इस कार्यक्रम का, तो आइए शुरुआत में आपको सुनवाते हैं पंकज उदास की ये गजल।

श्रोताओं, पंकज उदास की गाई गज़ल अभी आपने सुनी, और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवा देते हैं पंकज उदास की ही आवाज़ में एक और गज़ल।

0: श्रोताओं, इसी के साथ गजल और कव्वाली का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वाहनों का कम उपयोग करने और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील की। दिल्ली सरकार लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। यह नीति राजधानी में माल ढुलाई और आपूर्ति प्रणाली को अधिक कुशल बनाएगी। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति पर बैठक की। इस नीति का उद्देश्य दिल्ली में वॉक टू वर्क अवधारणा का विकास करना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित किए।

0: मुख्यमंत्री ने परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को बधाई दी। राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली पुलिस ने महिला सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आवश्यकता अनुसार न्यूनतम वाहनों का उपयोग करने और कार पोलिंग तथा सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील की है। इसी पहल के अनुरूप श्रीमती गुप्ता ने आज दिल्ली मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने दिल्ली के लोगों से भी ऊर्जा संरक्षण के इस राष्ट्रीय प्रयास में शामिल होने का आग्रह किया। इसी क्रम में दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने आज दिल्ली परिवहन निगम की बस में यात्रा की। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर सिंह ने दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने का आह्वान किया।
1: हम अपनी दिल्ली की जनता को ये अपील करते हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर अग्रसर हो, दिल्ली सरकार वचनबद्ध है बेहतर सुविधा देने के लिए। ट्रांसपोर्ट विभाग इसके ऊपर सजग रहेगा कि आप जितनी सुविधा देनी है उतनी सुविधा लास्ट माइल सुविधा पर दे सके और उसी के ऊपर काम के लिए अपील भी कर रहे हैं।
0: मंत्री कपिल मिश्रा ने भी आज दिल्ली मेट्रो से यात्रा की। श्री मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर दिल्ली सरकार ऊर्जा संरक्षण के लिए संकल्पित है। उन्होंने दिल्ली की जनता से इस वैश्विक संकट के बीच ऊर्जा संरक्षण करने का आह्वान किया।
2: प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है उस आह्वान का पालन करते हुए ईंधन बचाना, ऊर्जा का संरक्षण करना, राष्ट्रीय जो हमारा कर्तव्य है उसका पालन करना, उसका आज मुख्यमंत्री जी ने भी संकल्प लिया है और सभी मंत्रियों को अधिकारी गणों को निर्देश भी दिया है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे, सार्वजनिक यातायात का इस्तेमाल करेंगे।
0: दिल्ली सरकार लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार यह नीति राजधानी में माल ढुलाई तथा आपूर्ति प्रणाली को अधिक कुशल, तेज और कम लागत वाला बनाने के साथ साथ व्यापार को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में माल परिवहन से होने वाली भीड़भाड़ को कम करना, प्रदूषण घटाना और राजधानी को एक आधुनिक, कुशल और पर्यावरण अनुकूल लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नीति के तहत शहर के बाहर परिधीय क्षेत्रों में शहरी समेकन एवं लॉजिस्टिक्स वितरण केंद्र विकसित किए जाएंगे, जहां बड़े स्तर पर आने वाले माल को एक स्थान पर एकत्र कर आवश्यकता के अनुसार शहर के भीतर भेजा जाएगा। इस नीति के अंतर्गत बाजार स्तर के गोदाम और सूक्ष्म पूर्ति केंद्र विकसित किए जाएंगे, जिससे सामान की अंतिम चरण तक डिलीवरी तेज और व्यवस्थित होगी। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत अंतरदेशीय कंटेनर डिपो का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा तथा लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, ट्रक टर्मिनल और पार्किंग हब विकसित किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के साथ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति पर एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य दिल्ली में वॉक टू वर्क यानी पैदल चलकर काम पर जाने की अवधारणा पर आधारित समुदायों का निर्माण करना है। उपराज्यपाल ने कहा कि यह नीति दिल्ली के शहरी परिदृश्य और क्षितिज को एक नया रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस नीति के अंतर्गत मेट्रो और RRTS स्टेशनों के आसपास उच्च घनत्व और मिश्रित उपयोग वाले क्षेत्रों का विकास किया जाएगा, जिससे यातायात की भीड़ में कमी आएगी, शहरी गतिशीलता बेहतर होगी और किफायती आवास की उपलब्धता में वृद्धि होगी। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों, कुलपतियों और निदेशकों के साथ आज एक बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दिल्ली के शैक्षणिक संस्थाओं को नवाचार, अनुसंधान और सामाजिक परिवर्तन के इंजन के रूप में विकसित होना चाहिए। उपराज्यपाल ने आज दिल्ली यातायात पुलिस के प्रस्तावों और अवसंरचना से जुड़े कामों की समीक्षा भी की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार परिवहन व्यवस्था को और आधुनिक, पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। श्री संधू ने गलत साइड ड्राइविंग, बिना अनुमति पार्किंग और भारी वाहनों के अवैध प्रवेश जैसी समस्याओं को मिशन मोड में हल करने की जरूरत पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने एक व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार IEC और प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज

0: बीएससी कक्षा 12वीं की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सहित पूरे देश के विद्यार्थियों ने अपने परिश्रम, अनुशासन और संकल्प के बल पर यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए हैं, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में हर अनुभव आगे बढ़ने, सीखने और स्वयं को और बेहतर बनाने का अवसर देता है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी सफल विद्यार्थियों को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बैठक के बाद सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि यह योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: हरियाणा के नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरियाणा की जनता और विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने एक बार फिर विकास की राजनीति और डबल इंजन सरकार के सुशासन को अपना समर्थन दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कीरोडिमल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने आज दिल्ली विधानसभा का दौरा किया। विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भ्रमण करने के लिए आए छात्रों का विधानसभा परिसर में मार्गदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने इतिहास, कार्यप्रणाली तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में विधानसभा की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त की। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने आज जनकपुरी में एक जनसुनवाई के दौरान जनता की रोजमर्रा की समस्याओं को सुना। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि जनता की सभी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव एस कृष्णन ने नई दिल्ली में आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान एक IP कैटलिस्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। सम्मेलन का विषय है पेटेंट से उत्पाद तक इलेक्ट्रॉनिक्स और IT में IP व्यवसायीकरण में तेजी लाना। श्री कृष्णन ने कहा कि देश आज विकसित भारत की परिकल्पना की दिशा में नवाचार यात्रा के महत्वपूर्ण मोड़ पर है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली पुलिस के बीच आज महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संस्थागत समन्वय मजबूत करने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने समन्वित और पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण अधिकारियों और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल महिलाओं को समय पर सहायता और न्याय दिलाने के लिए बेहद आवश्यक है। दिल्ली के कंझावला इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक फैक्ट्री में आज सुबह आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग के अनुसार उन्हें इस घटना की सूचना सुबह लगभग 9:54 पर मिली। खबर लिखे जाने तक दमकल विभाग के उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी DB मुखर्जी के अनुसार विभाग की 28 गाड़ियां मौके पर काम कर रही थी। उन्होंने बताया कि अब तक बिल्डिंग में काम करने वाले किसी मजदूर के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
2: हमारे कोई भी कर्मचारी जो है इंजर्ड नहीं हुए हैं। तक जो हमें सूचना मिली है कि बिल्डिंग के अंदर काम करने वाले कोई भी मजदूर या कोई भी व्यक्ति इंजर्ड नहीं हुआ है। बिल्डिंग जिस तरह से बनाई गई है उस हिसाब से देखा जाए तो बिल्डिंग सेफ नहीं है और आसपास की फैक्ट्रियों को बिल्कुल सेफ रखा हुआ है। किसी भी फैक्ट्री में जो है आग नहीं पहुंची है।
0: दिल्ली में मॉनसून से पहले जलभराव की समस्या से निपटने के लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि राजधानी के सभी बड़े ड्रेन से 76% गाद निकाल लिया गया है। आधुनिक मशीनों, लगातार निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई के जरिए नालों की सफाई का काम तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि 29 लाख मीट्रिक टन गाद हटाने के लक्ष्य में से अब तक 22 लाख मीट्रिक टन से अधिक गाद निकाली जा चुकी है। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। प्लैटिनम पर आयात शुल्क भी 6.4% से बढ़ाकर 15.4% कर दिया गया है। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। एयर इंडिया ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं में यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। दिल्ली शिकागो मार्ग, मुंबई न्यूयॉर्क मार्ग, दिल्ली शंघाई, चेन्नई सिंगापुर और दो अन्य मार्गों पर अस्थायी रूप से उड़ानें कम की जाएंगी। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि बिबवेवाड़ी इलाके से गिरफ्तार इस महिला को प्रारंभिक पूछताछ के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 की परीक्षा इस महीने की 3 तारीख को हुई थी। पेपर लीक के आरोपों के कारण इसे कल रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए हैं। पुलिस ने तस्करी में शामिल दो मुख्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक वाहन भी जब्त किया गया है। और अब दिल्ली में मौसम। राजधानी में आज सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, हालांकि दिन भर मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि कल का अधिकतम तापमान 40 से 38 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 28 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वाहनों का कम उपयोग करने और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील की। दिल्ली सरकार लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। यह नीति राजधानी में माल ढुलाई और आपूर्ति प्रणाली को अधिक कुशल बनाएगी। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति पर बैठक की। इस नीति का उद्देश्य दिल्ली में वॉक टू वर्क अवधारणा विकसित करना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित किए। मुख्यमंत्री ने परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को बधाई दी। और राष्ट्रीय महिला आयोग तथा दिल्ली पुलिस ने महिला सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका।

श्रुतो चित्रा और साथियों की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत। और साथ में श्रोताओं, अब ये भी सोचिए ज़रा कि क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप किसी से मिले ही नहीं हो, लेकिन एक मुलाकात में ही आपका रिश्ता इतना गहरा हो गया हो जैसे कई वर्षों या जन्मों का रिश्ता हो। इस एहसास को महसूस कीजिए और सुनिए अगला गीत।

उम्मीदों से आगे की कहानी जब आप लिखने लगते हैं तो छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे किस्से भी इतनी गहराई तक उतर जाते हैं मानो सागर भी छोटा पड़ जाए। और श्रोताओं, जब कुछ खास लिखकर आप अपनी यादों को संजोते हैं ना, तो फिर वो वक्त बीत जाने पर दिल से आवाज़ निकलती है कि ये तो उन दिनों की बात है।

ये उन दिनों की बात है। श्रोताओं, कई बार कई मौके ऐसे आते होंगे जब आप भी कोई किस्सा याद करते होंगे और बड़ी ही आसानी से कहते होंगे कि ये तो उन दिनों की बात है। कितना मज़ा आता है ना बीती बातों को जब हम याद करते हैं, गुदगुदी सी महसूस होने लगती है। ये यादें भी ठीक उसी तरह होती हैं जैसे बड़े होने पर बचपन की तस्वीरों को देखना, हम खुद को एक आईने में पाते हैं। खैर, बचपन हो या फिर बड़प्पन, हर वक्त कोई ना कोई तो हमारे पास ऐसा होता ही है जो दिल की बातें जानता ही है।

श्रोता, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवा देते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

अब दिल की बातें कौन जाने भला, वही ना जो आप संग साए की तरह रहता है और किससे कहानियों को कहता है सुनता है। यही तो वो खूबसूरत प्रेम कहानी होती है जिसे आप अपने हम सफर संग लिखते हैं, गुनगुनाते हैं। प्रेम कहानी में मजा तब और भी बढ़ जाता है जब आपका साथी आपसे कहे कि मुझे कुछ तुमसे है कहना। क्या कहना है तो चलिए सुन लेते हैं।

उदित नारायण और विभा शर्मा की आवाज में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। और श्रोताओं आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में चीनी कम है फिल्म से लिया गीत।

तो श्रोताओं, ये जो कई सवाल है ना कि दुनिया ऐसी क्यों है, बातें हवा क्यों है, पूछिएगा अपने साथी से। और जानते हैं, कई सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब जब आपके पास ना हो तो फिर मीठी सी बात करने लग जाओ, क्योंकि ये जो मीठी मीठी बातें होती हैं ये तमाम सवालों का जवाब होती है। जी हाँ, कई सारे सवालों के जवाब मीठी सी बातों में ही छुपे होते हैं।

0: और श्रोताओं, सोल्जर फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत से भरा ये कार्यक्रम गीत मालिका अब संपन्न होता है। कुछ ही पलों में सुनिए समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल

0: की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। CBI इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the 4 European countries.
1: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
4: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
5: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई

0: महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Ganeshwari Yadav bags a silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase.

0: चीजें रुक जाएंगी आपकी, बहुत सारे व्यायाम आप नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे दूसरे जोड़ भी उसकी वजह से जाम होना शुरू हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं अगर इससे इसका उपचार ना किया जाए तो शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। जैसे कि कोई डायबिटिक पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, अगर वो चलेगा नहीं तो अपनी डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसके वजह से दूसरे भी रोग बढ़ जाते हैं। तो चलना बहुत जरूरी है
1: अच्छा डॉक्टर साहब, मौजूदा दौर में चूंकि कंप्यूटर का दौर है, ये सिटिंग जो है कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा हो गई है, क्या बैठने लंबी सिटिंग से भी कमर में दर्द हो जाता है? अगर होता है तो क्या क्या करें वक्तन फवक्तन की कमर दर्द से ना हमें दो चार होना पड़े?
0: जी हाँ समीम जी, अगर हम लंबे टाइम बैठ रहे हैं तो बैठने की वजह से जो हमारी मांसपेशियां हैं, जैसे इसमें जकड़न बढ़ती है, स्टिफनेस बढ़ती है, वो बैठने से ही बढ़ती है क्योंकि वो मसल स्ट्रेच नहीं हो रही है। अगर हम चल रहे हैं तो एक सेल्फ स्ट्रेचिंग हो रही है दिन भर की, उसमें कोई व्यायाम की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम बैठे हैं तो उस केस में जो है वो जकड़न शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए अगर हम सुबह के टाइम में या किसी भी टाइम में, जरूरी नहीं है कि आप सुबह में ही करें, किसी भी समय में समय निकाल करके अगर शरीर की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर ली जाए, डिफरेंट मसल्स की, बैक थाई मसल्स की और अपना बैक मसल्स की, तो इस तरह की समस्या से बचा जा सकता है। 1 से 2 घंटे बैठने के बाद तो थोड़ा बहुत चलना जरूरी है। कंप्यूटर पे बैठे भी हुए हैं, अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो अब जनरली हम क्या करते हैं कि बैठे बैठे अगर हम कुछ काम भी है तो हम ईमेल कर देते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने सहकर्मी के पास जाइए और जाकर के उसे बता दीजिए, तो उससे आपकी एक वॉकिंग भी हो जाएगी और जो स्टिफनेस है वो उतनी नहीं रहेगी।
1: इलाज क्या है इसका?
0: जो कमर का दर्द है इसको आप 2 तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें जो 50% पॉपुलेशन है उसको दर्द होगा सिर्फ बैठने में और आगे झुकने में। कुछ लोगों में जो दर्द होता है, ये दर्द होता है सिर्फ चलने में और खड़े होने में।
1: अच्छा।
0: तो दोनों के लिए जो पोस्चर होगा, पोस्चर मतलब खड़े होने और बैठने का ढंग, ये बिल्कुल अलग अलग होगा। जिसको दर्द हो रहा है झुकने में और बैठने में, इस तरह के लोगों के लिए सीधा बैठना ज्यादा जरूरी है, चलने में भी कमर को सीधा रखना ज्यादा जरूरी है।
1: यानी जब बैठे वो कमर सीधी करके बैठे,
0: पीछे टेक लगा के बैठे। जैसे आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो फिर टेक लगा के बैठे। अब दूसरे हम केस ले रहे हैं कि जिन लोगों को दर्द हो रहा है चलने में और खड़े होने में, इस तरह के लोगों को जब आप बैठते हैं कुर्सी पे तो हाथ आपका टेबल पे रेस्ट करना चाहिए। लेटने के लिए भी इनके लिए पोजीशन है, सीधा ना लेटें, करवट से ही लेटें घुटना मोड़ करके, क्योंकि जिसको पैर में दर्द जा रहा है सीधा खड़े होने पे और चलने पे, जैसे ही वो करवट से लेटेगा उसको पेन नहीं रहेगा। जब भी कोई दर्द या स्टिफनेस अचानक से शुरू होती है तो शुरू के 2 दिन मतलब 48 घंटे तक उसमें आइस पैक लगाया जाए, 10 मिनट से कम समय के लिए, दिन में 3 से 4 बार लगा सकते हैं। इन 2 दिनों के लिए, जो शुरुआत के 2 दिन हैं, इनमें आप कोई भी रूबीफिशिएंट जैसे कि वोलनी, आयोडेक्स वगैरह ना लगाएं और हीट से ट्रीटमेंट ना करें शुरू के 2 दिन तक, टिल 48 आवर। आफ्टर 48 आवर आप हीट और रूबीफिशिएंट जैसे वोलिनी वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेहतर फील होगा और आप तेजी से ठीक हो जाएंगे। एहतियात सबसे ज्यादा जरूरी है ये कि कभी कभी हम काफी टाइम से खाली होते हैं और हम कोई व्यायाम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से हमें लगता है कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए, तो हम बहुत विग्रस एक्सरसाइज, जो हार्ड एक्सरसाइज होती है, वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे रनिंग शुरू कर दी तो वो एकदम शुरू नहीं करना है, पहले स्ट्रेचिंग करनी है, फिर वॉकिंग करनी है, उसके बाद हम धीरे धीरे जॉगिंग पे आएंगे, तब हम रनिंग कर सकते हैं।
1: उम्मीद है हमारे सामीन के लिए यकीनन ये मुफीद और कारामद साबित होंगी। आप हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाए डॉक्टर रविंद्र कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है अदबी नशिस्त।
2: गालिब हमारे उन शायरों में हैं जिनकी जिंदगी के बारे में कोई भी बात, कोई भी तफसील हमारी निगाहों से शायद उझल नहीं रहेगी। अजीब बात यह है कि गालिब की पैदाइश को 200 साल का अरसा गुजर चुका, लेकिन ये कि उनके बारे में रोजाना नित नई मालूमात, कहना चाहिए कि हमें किसी न किसी वसीले से मिलती रहती हैं। उन्होंने अपनी खुदनविश नहीं लिखी, लेकिन उनके सवाने उनके खतूत में बिखरे हुए हैं। उन्होंने कोई सफ़रनामा नहीं लिखा, लेकिन ज़िंदगी में जितने सफ़र भी उन्होंने किए उन सब की रुदाद हमारे सामने अब आ चुकी है। और इस सिलसिले की जो अहम तरीन किताब है वो गालिब का सफ़र कलकत्ता और कलकत्ते का अदबी मार्का, जिसके मुसन्निफ़ खलीक अंजुम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उस किताब को देखा जाए तो मालूम होता है कि गालिब कितने गैर मामूली इंसान थे। एक ऐसा शख्स जो सिर्फ बड़ा शायर और बड़ा इंसान ही नहीं था, बड़ा नस्नगार ही नहीं था, कहना चाहिए।

0: सजी थी जहां पर खूब तवीज़ें हुई और गालिब वहां से आ गए। बनारस में हमें किसी और से तो कुछ जराया का नहीं मालूम होता, खुद गालिब के खतरों से मालूम होता है। और अंदाजा यह है कि वहां जैसे मालिक राम साहब भी कहते हैं, अब्दुल हक भी, वो हमारे काजी वजूद भी, और खुद मेरा भी ये ख्याल है कि कहीं दिल लग गया था इनका और उसके चक्कर में गालिब वहां है। हम डोमनी का तो बहुत जिक्र करते हैं लेकिन हम उस खातून को भूल गए जो बनारस में गालिब को मिली थी, यकीनन को मिली।
1: चिराग दैर में हाँ। उन्होंने बनारस के इंसानों की वो गुस्ल का सुबह का मंजर और ये सब तो सुबह बनारस का तो जिक्र किया है। इसी के साथ साथ उन्होंने इल्म दानिश की जो कदीम रवायत रही हिंदुस्तान की उसका बहुत जिक्र किया है, तो उससे भी गालिब मुतासिर,
0: हिंदू फलसफे से मुतासिर गालिबन गालिब वहीं जाकर हुए। मेरा ख्याल ये कुछ गालिब जाहिर है कि बहुत जहीन और पढ़ा लिखा आदमी था और हमेशा इल्म की तलाश में रहता था, पंडितों से मिले होंगे। तनासुक के मसले पर गालिब ने जो कुछ उस मसनवी में कहा है, हालांकि मैं चाहता हूं कि दोबारा पैदा हूं तो बनारस से पैदा हूं और इस तरह की बातें, वो मेरे ख्याल से किसी पंडित से गालिब की मुलाकात हुई। आप देखिए उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं
1: जी
0: जो मुझे लगता है कि प्योर हिंदी फलसफा है, हिंदू फलसफा जो गालिब ने वहां जाके हासिल किया है। जी
1: अच्छा, कलकत्ते में सदीक़ुर रहमान साहब, आप ये देखिए कि कलकत्ते के सफर में गालिब के कुछ अशार भी है। कलकत्ते का जो जिक्र किया, तूने हम नशी एक तीर मेरे सीने पे मारा के हाय आए, वो मेमो के बगैर आस्तीन के ब्लाउज पहने हुए उसकी तारीफ करते हैं, उनके जुल्फ तराशी हुई उसका जिक्र करते हैं, उनके यानी कहना चाहिए निगाहों के तीर और ये सब गर्जे की इन सब चीज़ों का। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी मालूम होता है कि गालिब वहाँ की जिंदगी में जो नएपन की झलक दे, जो रिनेसा के निशानात देख रहे थे उसका, उसको आप जब दिल्ली से जोड़ के देखते हैं, यहाँ मास्टर रामचंद्र उनकी रवायत दिल्ली में जो बन चुकी थी जदीद तहजीब नशरानिया की, फिर कलकत्ते में जाके गालिब का उसका बाकायदा जीता जागता इजहार देखना, इसको आप किस नज़र से देखते हैं?
2: इसका तो बहुत वाजे
1: जी
2: इजहार गालिब ने उन अशार में किया है फारसी के, जो सर सैयद की
0: फरमाइश
2: लिखे, और उससे तो जो जहन गालिब का जो जहन सामने आता है वो अजीब गरीब है कि गालिब दो दुनियाओं के दरमियान है
1: जी।
2: एक दुनिया वो है कि जिसमें वो पले बढ़े और रहे हैं
1: जी, जी।
2: दूसरी दुनिया वो है कि जिसका एक हल्का सा अंदाजा उन्होंने अपने सफर के दौरान में भी किया, और उसके अलावा दिल्ली में रहते हुए भी वो परसेप्शंस उनके जो बने हैं उनके तहत वो उन सब चीज़ों का जलवा देख रहे हैं। तो जो उनके यहाँ पूरी ज़िंदगी में और शायरी में भी तो जो तशकीक वगैरह का जो जिक्र आता है, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें एक ऐसे जहन की अलामत हैं कि जो एक खोज में है, एक जस्तुजू के अच्छा सफर पे है। ये जस्तुजू का सफर दरअसल कलकत्ते से जाने के बाद ही शुरू हुआ जो इतने बड़े पैमाने पर था।
1: उसी मसनवी में जिसका अभी आपने जिक्र किया है, यानी तकरीर जो लिख रहे थे अबुल फज़ल की आयन अकबरी पर, उसमें इस तरह के अशार हैं कि पेशे ही आई के दारद रोजगार गश्ता आईने दिगर तकवी में पार, और बुलंदन का दरा रखशंदा बाग शहर रोशन गश्ता दर्शन, यानी एक उस शहर में जाके देखो कि वहाँ शहर रोशन है, चिराग नहीं जल रहे हैं, नगमे जो हैं बगैर जख्मे के सामने आ जाते हैं, हरूफ उड़ते हुए, यानी साइंसी जायदाद वगैरह का ही बहुत उन्होंने जिक्र किया है। एक तरफ वो इससे मुतासर होते हैं, दूसरी तरफ वो दिल्ली की जो पुरानी तहजीब रही है उसके उजड़ जाने का ही मातम करते हैं, और ये कहते हैं कि पुरानी बातें कहाँ रहीं और वो चीज़ें कब की ख़त्म हो गई। एक तरफ वो मुगल अरिस्टोक्रेसी के नुमाइंदा हैं, दूसरी तरफ एक नई तब्दीली के नुमाइंदा हैं। ये दोनों चीज़ें आप ये बताएं खलीक साहब, इस वो जो उन्होंने बाद मुखालिफ लिखी वहाँ कलकत्ते में, वहां पर उनके साथ जो भी सलूक रहा हो वहां के शौरा का और वहां के लोगों का, लेकिन ये कि कलकत्ते की जिंदगी का असर गालिब के शऊर पर क्या पड़ा पूरी, और जबान के सिलसिले में जो उनकी बहसें वहां
0: जो बात आपने अभी कही बहुत अहम बात है
1: जी,
0: कि गालिब की शख्सियत बढ़ गई है
1: जी।
0: एक तरफ तो वो मोहब्बत करते थे मुगल कल्चर से, तहजीब से जो जवाल आमादा थी, और नफरत करते थे उस तहजीब से जो मर रही थी। यानी गालिब दिल्ली में भी देखिए आप उनकी शख्सियत बैठी हुई है, यानी वो इस तहजीब से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं जो उनको विरसे में मिली थी, और वो नफरत करते हैं उन हालात से जो उनके ज़माने में पैदा हो गए थे, जवाल आमादा थे। इसके बरक्स जब वो कलकत्ते जाते हैं तो एक नई दुनिया देखते हैं, जो आपने कहा दुहानी जहाज उनके, यानी वो कहते हैं कि जहाँ जो सफ़र मैंने कलकत्ते से यहाँ तक किया है जितने दिनों में, इतना तो दुहानी जहाज से एक हफ्ते में हो जाता है स्टीमर से
1: जी।
0: अब गालिब, फिर बिजली, फिर इन सबसे ज्यादा यह कि वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन था غالب اس سے بڑے متا غالب نے کئی خطوں میں اس کا ذکر کیا ہے.
1: جی.

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे हातिम ताई फिल्म का नगमा, मौसीकार थी एस एन त्रिपाठी। सुनना चाहती थी अनारकली बाज़ार जगराऊं से सुनील पाठक, कमल पाठक और गव्या मल्होत्रा। और जनाब लेक सिटी उदयपुर से नरोत्तम गौड़, हिमांशु गौड़ और यश गौड़। ग्राम पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुनूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी और शकील अहमद इदरीसी। उमरखेड़ से सिराज खान, शबाना बेगम और फरदीन खान। मधुबनी बिहार से मोहम्मद साबित परवाना, साजिद अली और रुखसाना खातून। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा। मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन। केथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा। अलीका डब्बाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार और कुलदीप गांधी। और शामिल लीजिए, अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में छोटी बहन फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है शंकर जयकिशन ने। सुनना चाहते हैं कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले और प्रतीक हिवराले। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला नावकर और विशाल नावकर। मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्ची और आशीष मोहरकरे। मेहनगर उमरखेड़ से अभिजीत गवाहनकर, सरिता गवाहनकर और अर्जुन गवाहनकर। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। और जनाब ये हैं सिटी सेंटर खंडवा से भमनु सेन, पूनम सेन और दीपक सेन। आसे गांव बाजार से करण रंजीत पुनकर। देवकी नगर भोपाल से चंपालाल दुबे, अनंत और दर्शित। सिद्धार्थनगर देरेपुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले और सुशील येले। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी और भानु खोरवाल। संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुलगफार डावर, अब्दुलक डावर और जियाउलक डावर। जलालाबाद वैसे सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा और दिशानी। हाकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे और शुभम बेंडे। बांदा उत्तर प्रदेश से फई मंसूरी और फातमा मंसूरी।

रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा नायाब, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नादिया नासिर और साजिद साहिद, और यह जनाब खांजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, नजीब खान और अशरफ खान। आप सबकी पसंद लता मंगेशकर, फिल्म छोटी बहन।

और सामिनी, जब सुनी सुधा मल्होत्रा और किशोर कुमार की आवाज़ों में हेमंत कुमार की मौसीकी से जाए नगमा, फिल्म है गर्लफ्रेंड। सुनना चाहते हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो, कृष्णा घोड़ के प्रशांत शिंदे, रोशी शिंदे, रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से हमें सुन रहे हैं। कृष्णा कॉलोनी हांसी से अगला मेल हमें मिला है, भेजने वाले सुभाष योगी, राजू मिगलानी और बब्बू डब्बू। नई दिल्ली से इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और रविंद्र सिंह छाबड़ा जी का मेल भी हमें मिल गया है। और यह जनाब सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग और सोनाली नारंग। ग्रीन सिटी गांधीग्राम गुजरात से परवीन सोनी, कलावती सोनी और प्रथम सोनी। जौहरी बाजार से पूजा और पायल और जगदीश जौहरी। और यह जनाब कहाँ से, गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी और पुलकी वाली फलना झा। और मोताला महाराज से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती कुमारी। चंडीगढ़ से सतीश अनिजा और बिमला अनिजा। मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार, शेख सगीर और शेख वजीर। भटापारा से बचकमल, डॉक्टर बसंत बुर्गो और मोतीलाल यादव।

और शामिल लीजिए, सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में प्रोग्राम की अगली पेशकश। फिल्म है गर्ल्स हॉस्टल, मौसीकार हैं रवि। सुनना चाहते हैं कनेडा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और निहारिका। सांगली जिला जत शहर से अल्ताफ उजरे, सैफुल और सबाहत उजरे। और जनाब ये हैं जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट और प्रयागराज भट्ट। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार और पल्लो निषाद। छिपा कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री और मोहम्मद अयूब खत्री। नेहरू चौक पेठन से सुरेश यादव, अनीता यादव और सोनल प्रसाद यादव। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और अमित कुमार राय। और ये है प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से मेल भेजने वाले हैं आनंद जोशी, तनुजा जोशी और ध्रुवी जोशी। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा जिला सोलापुर महाराष्ट्र से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। और गांव ही परसों का तहसील ओसा जिला लातूर से उस्मान शेख, सहराबानो शेख और करिश्मा शेख। और जनाब सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा और राहुल कुमार वर्मा। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी और रियाज रिफाकत। और कोलकाता से सुब्रत राय चौधरी।

मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अलाक्वामी मामलात के साथ साथ खासतौर से तवानाई के सिलसिले में इश्तराक समेत बाहमी मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। जनाब जॉर्ज ने कहा कि अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत वजीर आजम उसी दिन नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इस दौरान जनाब मोदी शाह विलियम एलेक्जेंडर और मलिका मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम रोब जेटन के साथ बातचीत करेंगे। अपने दौरे के तीसरे मरहले के तहत जनाब मोदी इतवार के रोज़ स्वीडन पहुंचेंगे। वहां वो स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टनसन के साथ वसी तर मामलात पर दो तरफा बातचीत करेंगे और बाहमी तजारत में इजाफे के लिए इश्तराक के नए इम्कानात पर तबादले ख्याल करेंगे। अपने दौरे के चौथे मरहले के तहत वजीर आजम पीर के रोज़ तीसरी भारत नॉर्डिक समिट और बाहमी राब्तों के लिए अपने दौरे के आखिरी मरहले में वजीर आजम मंगल को इटली पहुँचेंगे। जनाब मोदी यहां इटली के सदर सर्जियो मेटारेला से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी से बातचीत करेंगे। जनाब मोदी खुराक और ज़रई तंजीम FAO से के हेडक्वार्टर भी जाएंगे और भारत 1945 से FAO का बानी मेंबर है। इक्तसादी उमूर से मुतालिक काबिना कमेटी ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफे को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मरकजी काबिना की मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए इत्तलात नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हुकूमत ने खरीफ फसलों की MSP में इसलिए इजाफा किया है ताकि किसानों को उनकी पैदावार की माकूल कीमत को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को दी जाने वाली तखमीना रकम 2,60,000 करोड़ रुपये रहेगी। उन्होंने कहा कि इस सीजन के दौरान 824 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा फसलों को अंदाजन सरकारी खरीद की जाएगी। जनाब वैष्णो ने कहा कि सूरजमुखी के बीज के लिए सबसे ज़्यादा 622 रुपये फी क्विंटल कम से कम इमदादी कीमत की तजवीज़ पेश की गई है, जिसके बाद कपास के लिए 557 रुपये फी क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपये फी क्विंटल की तजवीज़ है। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकजी काबिना की जानिब से मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए खरीफ फसलों की कम से कम इमदादी कीमत MSP में इजाफे का फैसला मुल्क के करोड़ों मुसलमानों के लिए ज़रई पैदावार की मुनसिफाना और मुनाफे बख्श कीमत को यकीनी बनाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि यह फैसला मुल्क के किसानों की ज़िंदगी में मज़ीद खुशहाली लाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अहमदाबाद धुलेरा सीमी हाई स्पीड डबल इन लाइन प्रोजेक्ट से मुतालिक काबिना का फैसला मुल्क के रेलवे जदीदकारी के सफर में एक अहम संग मील है। वजीर आजम ने कहा कि काबिना से मंजूर शुदा जमीन की सतह के करीब के कोयले और लिग्नाइट से गैस की पैदावार के प्रोजेक्टों को फरोग देने की स्कीम तवानाई की यकीनी फराहमी को मजीद मुस्तहकम करेगी, सरमायाकारी में इजाफा करेगी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करेगी। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी CBI ने NEET UG 2026 इम्तिहान से मुतालिक मुबैना बेजाबतगियों और पेपर लीक के मामले में 5 मुलजिम अफराद को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 5 मुलजिमों में से 3 का ताल्लुक जयपुर, 1 गुरुग्राम और 1 का ताल्लुक नासिक से है। फिलहाल मुतअद्दद दीगर मुश्तबा अफराद की जांच की जा रही है। एजेंसी ने आज मुल्क भर के मुख्तलिफ मकामात पर भी तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी है। तलाशी और गिरफ्तारी के दौरान एजेंसी ने मोबाइल फोन समेत मुतअद्दद काबिल एतराज अशिया और इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त किए हैं। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फलों, सब्जियों, तिलहन, गजाई अजनास, मवेशियों के इस्तेमाल की अशिया और दीगर लाजमी मसनूआत की बैन रियासती नकल व हरकत पर तमाम पाबंदियां हटा दी हैं। साबिक TMC हुकूमत ने इन अशिया पर पाबंदियां आयद की थीं। इकतदार में आने से कबल BJP ने किसानों को पाबंदियां हटाने की यकीन दहानी कराई थी। दूसरी तरफ एक अहम कदम उठाते हुए मगरबी बंगाल हुकूमत ने टीचरों, म्यूनिसपैलिटी और कोऑपरेटिव की भर्ती में हुए घोटाले के मामले को मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI के हवाले करने का फैसला किया है। वजीर आला सुवेंदु अधिकारी ने आज TMC हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने बदनुमान अफसरों को तहफ़ फराहम करने के लिए इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की। हुकूमत ने उन अफराद की मुलाजिमत भी ख़त्म कर दी है जिन्हें TMC हुकूमत ने रिटायरमेंट के बाद मुलाजिमत दी थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के अपने हमनसब जी जिनपिंग के साथ सरबराह मुलाकात के लिए आज बीजिंग पहुँचे हैं।
کل شروع ہونے والی اپنی دو روزہ بات چیت کے دوران امکان ہے کہ دونوں رہنما ایران کے ساتھ جنگ تائیوان کو امریکی

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आप सुन रहे थे बहू बेगम फिल्म का नगमा। नगमा निगार थे साहिर, मौसीकार रोशन। सुनना चाहते थे मुख्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत और निशु। फुलांग निज़ामबाद तेलंगाना से एम ए वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर और मोहम्मद फसीह। आदरगंज रोड गंडूनवारा से शादाब शमशाद, अंदलीप खानम और सारा फातमा शेख। और जनाब ये हैं रेलवे रोड गंडूनवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज और बेबी फातमा गाजी। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, सायमा नवाज और हसन नवाज। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा और कीर्ति अरोड़ा। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी और वर्षा सुमन। ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श और सार्थक चंसोलिया। निर्मला अपार्टमेंट भिलाड़ वापी गुजरात से कल्पना मदन झा, मानव और मयंक। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमानाद अंसारी और मोहम्मद सुल्तान अंसारी। गंडूनवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनाज और नवाजिश शेख। और ये हैं जनाब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजीव राजेश और राशि राजेश। मुंदीचक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी और कमल किशोर शाह। बरगद बेल हुबली कर्नाटक से फैज अहमद, शाकिर मुल्ला जी और साबिर मुल्ला जी। गणेशपुर गंडूनवारा एटा उत्तर प्रदेश से जी शेख शमा परवीन, एम फारूक शेख और बेबी मुस्कान। और बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान और उत्कर्ष चौहान। और समझ लीजिए, अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश मुकेश की आवाज़ में अनोखी अदा फिल्म का ये नगमा। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। सामरा नगर अमरावती महाराज से रेखा संगर और संजय संगर। बाजारफेल शेगांव महाराज से मोहम्मद अनीस मोहाल, मोहम्मद दानिश मोहाल और मोहम्मद रिजवान मोहाल। अच्छा ये ले चुकी मैं। ग्राम दुलापुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप और सोनू सुरेश। पुरानी भिलाई 3-14 छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदीन सिद्दीकी और शाहनवाज अहमद सिद्दीकी। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले और राखी कामले। रहड़िया कैंप अमरावती से दिलीप रामेकर, हर्षा रामेकर और अक्षय रामेकर। और ये जनाब ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चनताई गुंडाने और रामन शिंडे। सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान। और अगला मेल हमें मिला है जनाब हिम्मत भाई फूल वालों का मेल ले चुके हैं। नागपुर महाराष्ट्र से कमल सानी, मिसेस पिंकी सानी और डॉक्टर अफजल मलिक। और ये मेल है जनाब छतरी तालाब अमरावती से साधना, अच्छा इनका मेल भी ले चुके हैं। बालकेश्वर कॉलोनी आगरा से श्रीमती सरिता चौरसिया और सुमित चौरसिया के साथ वीर चौरसिया। आप सबकी पसंद आपकी नजर है।

टीकमगढ़ से विजेंद्र विश्वकर्मा, तारादेवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशय देवी, कीर्ति भारती, और यह जनाब गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन और रचिता मस्कीन, चलिए फिलहाल आपको नगमा सुनवाते हैं क्योंकि मेल है, मुझे ज़्यादातर वो मिल रहे हैं जो डबल डबल हुए हुए हैं। एक मेल शामिल कर लेते, पटियाली रोड गंडोद्वारा से भेजने वाले हैं खलील कुरैशी, नुसरत बेगम और एजाज कुरैशी।

0: ये वाला सेक्शन को कनेक्टिविटी के हिसाब से काफी महत्व दिया गया है और रहा भी है, पुराने दिनों में भी और आज के दिन में तो खासकर।
1: जी
0: तो हम जब कहते हैं कि भारत में सारे प्रोडक्ट्स के मूवमेंट होने चाहिए, इजी मूवमेंट होने चाहिए, तो नागपुर अपने आप में एक चुनिंदा जगह बन जाता है, जिसलिए नागपुर का जो एयरपोर्ट है खासकर कार्गो एयरपोर्ट, वो अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट है। आपको पता ही होगा कि ये इंटरनेशनल बोइंग कंपनी ने नागपुर को ही चुना है अपने मेंटेनेंस ऑपरेशंस एशिया में और साउथ एशिया में खासकर चलाने के लिए इसी जगह पे। तो ये एक अपने आप में अपने एक एविएशन हब के रूप से बन गया है,
1: जी
0: और जो आज के कैबिनेट का जो अप्रूवल है उसमें भी इसकी रिकग्निशन है कि एक मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट
1: जी
0: जो
1: जी
0: नागपुर में बन चुका है। 2009 से ये एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बना था और तब से ये चल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट का और इस एयरपोर्ट का इन सब चीजों को मिलाकर बहुत ही सिग्निफिकेंस है। हालांकि हम पैसेंजर
1: जी
0: एयरपोर्ट्स की बात करते हैं और लोग जनरली देखते हैं कि जैसे दिल्ली मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट में मिलियंस ऑफ लोग मूव करते हैं, लेकिन बिजनेस के हिसाब से अगर हम देखें तो नागपुर एयरपोर्ट अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एयरपोर्ट है।
1: शुभ मैं और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक उत्कृष्ट कह सकते हैं ये उदाहरण है। आइए सुनते हैं कि अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा इस मौके पर।
2: पीपीपी के माध्यम से मॉडर्नाइजेशन करना उसका और अपग्रेडेशन करना, इसमें पूरा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से पीपीपी का प्रोसेस रन किया गया है और आज कैबिनेट में उसका जेवी बनाने का अप्रूवल मिला। कंप्लीट इसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह अपग्रेड करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे और इसका एंटायर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पीपीपी में होगा। इसकी जो लीज है लैंड का वो सब काफी आगे बढ़ा दिया जाएगा। फिर कई तरह के अपग्रेडेशन है, टेक्निकल अपग्रेडेशन है जो कोडी कंप्लायंट रनवे और कई तरह की चीजें।
1: और हम बात करते हैं, अब कैबिनेट ने एक और डिसीजन लिया है आज, न्यूनतम समर्थन मूल्य का 14 खरीफ क्रॉप्स के लिए विपणन वर्ष 2026-27 को लेकर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबकि हमें पता है कि हमारा जो कृषि प्रधान देश है उसमें मुख्य तौर पर किसान हमारे रेनी सीजन पर, वर्षा पर कितना ज़्यादा वो निर्भर रहते हैं। तो ऐसे में न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाना उनके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और कुछ जो डिसीजन लिए गए हैं इसमें, उसमें सबसे अधिक जो है वो जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है फॉर द सनफ्लावर सीड, जो कि लगभग 622 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। और उसके अलावा और भी हम देखेंगे कॉटन के लिए और सेसमम के लिए 557 रुपये प्रति क्विंटल और 500 रुपये प्रति क्विंटल क्रमशः। तो इसके अलावा और भी कुछ हैं, 14, जैसा कि हमने पहले बात की कि 14 क्रॉप्स हैं जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है। तो कैसे आप इसको देखते हैं और किसानों को कैसे इससे लाभ मिलता हुआ आप देख रहे हैं?
0: खासकर अब ये चीज हम जानते हैं कि इस साल वैसे ही पूरी दुनिया में
1: जी
0: काफी अफरा तफरी मचा हुआ है और सारे दुनिया में इन्फ्लेशन और डिस्टर्बेंसेस बहुत भारी मात्रा में आ गया है। तो वहां पे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एग्रीकल्चर क्षेत्र का जो सिर्फ प्रोडक्शन के हिसाब से ही नहीं साथ में इनकम का भी रचना बहुत मायने रखता है, कि क्योंकि हमारे करीब 48% हमारे वर्कफोर्स अभी भी एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर में बने हुए हैं, जिसका काफी ज्यादा परसेंटेज एग्रीकल्चर में ही रहते हैं। तो इन सारे लोगों के लिए एक अगर हम देखें कि कितना उनके लिए प्रोडक्टिव रहेगा, उनके लिए कितना इनकम जनरेटिंग रहेगा उनका जो काम काज है, तो उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस का दौर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या देता है कि इसका मतलब ये नहीं कि सरकार कह रहे हैं कि इन सारी चीजों को सरकार ही खरीदेंगी, लेकिन जैसे ज्वार बाजरा रागी मेज अरहर मूंग इन सभी चीजों में बिजनेस पीपल आके ही खरीदते हैं, लेकिन जब रेट एक सरकार की तरफ से तय हो जाता है कि इतने रेट से अगर कम हुआ तो सरकारी एजेंसियां वो चीजों को खरीद लेंगे, तो एक भरोसे का सिक्वेंस बन जाता है फार्मर्स के लिए, उनके लिए कॉन्फिडेंस रहता है कि इतने रेट में हमको मिलेगा।
1: जी
0: और ये इसका घोषणा होना सही समय पे बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इनको ये प्राइसेस आगे चल के क्या प्राइसेस रहेंगे उस प्राइस का एक अंदाजा बन जाता है, एक क्लैरिटी मिलती है। जैसे आप सनफ्लावर की बात कर रहे थे, साथ में ज्वार की, पैडी वगैरह का तो ऑफकोर्स है क्योंकि धान पैडी भारत के
1: जी
0: वेस्टर्न जगह पे
1: जी
0: पैडी का
1: बाजरा है,
0: कल्टिवेशन
1: जी
0: होता है,
1: बिल्कुल
0: बाजरा है, लेकिन साथ में जो दाल, दाल के जो प्रोडक्शन है, दाल का जो उनका जो रेट्स हैं, ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है कि उनके ऊपर क्या रेट बनता है, उनको किस रेट में दिया जाता है।
1: जी
0: तो इन सब चीजों का जो रेट का जो राइज है कितना परसेंटेज किया जा रहा है उसका कितना बारीकी से करते हैं, खासकर मैं आकाशवाणी के श्रोताओं का दृष्टि आकर्षण करूंगा कि हमारे

0: श्रोता के में खासकर एक बहुत बड़े जो फार्मिंग संप्रदाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए इसका अनाउंसमेंट और इसका प्राइस क्या बना बहुत ही मायने रखता है कि कितने परसेंटेज राइज इस साल दिया गया, ये तुलना अगर करें
1: जी जी
0: तो सरकारी क्षेत्र में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके पे कमीशन के अवार्ड से ये इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि बहुत बड़े लोगों के पैमाने के ऊपर, लोगों के लाइफस्टाइल के ऊपर, उनके लाइफ के, जैसे कॉटन के प्राइसेस जो हैं, इन सभी चीजों के प्राइसेस कितना बनेगा, इससे हमारे कृषि क्षेत्र कितने शक्तिशाली रहेंगे, उसमें कितने लोग काम कर पाएंगे, कितना इन्वेस्टमेंट ला पाएंगे, वो सब इससे जुड़ा हुआ है।
1: जी जी शुभ मैं, और आइए सुनते हैं मंत्री महोदय ने क्या कहा इस अवसर पर।
2: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 में जिम्मेदारी ली है देश की, तब से एक के बाद एक किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए, और जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था 2019 में कि किसानों को अपने श्रम का उचित मूल्य मिल सके और कम से कम 50% मुनाफा मिल सके किसानों को, इसलिए उनके खेती की जो कीमत आती है, जो कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट के ऊपर लागत जो आती है, उस लागत के ऊपर 50% का प्रॉफिट जोड़ के MSP का निर्धारण करने का 2019 में फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था। उस फैसले के अनुसार लगातार खरीफ हो रबी हो, सारे फैसले उसी हिसाब से लिए जा रहे हैं। कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट इक्वल्स MSP, उस तरीके से इसका सारा फैसला लिया गया। तो आज के खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें करीब जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से, और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
1: तीसरा जो बड़ा फैसला लिया गया आज के कैबिनेट मीटिंग में वो है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ सरफेस कोल एंड लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, जिसका कि वित्तीय आउटले अगर हम कहें तो 37,500 करोड़ रुपए है। तो शुभ मैं, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक निर्णय लिया गया है, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो आपने भी अभी चर्चा किया पीछे की जिस तरह से हम जूझ रहे हैं वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर, एनर्जी क्राइसिस खास करके अगर देखें, तो वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पर अगर हम इसको देखें तो कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले कि आप जवाब दें, आइए सुनते हैं कि मंत्री जी ने क्या कहा इस विषय पर।
2: भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है, और बहुत ही सामूहिक फैसला है कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। बेसिकली ट्रांसपेरेंट बिडिंग के थ्रू सिलेक्शन होगा, 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी गिवन एज कैपेक्स इंसेंटिव, और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। प्रोजेक्ट के प्रॉपरली डिफाइंड माइलस्टोन्स होंगे, हर प्रोजेक्ट पे 5,000 करोड़ रुपए का कैप लगेगा, मतलब इंसेंटिव देने के मामले में, जिससे कि ज्यादा प्रोजेक्ट्स हो पाए। 5,000 रुपीज का कैप, एक कैटेगरी के लिए 9,000 कैप, और पर एंटिटी 12,000 रुपीज का कैप। जहां पर भी कोल और लिग्नाइट के लिंकेजेस दिए हुए हैं प्रोजेक्ट के लिए, वहां पर अगर कोल और लिग्नाइट का गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट आता है तो उसका लिंकेज का टेन्योर 30 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा।
1: तो एक वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के हिसाब से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। शुभ मैं, कैसे देखते हैं आप इसको आने वाले समय में, जैसा कि मंत्री जी बात कर रहे थे, ये एक काफी बड़े तौर पर और बड़े पैमाने पर सामने उभर कर आ सकता है एज एक वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के हिसाब से।
0: मैं सबसे पहले बता दूं कि कोल गैसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कि ये बेसिकली एक कोल से, हालांकि कोल और क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो मोरलेस वो एक ही चीज से बनता है। कोल गैसिफिकेशन का मतलब है कि इसमें से एक मिक्स्ड गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, व्हाटएवर, इन सबको यूज करने से ऑलमोस्ट लाइक नेचुरल गैस जैसे बेनिफिट मिलता है। तो हम नेचुरल गैस का भी इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलात की बात कर रही है, हम इम्पोर्ट में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अफरा तफरी की वजह से गैस नहीं आ पा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और हाइड्रोजन बनाने के लिए हर तरीके में ये बिल्कुल ऑलमोस्ट लाइक नेचुरल गैस जैसे ही काम आ सकता है कोल गैस। तो ये कोल गैस जो है इसका टेक्नोलॉजी पता है, इसका टेक्नोलॉजी हम जानते हैं, लेकिन इसमें एक्सपेंडिचर करने के लिए हम सोच रहे थे कि करें ना करें। खासकर कुछ महीने पहले तक चल रहा था कि कोल को किस तरीके से काम में लाया जा सकता है, एट ऑल करना चाहिए या नहीं। हालांकि एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोल को अगर यूज करना है और कोल गैस बनाकर, तो वो एनवायरमेंटली बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि कोल से जो उत्पन्न होता है जो पोल्यूशन, वो काफी हद तक उतर जाता है कोल गैस बनाने से। और जैसे

0: हम एक सीड कैपिटल देंगे, एक एक सपोर्ट देंगे, इसके बेसिस पे आप अपना काम आगे ले जाइए, और अगर हम आगे अगर चले तो दिस कुड बी द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर।
1: जी जी जी शुभ मैं। और एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में आज, गुजरात के अहमदाबाद से ढोलेरा तक एक सेमी हाई स्पीड डबल रेलवे लाइन का एक प्रोजेक्ट भी जिसको मंजूरी दी गई, जिसका कुल लागत मूल्य 20,667 करोड़ रुपए है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है, यूनिक भी है, इसलिए कि ये देश का ये पहला ऐसा सेमी हाई स्पीड प्रोजेक्ट होगा जो कि इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये किया जा रहा है। हम जानते हैं, हम देख भी रहे हैं कि पूरे देश में किस तरह से रेलवे का जाल नेटवर्क जैसा बिछाया जा रहा है और अपग्रेड किया जा रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है जो इस मंजूरी मिली है, ये कैसे देखते हैं आप इसको?
0: इसको अगर आप उससे अगर आप लिंक करें कि ये जो प्रोजेक्ट है
1: जी
0: ये ढोलेरा से आ रहा है, ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन
1: जी जी
0: अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रीजन बन रहा है, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपना बेस सेटअप कर रहे हैं। तो ढोलेरा से अहमदाबाद का कनेक्टिविटी हाई स्पीड होना जरूरी था, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अहमदाबाद से बॉम्बे तक का बुलेट ट्रेन बन रहा है, तो वो बुलेट ट्रेन से अगर हम मुंबई से अहमदाबाद लोगों का जैसे कनेक्शन रहेगा, साथ में उनको एक इमीडिएट कनेक्शन जरूरत पड़ेगा ढोलेरा तक जाने का, क्योंकि
1: जी
0: बहुत सारे हमारे फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र की कंपनियां इस रीजन में अपना इन्वेस्टमेंट सेटअप कर रहे हैं। तो ये वाला एक जिसे कहते हैं मिसिंग लिंक या था, जो अभी जिसका पूर्ण किया जाएगा, तो इसका तो बहुत ही इसका कितना महत्व है वो आने वाले दिनों में है, बहुत जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि
1: जी
0: पूरा जो रीजन है इस रीजन में हाई स्पीड कनेक्टिविटी का बहुत जरूरत है, जिसकी तरफ सरकार ने ध्यान दिया है, और इसलिए ये तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
1: शुभ, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार साझा किए हमारे श्रोताओं के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में
3: मीडियम वेव 1,71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है कव्वालियों का प्रोग्राम। आज के इस प्रोग्राम में समाप्त फरमाइए हबीब पेंटर और साथियों की गाई कव्वालियां।

ये अरमा के तुझसे वसल का इकरार हो जा।

0: कवालियों के आज के प्रोग्राम में आप सुन रहे थे हबीब पेंटर कवाल और साथियों की गई कवाली। इसके साथ ही आज के कवालियों का यह प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से शब के 12 बजे हैं अब आलमी खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल हफीज से आलमी खबरें सुनिए। ब्रिक्स वज़राए खारजा की दो रोज़ा सरबराह कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस, जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील, मालदीव और चिली के अपने हमनसबों के साथ दो तरफा बातचीत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दो रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले से गाड़ियों की तादाद को कम कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी के वज़राए आला और दीगर रहनुमाओं ने अखराजात को कम करने से मुतालिक इकदाम किए हैं। मरकजी काबीना ने मार्केटिंग सीज़न 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की कम अज़ कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। और वेट लिफ्टिंग में गांधीनगर में एशिया सीनियर चैम्पियनशिप में भारत के गैनेश्वरी यादव ने चांदी और कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स वज़राए खारजा की दो रोज़ा सरबराह कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। मीटिंग से कबल वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल रूस, जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील, मालदीप और चिली समेत कई ममालिक के अपने हमनसबों के साथ दो तरफा मीटिंगें की। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल रूस के वज़ीर खारजा सरगई लारोव के साथ वफूद सतह की बातचीत की। मीटिंग के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ बरसों में दोनों ममालिक ने दो तरफा शराकतदारी में मुस्तहकम और पायदार तरक्की की है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने जनूबी अफ्रीका के अपने हमनसब रोनाल्ड लमोला से मुलाकात की। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने इदारा जाती मैकेनिज्म के जरिए बातचीत में तेजी लाने की ज़रूरत पर इत्तफाक किया। ब्राज़ील के हमनसब मोरो वेरा से मुलाकात के मौके पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ब्रिक्स चेयरशिप पर ब्राज़ील की हिमायत और नुक्ते नज़र की कदर करता है। अपने मालदीप के हमनसब ईरू थिशम आदम के साथ बातचीत के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने पड़ोस मुकदम की पॉलिसी पर जोर दिया और दो तरफा ताउन का जायज़ा लिया। उन्होंने मालदीप की तरक्की और फरोग के लिए भारत के अज़्म का भी इआदा किया। वज़ीर खारजा ने कल चिली के वज़ीर खारजा फ्रांसिस्को से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों फरीकों ने मार्केट्स और सप्लाई चेन को मुतनव्वे बनाने, तरजीही अशिया की बरामदात और खिदमात के शोबे में मौके को बढ़ाने के लिए दो तरफा ताउन को मजबूत करने पर तबादले ख्याल किया। इस दौरान ईरान के वज़ीर खारजा सैयद अब्बास अराकची भी ब्रिक्स वज़राए खारजा के इजलास में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। ब्रिक्स के वज़राए खारजा और रुकन और शराकतदार ममालिक के वफूद के सरबराहान आज इजलास में शिरकत करेंगे, जिसकी सदारत वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के अपने हमनसब जी जिनपिंग के साथ सरबराह मुलाकात के लिए बीजिंग पहुंच गए हैं। आज शुरू होने वाली अपनी दो रोज़ा बातचीत के दौरान इम्कान है कि दोनों रहनुमा ईरान के साथ जंग, ताइवान को अमरीकी हथियारों की फरोख, तजारत और मसनूई ज़हानत समेत अहम मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों रहनुमा दुनिया की दो सबसे बड़ी मईशतों के दरमियान महसूलात और बढ़ती इकतसादी और तकनीकी कशीदगी पर भी बातचीत कर सकते हैं।

0: किलोग्राम का वजन उठाकर कांसे का तमगा अपने नाम किया। इस जुमरे में 216 किलोग्राम का वजन उठाकर चीन की जिन लेन झाऊ ने सोने का तमगा जीता, जबकि वियतनाम की होआई गुहेन ने 195 किलोग्राम के मजमूई वजन में चांदी का तमगा अपने नाम किया। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। ब्रिक्स वज़राए खारजा की दो रोज़ा सरबराह कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस, जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील, मालदीव और चिली के अपने हम मनसबों के साथ दो तरफा बातचीत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दो रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले से गाड़ियों की तादाद को कम कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी के वज़राए आला और दीगर रहनुमाओं ने अखराजात को कम करने से मुतालिक इकदाम किए हैं। मरकजी काबीना ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। और वेट लिफ्टिंग में गांधीनगर में एशिया सीनियर चैंपियनशिप में भारत की गैनेश्वरी यादव ने चांदी और कांसे का तमगा जीता है। आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। क्लासिकी मौसीकी के प्रोग्राम में सामिन आज सुनिए पंडित रविशंकर और पंडित उमा शंकर मिश्र के दरमियान सितार पर बजाया राग तिलक श्याम।

और सामने जब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश दर्द फिल्म का नगमा सुरैया और उमा देवी की आवाज़ों में, नगमा निगार शकील बदायनी, मौसीकार नौशाद।

0: यारो मदद का अरब रे मुकते गुजर।
1: सामिन इस नगमे के साथ ही आज का सदाबहार फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आखिर शब अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 12:50 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल हफीज से खबरें सुनिए। ब्रिक्स वज़राए खारजा की दो रोज़ा सरबराह कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने रूस, जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील, मालदीव और चिली के अपने हम मनसबों के साथ दो तरफा बातचीत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दो रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले से गाड़ियों की तादाद को कम कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी के वज़राए आला और दीगर रहनुमाओं ने अखराजात को कम करने से मुतालिक इकदामात किए हैं। मरकजी काबीना ने मार्केटिंग सीज़न 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की कम अज़ कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। और वेट लिफ्टिंग में गांधीनगर में एशिया सीनियर चैम्पियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने चांदी और कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स वज़राए खारजा की दो रोज़ा सरबराह कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। मीटिंग से कबल वज़ीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कल रूस, जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील, मालदीप और चिली समेत कई ममालिक के अपने हम मनसबों के साथ दो तरफा मीटिंगें की। वज़ीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कल रूस के वज़ीर खारजा सरगेई लारोव के साथ वफूद सतह की बातचीत की। मीटिंग के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों ममालिक ने दो तरफा शराकतदारी में मुस्तहकम और पायदार तरक्की की है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने जनूबी अफ्रीका के अपने मनसब रोनाल्ड लामोला से मुलाकात की। वज़ीर खारजा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने इदाराजाती मैकेनिज्म के जरिए बातचीत में तेजी लाने की ज़रूरत पर इत्तेफाक किया। ब्राज़ील के अपने हमनसब मोरो वेरा से मुलाकात के मौके पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ब्रिक्स चेयरशिप पर ब्राज़ील की हिमायत और नुक्ते नज़र की कदर करता है। अपने मालदीव के हमनसब इरुथिसम आदम के साथ बातचीत के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने पड़ोसी मुकदम की पॉलिसी पर जोर दिया और दो तरफा तआवुन का जायज़ा लिया। उन्होंने मालदीव की तरक्की और फरोग के लिए भारत के अज़्म का भी इआदा किया। वज़ीर खारजा ने कल चिली के वज़ीर खारजा फ्रांसिस्को पेरेस मकेन्ना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों फरीकों ने मार्केट्स और सप्लाई चेन को मुतनव्वी बनाने, तरजीही अशिया की बरामदात और खिदमात के शोबे में मौके को बढ़ाने के लिए दो तरफा तआवुन को मजबूत करने पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान ईरान के वज़ीर खारजा सैयद अब्बास अराग़ची भी ब्रिक्स वज़राए खारजा के इजलास में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुँच गए हैं। ब्रिक्स वज़राए खारजा और रुकन और शराकतदार ममालिक के वफूद के सरबराहान आज इजलास में शिरकत करेंगे, जिसकी सदारत वज़ीर खारजा डॉक्टर जयशंकर करेंगे। वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के अपने हमनसब शी जिनपिंग के साथ सरबराह मुलाकात के लिए बीजिंग पहुंच गए हैं। आज शुरू होने वाली अपनी दो रोज़ा बातचीत के दौरान इम्कान है कि दोनों रहनुमा ईरान के साथ जंग, ताइवान को अमरीकी हथियारों की फरोख्त, तजारत और मसनू ज़हानत समेत अहम मामलों पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों रहनुमा दुनिया की दो सबसे बड़ी मईशतों के दरमियान महसूलात और बढ़ती इक्तसादी और तकनीकी कशीदगी पर भी बातचीत कर सकते हैं। अमरीकी सदर के हमराह मुख्तलिफ सरकर्दा कारोबारी और तकनीकी माहिरीन भी बीजिंग पहुंचे हैं। उनके साथ अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और वजीर दफा पीट हेक्सेथ समेत सीनियर इंतजामी अहदेदारान और वाइट हाउस के अहम मुआविनीन भी हैं। सदर ट्रंप का 2017 के बाद से चीन का यह पहला सरकारी दौरा है और ये उनकी दूसरी मुद्दतकार में भी उनका चीन का पहला दौरा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ईंधन के इस्तेमाल में कमी की अपील का गहरा असर देखने में आया है, जिसके नतीजे में पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने इसकी नज़ीर कायम करते हुए

0: इकदाम किए हैं। मरकजी काबीना ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है और वेट लिफ्टिंग में गांधीनगर में एशिया सीनियर चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने चांदी और कांसे का तमगा जीता है। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सावन शब का एक बजे चाहता है। यहाँ हमारी आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। सुबह में 9:30 पर अपनी पहली मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
3: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को किसानों की आय बढ़ाने, खेती को अधिक लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नई सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। CBI ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CB जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने

0: The two-day BRICS Foreign Ministers Summit begins in New Delhi today. Ahead of the meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar yesterday held bilateral meetings with his counterparts from several countries, including Russia, South Africa, Brazil, Maldives, and Chile. Meanwhile, Iran's Foreign Minister Syed Abbas Araghchi has also arrived in New Delhi to take part in BRICS Foreign Ministers' meeting. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting, which will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today. They will also call on PM Modi. Government has given 1-year extension to Director of Central Bureau of Investigation, CBI, Praveen Sood. According to an official order issued by the Department of Personnel and Training, DOPT, the Appointments Committee of the Cabinet yesterday gave its nod for the extension to Mr. Sood as Director of the Investigation Agency beyond 24th of this month. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR Live News 24x7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 1:10 और 10 सेकंड। ये समय होता है बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का। जी हाँ, गीत सुनहरे, गोल्डन एरा, ओल्ड सॉन्ग्स, हिंदी सॉन्ग्स, गोल्डन एरा यानी गीत सुनहरे, हिंदी फिल्म, गीत, संगीत, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन कार्यक्रम होता है। और ये कार्यक्रम वाकई गोल्डन एरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तरीके से देखा जाए सोने जैसा ये खूबसूरत कार्यक्रम होता है। एक से एक सुंदर बेहतरीन खूबसूरत रचनाएं होती हैं, जो रेयर सॉन्ग्स होते हैं। आज भी न जाने कितने हज़ार लोग, लिसनर्स या श्रोता साथी सुनते हैं, और रात को ही नहीं 24 घंटे कहीं ना कहीं कोई ना कोई साथी कार्यक्रम सुनता ही है वाकई। क्योंकि पुराने जितने भी साथी रहे हैं इस जीवन में, आज भी जो बाकी रह गए हैं, तो वाकई उनका मन बिना गीत सुने रहता ही नहीं है, है ना? क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है उन गीतों में। एक से एक बेहतरीन गीतकार, संगीतकार, अदाकार, अदाकारा, न जाने कितने ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी फनकार हैं, एक से एक बेहतरीन खूबसूरत रचनाओं का निर्माण करते आए हैं। तो आज भी वो गीत वाकई बहुत ही सुनहरापन देता है, अपनापन देता है। ऐसा लगता है कि वो गीत आपका नहीं, हमारा है, है ना? तो आज मैं हूं आपके साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम में, आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए सुनवाते हैं बहुत ही सुंदर, एक खूबसूरत गीत से शुरुआत कर रहे हैं हम। स्वागत है सभी साथियों का इस बेहतरीन कार्यक्रम में। नमस्कार।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। जी हाँ, फिल्म बैजू बावरा से मोहम्मद रफ़ी साहब की खूबसूरत आवाज़, मार्मिक लाजवाब गीत। बैजू बावरा फिल्म 1952 प्रदर्शित फिल्म रही और गीतकार रहे शकील बदायूं ने और संगीत था नौशाद का। तो बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर।

जी हाँ साथियों, अभी सुन रहे थे बहुत ही प्यारा गीत ठंडी हवा के झोंके, भाई बहन फिल्म से शमशाद बेगम की आवाज़ में सुंदर रचना। भाई बहन फिल्म 1950 प्रदर्शित फिल्म रही और संगीत से सजाया था इस शानदार गीत को श्याम सुंदर ने। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर।

धक्काओं का, झटकों का, मटकों का कमाल, और साथ में देखिए हाथ का भी कमाल। चलो ताली बजाओ।

जी हाँ श्रोता साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर गीत। साथियों, इन्हीं गीतों के साथ आज का गीत सुनहरे कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति।

0: दो बजने को हैं, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने केंद्र सरकार से मेडिकल कार्यक्रमों में नीट आधारित प्रवेश प्रक्रिया समाप्त करने और राज्यों को 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर दाखिला देने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का भी हवाला दिया। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नई सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आलू, प्याज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, समय हुआ है 2:10 और 5 सेकंड। साथियों, ये समय होता है बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत, जी हाँ, गीत बहार, म्यूजिक ऑफ नॉन स्टॉप, जी हाँ, बिना रुके, बिना किसी हडल के सुंदर खूबसूरत कार्यक्रम गीत बहार। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम की पहली सुंदर खूबसूरत रचना।

0: नहीं बस और नहीं।
1: प्यार प्यार करना है तो फिर रुसवाइयों का गम नहीं, सारी महफिल जान ले कि हम किसी से कम नहीं।
2: ये तो बोलिए।

ना अपना नाम बताती है और ना पता। लेकिन मैं जनता के सामने और सब अफसरों के सामने भगवान को साक्षी बनाकर ये ऐलान करता हूं कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। ये मुबारकबाद उधर क्यों दे रहे हैं?

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत बहार। गीत बहार कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आ रही है और सुनते हैं ये शानदार बेहतरीन गीत आज के कार्यक्रम की अंतिम रचना।

0: इसी गीत के साथ गीत बहार कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। 3 बजने को हैं, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी

0: तरीके को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। वे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने केंद्र सरकार से मेडिकल पाठ्यक्रमों में नीट आधारित प्रवेश प्रक्रिया समाप्त करने और राज्यों को 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर दाखिला देने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का भी हवाला दिया। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद आज 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित करेगी। परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे। विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से नतीजे देख सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Ashish Abraham. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved increase in minimum support prices for 14 Kharif crops for marketing season

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गजल। इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन की आवाज में ये गजल, रात खामोश थी।

अभी आप सुन रहे थे हरी हरन की आवाज में गजलें, और लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में गजल। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं आपको देखकर, ये गजल आपके लिए।

ये आवाज़ में इस गज़ल के साथ ही आज का गज़लों का ये कार्यक्रम होता है यही संपन्न आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। रात्रि के 4 बजे हैं।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4:20 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत पर आधारित कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं वायलिन वादन, कलाकार हैं M. चंद्रशेखरन। आपने प्रस्तुत किया है रागम शुभा पंतवरली जो रूपकम ताल में निबद्ध है। आपके साथ घटम पर संगत किया है सुकन्या रामगोपाल ने और संगीत दिया है मथुस्वामी दीक्षितर ने। तो लीजिए प्रस्तुत है M. चंद्रशेखरन का वायलिन पर राग शुभ पंतवरली।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे वालन वादन। कलाकार थे एम चंद्रशेखरन। आपने प्रस्तुत किया रागम शुभ पंतुवरली, जो रूपकम ताल में निबद्ध था।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज बृहस्पतिवार है। शक्सम्मत 1948 के वैशाख मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 मई 2026 सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आज का योग होगा गौमुखासन। स्वररंजनी का कार्यक्रम होगा 5:30। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हर्षवर्धन का बांसुरी वादन। आज आप प्रस्तुत करेंगे राग ललित। 6:10 का समय रहेगा वंदना का। 6:40 पर सुनेगा चिंतन चैतन्य महाप्रभु के जीवन से प्रसंग। 6:45 पर रामचरितमानस से पाठ के अंतर्गत आज आप सुनेंगे बालकण का भाग 55।

7:10 पर संगीति का ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज आप सुनेंगे भजन, कलाकार होंगे सत्येंद्र नाथ। गीतों भरी गुड मॉर्निंग, इस कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे सुबह 7:30 बजे। 8:45 पर सुनेगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे संतूर वादन, कलाकार होंगे पंडित अभय रुस्तम सोपोरी। 9:15 पर सुनेगा उद्योग पत्रिका कार्यक्रम और 9:30 बजे मिट्टी दी महक पंजाबी कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे। आज प्रस्तुत करेंगी हरजीत कौर। 10:10 का समय रहेगा आपकी पसंद फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुनेगा।

11:10 पर स्वरांजलि ये कार्यक्रम आज आप सुन सकेंगे। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गिटार वादन, कलाकार होंगे सलील भट्ट और तबले पर रहेंगे अभिषेक मिश्रा। 12:10 पर समय रहेगा महिला कार्यक्रम घर आंगन का। 1:10 पर सुनेगा एक ही फिल्म से, आज की फिल्म रहेगी बेताब। और 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार और आज के कलाकार होंगे नसीर हुसैन। साथियों थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह के 5 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए समाचार।